मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स। डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की सभा का शुभारंभ।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में

0: फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। समय है भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना का।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

प्रार्थना चेतना का फूल है। जिस क्षण हमारे प्राण धन्यवाद से भरे होते हैं, अनुग्रह से भरे होते हैं, कृतज्ञता से भरे होते हैं, प्रार्थना का फूल खिलता है। जिस क्षण हम आनंद से भरते हैं, प्रार्थना खिलती है। जब होश की मिट्टी में धन्यवाद का बीज गिरता है, तब प्रार्थना खिलती है। और इस धन्यवाद के लिए भोर एक पर्याप्त कारण है, जीवन का एक और सुअवसर, नई

सुबह के स्वर आनंद के स्वाभाविक कारक हैं। तो आइए धन्यवाद करें उस ईश्वर का कि हमारे जीवन में एक नया सवेरा आया, नई आशा, नए सपनों का सवेरा। आइए हम और आप मिलकर वंदना करें। वंदना का प्रथम पुष्प अर्पित करें अपनी मातृभूमि के चरणों में, गौरव गान करें अपने भारत वतन का।

ईश्वर को कहा नहीं जा सकता, वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। वो एक ऐसा गीत है जिसे पूरी तरह गाया नहीं जा सकता, बस गाने की इस चेष्टा में जो थोड़ी सी लय हम तक पहुंच जाती है, उतने से ही भीतर प्रकाश उतर आता है। उस अनंत अविनाशी परमेश्वर की महिमा निराली है, प्रत्येक भोर जिसकी आराधना को ललायित रहती है।

प्रार्थना एक क्षण, एक भाव दशा है। प्रार्थना का कोई और फल नहीं है। प्रार्थना भीतर घट जाए, यही उसका फल है। प्रार्थना से नहा कर निकल आए, पवित्र हो गए, बस बात बन गई। उसी क्षण ईश्वर भीतर उतर आया। मन के गहरे अंधकार में एक दिया जल उठा, प्रकाश फैल गया।

प्रार्थना में जब तक हम कुछ मांग रहे होते हैं तब तक हम शिकायत में रहते हैं, याचना करते हैं। शिकायत कि जीवन में ये कमी है, ये अभाव है, ये हम उस ईश्वर को बता रहे होते हैं जो बिना बोले सब जानता है, जो हमारे भीतर बाहर कण कण में रम रहा है, उसे बताना कैसा। जब तक हमारी सारी मांगें खत्म नहीं हो जाती तब तक प्रार्थना खिल ही नहीं सकती। प्रार्थना का जन्म मांग रहित चित्त में ही होता है, एक ऐसा चित्त जो अपने आराध्य के प्रेम से ही भरा होता है और भक्त की जिह्वा पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, उसकी आंखों में बस एक ही सूरत बसती है।

वंदना हमारे अंतर जगत का विषय है, प्रार्थना हमारे भीतर का परिष्कार करती है। कोई भी जप, मंत्र या सुमिरन तब तक व्यर्थ है जब तक हमारा भीतर पवित्र और कोमल न हो। जीव मात्र के लिए मन में करुणा न हो तो फिर सारी आराधना व्यर्थ हो जाती है।

इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना। गायक कलाकार थे हरिहरन, अनूप जलोटा, उषा टंडन और हरिओम शरण।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह, संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। वे माता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुवलोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर भूपेंद्र सिंह, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख है श्रद्धा श्रीवास्तव का।
1: स्वामी रामतीर्थ एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार चार देवियां पृथ्वी भ्रमण कर रही थीं। एक संत ने देवियों को देखा और झुककर प्रणाम किया। चारों देवियों के बीच ये विवाद हो गया कि संत ने किसको प्रणाम किया। उन्होंने संत से ही पूछा। संत ने कहा, पहले आप अपना अपना परिचय दें, फिर मैं बताऊंगा मैंने किसको प्रणाम किया। पहली देवी ने परिचय दिया, मैं भाग्य की देवी हूं। संत का भाग्य में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, उसने भाग्य को मानने से इनकार किया। दूसरी देवी ने अपना परिचय दिया, मैं बुद्धि की देवी हूं। उन्होंने कहा, बुद्धि भटका देती है। तीसरी ने अपना परिचय दिया, मैं वैभव की देवी लक्ष्मी हूं। उन्होंने कहा, धन से अहंकार हो जाता है। चौथी देवी ने अपना परिचय दिया, मैं संकल्प की देवी हूं। उन्होंने कहा, मैंने संकल्प की देवी को प्रणाम किया, क्योंकि संकल्प शक्ति से ज्ञान व धन प्राप्त कर कोई भी अपना भाग्य उज्ज्वल बना सकता है। संकल्प शक्ति को विशिष्ट स्थान मिला है। संकल्प से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। उसका मन कई खंडों में बंटा होता है। प्रतिपल न जाने कितनी इच्छाएं जन्म लेती हैं, परंतु हर इच्छा संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर पाती। गालिब कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वास्तव में बहुत सारे विकल्प हों तो मन भ्रमित होता है। संकल्प हमें केंद्रित करता है, विकल्प बिखराव लाता है, आवारा मन कमजोर होता है। एक चाहत, एक मकसद, एक अभीप्सा को चुनकर पूरी लगन से उसमें जुट जाना ही शुभ संकल्प है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। सूरज की किरणें घोरतम अंधकार को चीर डालती हैं। नन्ही चिड़िया तिनका तिनका चुनकर अपना नीड़ बना लेती है। यानी संकल्प वो महानतम शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। कोलंबस का संकल्प था कि वो अटलांटिक को पार कर नया संसार खोज निकाले। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। दृष्टिहीन एवं मूक बधिर होने के बावजूद हेलन केलर लेखन एवं अध्ययन में अद्भुत मिसाल कायम कर गईं, तो सिर्फ अपने संकल्प बल पर। ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने वाले स्टीफन हॉकिंग, जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ, 21 वर्ष की आयु में स्नायु संबंधी एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, जिसमें व्यक्ति कुछ ही वर्ष जीवित रह पाता है, परंतु अपनी संकल्प शक्ति की बदौलत वे अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद दुनिया के महान भौतिकविद बने और पूरे ब्रह्मांड पर ब्लैक होल के गणित को लागू किया। महात्मा गांधी तो संकल्प शक्ति के आधार ही थे। उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनसे प्रभावित होता। गांधी जी के कार्यों को देखें तो हम पाएंगे, संकल्प से सिद्धि तभी प्राप्त होती है

0: जब मानसिक शुद्धि हो, विचारों में पवित्रता हो, भाव प्रबल होगा तो मन व तन कर्मरत रहेगा। कवि जयशंकर प्रसाद कामायनी में कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। वास्तव में ज्ञान और क्रिया के संयोग से ही संकल्प सिद्ध होते हैं।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख था श्रद्धा श्रीवास्तव का। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इसमें डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग आपको ये जानकारी दे रहे हैं।
4: किसान भाइयों को मैं आज की कृषि चर्चा में ये बताना चाहता हूँ कि खरीफ फसलों की बुआई के पूर्व हमारे किसान भाई क्या क्या तैयारी करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर अधिक लाभ कमाएं हमारे किसान भाई। तो फसलों की कटाई पूर्ण हो चुकी है तो खेतों की वो साफ सफाई करें, मेड़ों की साफ सफाई करें, खेतों पर जो वृक्ष खड़े हुए हैं उनकी कटाई छिटाई करें, उनको समूल नष्ट नहीं करें, उनको बढ़िया से आकार दें और उनको अच्छी तरह से रखें पेड़ पौधों को। नए पौधे यदि उन्हें लगाना है, बगीचा लगाना है, तो वो अभी बगीचे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का सबसे उपयुक्त समय है। गर्मियों में हमारे किसान भाई मकान के लिए लेआउट बनाते हैं, विन्यास कहते हैं, ऐसा ही लेआउट अपने बगीचे के लिए बनाएं और लेआउट के हिसाब से गड्ढों की खुदाई करें और गड्ढों को कम से कम 15 दिन खुले रखे रहने दें। उसके बाद उसमें रेत, छड़ी, गोबरी खाद, कीटनाशक, अधिक कीटनाशक नहीं डालना है। तो दीमक को नियंत्रित करने के लिए हमारे किसान भाई गड्ढों में कंडे जला सकते, कंडे जलाने से भी दीमक का प्रकोप नष्ट हो जाता है। इसके अलावा गर्मियों में खाद किसान भाई खेतों में देसी खाद, गोबरी खाद बिल्कुल न डालें। यदि खरीफ के बाद ले जाने के लिए एक बार रास्ता नहीं बचता, कीचड़ हो जाती है, तो अभी ले जाके छायादार स्थानों पर उसे रखें और या तो एक पानी के बाद खेत में डालें या फिर खरीफ की फसल की कटाई के बाद एक पहली जुताई करने के बाद उसको खेत में डालें। उर्वरकों की व्यवस्था अभी से कर लें। अनावश्यक उर्वरकों या अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग खेतों में बिल्कुल नहीं करें। आवश्यकता हो उतना ही रासायनिक उर्वरक खेतों में डाला जाए। इसके अलावा बीजों का अंकुरण परीक्षण कर लें। बीजोपचार हमारे किसान भाई अवश्य करें और खेतों की जो मेड़बंदी है उसको अभी से व्यवस्थित कर लें। खेतों में जो खेतों में ज़्यादा पानी भरता है वहाँ पर किसान भाई यदि सोयाबीन खेत करते हैं तो रिजबेड फरो सिस्टम से सोयाबीन की खेती करना चाहिए। धान की खेती करने जा रहे हैं तो धान के बीजों का भी अंकुरण परीक्षण कर लें। धान की दोनों तरह की बहुत अच्छी किस्में आप सीधी बुवाई करके भी धान की खेती कर सकते हैं और रुपाई से भी धान की खेती की जा सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों के यहाँ कपास की खेती लगाई हुई थी तो आप उसकी डंठलों की खेतों से हटा लें उसको। डंठलों को हटाने के बाद खेतों की मेड़ों पर न रखें, न उसे वहाँ जलाएं। उनका अगर सबसे अच्छा है अगर उसकी कुट्टी कर ली जाए और उसका बर्मी कंपोस्ट में किया जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आपके यहाँ रेड पंपकिन, वो आपका पिंक वॉलवर्म, उसको लाल कीड़ा कहते हैं उसका, कपास का, उसका प्रकोप ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा अभी किसान भाई कद्दूवर की सब्जियाँ लगाए हुए हैं, भिंडी लगी है, टमाटर लगा हुआ है, इसमें समय समय पर हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सबसे अच्छी होगी कि शाम के समय करें, दोपहर में धूप में सिंचाई न करें और सवेरे न करें। दवाइयों का कम से कम प्रयोग करें, देसी दवाइयाँ डालें, नीम का तेल है, निवोली का सत्याप, इनका उपयोग करें और रासायनिक दवाइयाँ कम से कम डालें। मूंग

0: प्रबंधन में आप कीड़ों की जो आजकल इल्ली आ रही है काली वाली इल्ली, इसके प्रकोप के लिए रोकने के लिए फेरोमोन ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप का बहुत अच्छा रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारे किसान भाइयों को इनको खेतों में लगाना चाहिए, किसान भाई को खेत पर लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए, ये भी कीड़े नियंत्रण में हमारा सहयोग करता है। और रासायनिक दवाइयों का उपयोग कम करें और स्प्रिंकलर से सिंचाई शाम के समय दें। धन्यवाद किसान भाई।
1: खरीफ फसलों में बुवाई पूर्व तैयारी, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग कृषि चर्चा में। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः संबंधः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् संबंधानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखरसम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।

0: इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और ओटीटी पर।

0: श्रीलंका ए ने भारतीय को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर। सुबह के 7:05 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर में 7:20 पर नमस्कार भोपाल के आकर्षण है। 3000 किलोमीटर से अधिक की नर्मदा परिक्रमा कर लौटे भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी धर्म पत्नी भारती श्रीवास्तव से बातचीत। संगीत नाटक अकेडमी के उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध तबला वादक श्री रामेंद्र सिंह सोलंकी से एक मुलाकात और योग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा शर्मा से मोटापा नियंत्रण में योग की भूमिका के संबंध में बातचीत की है हमारे प्रतिनिधि संजय श्रीवास्तव ने। आठ बजकर 30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। सुगम संगीत में राजकुमार तिवारी के गाए भजन आपको सुनवाए जाएंगे 9:15 पर। 9:30 कार्यक्रम होगा शब्द सागर, इसमें सुनिएगा शशिकांत मणि त्रिपाठी की वार्ता योग और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन, साथ ही प्रदीप श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ आप सुन सकेंगे। समय रहेगा सुबह 9:30। जिले की चिट्ठी रोज की तरह 10:00। 10:05 पर फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम होगा गीत सागर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में आज आप सुनेंगे रूपाली पांडे का राग भैरव में ध्रुपद गायन। समय रहेगा सुबह 10:30। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 संग्रहालय से सुनिएगा जंग लगी तलवार का भाग 11, 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगी। 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 आपकी फरमाइश का आनंद लीजिएगा। शाम पांच बजकर दो मिनट पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी, इसमें सुनिएगा डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से ली गई वार्ता की वार्ता सरकार के 12 वर्ष नई शिक्षा नीति से बदलता भारत का शैक्षिक परिदृश्य। इसे एक बार फिर से सुन लीजिएगा, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की वार्ता होगी सरकार के 12 वर्ष नई शिक्षा नीति से बदलता भारत का शैक्षिक परिदृश्य, साथ ही फिल्म संगीत और रोजगार सूचना। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:33 पर, 6:30, 8:35 पर और रात्रि 10:00। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा।

शाम 7:21 पर ग्राम सभा में सुनिएगा कुलदीप शर्मा से ली गई भेंट वार्ता, खरीफ फसलों की तैयारी और बीजोपचार, साथ ही बुंदेली समाचार और कुछ लोकगीत होंगे। रात्रि आकाशवाणी मध्य प्रदेश से 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आतंकवाद। 9:30 बजे उर्दू कार्यक्रम होगा कहकशा, ये गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा आबशारे गजल। रात्रि 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में रूपाली पांडे का राग जोग में ध्रुपद गायन आपको सुनवाया जाएगा।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को श्री मोदी ने गर्मजोशी, विश्वास और भारत तथा स्लोवाकिया के लोगों को एकजुट करने वाले प्रेम का प्रमाण बताया। इससे पहले उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष 1087 रिक्तियाँ थीं और मुख्य परीक्षा के लिए 14000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6-7 माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता

0: प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा में लगभग 1,17,000 से अधिक और कक्षा 8वीं के लगभग 1,32,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश को एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और जर्मन सरकार समर्थित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। इसमें बताया गया कि एग्री वोल्टाइक कृषि एवं सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक संगठन है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ उसी खेत में ही सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम हो, खाद्य सुरक्षा बनी रहे तथा भूमि संबंधी विवादों से भी बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के शीर्षक से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अर्जित किए। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेटों और बेटियों ने सभी 4 वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून इस हफ्ते दस्तक दे सकता है। उससे पहले राज्य के बड़े हिस्से में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कन्या क्रीड़ा परिसर में बड़ी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत छात्राओं का चयन 22 जून से 26 जून तक किया जाएगा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी वायसन लॉज में आज उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिला प्रशासन के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में संवाद करेंगे। मंडला में आज समान नागरिक संहिता के उच्च स्तरीय समिति सदस्य बुधपाल सिंह आरडी कॉलेज में आयोजित जन परामर्श समिति बैठक में शामिल होंगे। डिंडौरी में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान करंजिया में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। सतना में पल्स पोलियो अभियान के लिए कुल 1809 टीकाकरण बूथ, 7 ट्रांजिट

बूथ और 26 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। और आगरमालवा जिले के कानड़ स्थित प्राचीन हनुमान बावड़ी पर बावड़ी उत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे फ्रांस। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर और भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर प्रस्तुत है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

नमस्कार भोपाल के सभी सुनने वालों को संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। भाई गर्मी की तपिश काफी कम हो गई है और फिजा भी काफी सुहानी हो गई है, बदल गया है मंसर। ऐसे में लब पे आ रहा है वो शेर, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। निदा फाजी साहब का यह शेर आज के दौर में बेहद खास हो जाता है। वजह साफ है कि आज हमारा ज्यादातर वक्त घर की चार दीवारी या फिर ऑफिस में गुजर रहा है और कुदरत के करीब जाना, उसकी खूबसूरती से रूबरू होना, उसकी दी हुई सौगात उपहारों से वास्ता रखना ना के बराबर हो गया है। हर कोई अपने में गुम होकर रह गया है और इस बात से नावाकिफ है कि उसके आसपास प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। तरह तरह के दरख्त, हरियाली का आलम, छोटे बड़े तालों में उठने वाली लहरें, परिंदों का कलरव, उनकी मीठी आवाज, कहीं भंवरों की गुंजन, हवाओं की छुअन, ना जाने कितने दिलकश नज़ारे जिनका दीदार हमें सुकून तो देता ही है। और पर्यावरणविद कहते हैं कि अनेक मर्ज कुदरत की गोद में आकर ही दूर हो जाते हैं, इसलिए हम अपने व्यस्त समय में से कुछ इतना वक्त निकालने की कोशिश जरूर करें कि कुदरत के करीब जा पाएं। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, हर वक्त एक अलग चित्र, एक अलग तस्वीर पेश करती है प्रकृति। और जब मानसून करीब है तो उमड़ते घुमड़ते मेघ, काली घटाएं, कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसती बूंदों का अनूठा संसार हमारी नजरों के सामने होता है। हम महसूस करते हैं बूंदों की छमछम, उनकी सुरलहरियां, कानों में रस घोलने वाला मीठा संगीत। तो प्रकृति से नाता जोड़िए, अपने जीवन में ऊर्जा की अनुभूति कीजिए।

0: 1942 लव स्टोरी फिल्म का ये गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। और आज के कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे संगीत नाटक एकेडमी के बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार प्राप्त रामेंद्र सोलंकी से। मोटापा कम करने में योग की क्या भूमिका हो सकती है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी। और नर्मदा परिक्रमा के कुछ अनुभव जानेंगे ओपी श्रीवास्तव जी और भारती श्रीवास्तव जी के साथ। बस रोजाने की तरह सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। इस वक्त आप भोपाल रेडियो का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार भोपाल।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं, नाम है नमस्कार भोपाल। समय मिला ये सुबह के 7:27 और 32 सेकंड हुए हैं। देखते हैं समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। पहली खबर है अमेरिका ईरान में शांति समझौता, जल्द खुल जाएगा हॉर्मुज, शांति की उम्मीदों से झूमा शेयर बाजार। अमेरिका ईरान के बीच समझौते ने सोमवार को वैश्विक बाजारों को गुलजार कर दिया। प्रमुख वैश्विक शेयर बाजारों के साथ भारतीय बाजार भी सकारात्मक माहौल में शामिल हुए। सेंसेक्स ने 736 अंकों की तेजी दर्ज की और निफ्टी 23,850 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। रुपए ने भी मजबूती दिखाई और 60 पैसे की बढ़त के साथ 94.58 पर बंद हुआ। अगली खबर है मध्य प्रदेश में भी होगी साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज की सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। डेटा की सुरक्षा, राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उन्होंने साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का स्थापना दिवस 17 को। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय यानी MPST भोपाल के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर 4 दिवसीय स्थापना रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव 17 से 20 जून तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से रविन्द्र भवन में आयोजित होगा। और फुटबॉल का खुमार सभी पर छाया हुआ है, इसी से जुड़े हुए समाचार हैं। कमाडा के जादुई गोल से जापान ने नीदरलैंड को बराबरी पर रोका। दाइची कमाडा ने अंतिम सीटी बजने से कुछ मिनट पहले गोल किया, जिससे जापान ने विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड को 2-2 से बराबरी पर रोक दिया। वहीं स्वीडन ने यासिन के 2 गोल से ट्यूनिशिया को 5-1 से रौंदा और जर्मनी सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन चुकी है। ये थी समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। यदि आप किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से

जुड़े हैं, जनहित में आपका कोई कार्यक्रम है तो उसकी सूचना हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपको पता ही है कि नमस्कार भोपाल के माध्यम से हम पहुंचते हैं दूर दूर तक। आपकी जानकारी, आपकी काम की बातें होती हैं कई श्रोताओं को। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुन लेते हैं जॉली LLB 2 फिल्म का ये गीत।

सुमधुर गीतों और उपयोगी की जानकारियों से सजी प्रस्तुति इस समय जारी है। नमस्कार भोपाल। कुछ ही पलों में हम आज की पहली जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुनते रहिए नमस्कार भोपाल।

0: सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: मैं हूँ पूर्ण चंद वडाली।
2: मैं हूँ प्यारे लाल वडाली। आप सुन रहे हो कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार भोपाल।
0: आपकी सुबह को महकाने वाला और आपको अपडेट रखने वाला कार्यक्रम इस समय जारी है नमस्कार भोपाल। सुबह के 7:33 हुए हैं। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा, जिनके प्रति हर किसी की विशेष आस्था है, सम्मान है और हैं विशेष भावनाएं। और इसी भाव को हृदय में लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ओपी श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी भारती श्रीवास्तव जी ने 3,144 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की। 10 दिसंबर 2025 से 5 मई 2026 यानी तकरीबन 5 महीने की इस यात्रा के अनुभव जानने के लिए हमने छोटी सी मुलाकात की है ओपी जी और भारती जी से। सबसे पहले तो ओमप्रकाश श्रीवास्तव जी और भारती जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कहते हैं नर्मदे हर।
3: नर्मदे हर।
4: नर्मदे हर।
0: नर्मदा हम सबके लिए जीवनदायिनी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था हमसे जुड़ी हुई है। बताएं कि इस नर्मदा परिक्रमा को करने के पीछे मूल मंशा, मूल उद्देश्य क्या रहा आपका?
3: नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य एक तो धार्मिक होता है, दूसरा इसके साथ बहुत सी चीज़ें और हैं। जब हम 3000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलते हैं तो एक शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है। हम जब किनारे से गुजरते हैं तो वहाँ के लोगों की संस्कृति है, उन सबको देखते हैं, करीब से देखते हैं समाज किस दशा में रह रहा है। हम लोग तो अपने घर तक ही सीमित रहते हैं। और इसके साथ साथ जो नर्मदा जी के किनारे एक तपा भूमि है तो उसके आध्यात्मिक अनुभव भी हमको होते हैं।

0: मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने इस यात्रा में सहभागिता की, क्योंकि उपेश श्रीवास्तव जी तो सेवानिवृत्त हो चुके थे भारतीय प्रशासनिक सेवा से, आप चूंकि कार्यरत थी, आपने कैसे मन बनाया कि आप भी इस यात्रा में सहभागी बनेंगी?
1: ये हम लोगों का बहुत पुराना एक संकल्प था, करीब 10-15 साल पुराना। सर्विस में रहते हुए समय नहीं निकाल सकती, इतना अवकाश नहीं मिलता। मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और फिर हम दोनों ने साथ में नर्मदा परिक्रमा की शुभारंभ किया।
0: निश्चित रूप से नर्मदा परिक्रमा की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग पहले भी कर चुके हैं नर्मदा परिक्रमा, और उनके पीछे कोई ना कोई ध्येय होता है। तो श्रीवास्तव जी, आपने कौन सा उद्देश्य लेकर इस यात्रा से जुड़ना चाहा और इसे पूरा किया?
2: हम जब किसी नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो हम उनको अपनी आंखों से देखते हैं कि उनका सौंदर्य कितना है, और कई कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जैसे अमृतलाल वेगड़ जी ने बहुत अच्छी नर्मदा सौंदर्य की नदी नर्मदा के नाम से पुस्तक लिखी है। हमारा मूल उद्देश्य नर्मदा जी के पीछे जो आध्यात्मिकता है उसको अनुभव करना था, नर्मदा जी के किनारे चलना, उनको महसूस करना, हमारे अंदर जो भाव उठते हैं उन भावों को समझना, और कैसे हमारे अंदर के जो विकार हैं वो कैसे कम होते हैं नर्मदा जी में, कैसे दैवीय गुण की वृद्धि होती है।
0: कहाँ से इस यात्रा को आपने शुरू किया, मतलब इस परिक्रमा का आरंभ आपने कहाँ से किया, और किस तरह से आपने नई नई अनुभूतियां की, नए नए आपको अनुभव हुए?
1: हम लोगों ने नर्मदापुरम में नर्मदा जी के तट पर एक देह विदेह नामक आश्रम बनाया है। वहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, तो हमने उसी स्थान से नर्मदा की परिक्रमा 10 दिसंबर को प्रारंभ की और समुद्र पार करके अमरकंटक में नर्मदा जी के उद्गम को पार करते हुए वापस फिर नर्मदापुरम में ही परिक्रमा की समाप्ति की।
0: तो आपने नर्मदा परिक्रमा करने वाले और लोगों को भी देखा होगा, किस तरह के भाव उनमें थे, और आप उस माहौल में ढलते गए जब नर्मदा जी का स्पर्श होता है और ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ चल रही हैं।
2: हम लोगों ने जब नर्मदापुरम से परिक्रमा शुरू की तो पहले हम अमरकंटक होते हुए, ओंकारेश्वर होते हुए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से हम लोग गुजरात में गए, गुजरात में समुद्र को पार करने के बाद फिर हम जब आए तो फिर से वही गुजरात महाराष्ट्र होते हुए अलीराजपुर से हमने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। देवास आता है, सीहोर है, रायसेन है, जबलपुर है, ऐसा होते हुए मंडला डिंडोरी होते हुए अमरकंटक, और वहां से नरसिंहपुर होके हम लोग वापस होशंगाबाद आए। सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि हम लोग पैसा लेके अपने साथ नहीं चलते हैं, जो जहां जैसा मिलता है हम उसको स्वीकार करते हैं। तो हमने बहुत परिक्रमावासी देखे जो इसी प्रकार के संकल्प के साथ चलते हैं। मां से मान्यताएं होती हैं, किसी को कोई बीमार है, नौकरी की जरूरत है, शादी नहीं हो रही, ऐसे लोग भी अपनी मान्यताएं लेके चलते हैं। और ऐसे सन्यासी भी हमने देखे जो बिना किसी कामना के निष्काम केवल मैया की सेवा करने के लिए, उनका प्रेम, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे थे। पर एक बात है, जो नर्मदा किनारे के निवास करने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, कोई भी दिखेगा उसको बुलाएंगे, अपने घर में रुकाएंगे, भोजन कराएंगे, चाय देंगे, नाश्ता देंगे, तो एक अद्भुत भाव है उनका नर्मदा मैया के प्रति।
0: भारती जी, जब नर्मदा परिक्रमा की बात आती है तो उसमें हमें पैदल चलना होता है, और पैदल जब चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि नर्मदा की परिक्रमा करने पर हर जो कंकड़ है वो भी शंकर बन जाता है और हमें शक्ति मिलती जाती है, हम उस यात्रा पर बढ़ते जाते हैं। आप में किस तरीके से ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, और किस तरह से आप बाधाओं को भूलते हुए इस परिक्रमा को पूरी करते हुए आगे बढ़ी?
1: जब परिक्रमा प्रारंभ की तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर दूरी भी हम तय कर सकते हैं। नर्मदा जी के तट पर जब नर्मदा जी के दर्शन करते हैं और उनके साथ साथ चलते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के साथ साथ हम 30 से ऊपर भी 35-36 किलोमीटर की भी यात्रा एक दिन में की।
0: श्रीवास्तव जी, किस तरीके के बैरियर्स उसका सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है जब इस यात्रा करते हैं, कुछ तकलीफें होती हैं?
2: देखिए, हम लोग जो बहुत अच्छे लग्जरी में जीते हैं उनको सबसे बड़ी तकलीफ तो यह होती है, हम जब जाते हैं तो टॉयलेट्स नहीं मिलते, या टॉयलेट्स मिलते हैं तो सामूहिक होते हैं और स्वाभाविक है उसमें सफाई नहीं होती। घर में रहते हैं तो हमारा बेडरूम अलग है, हमारी टॉयलेट अलग है, पता चला 20 और 25 लोग दूसरे सो रहे हैं, कई बाबा भी हैं, अपनी थाली लेके जाते हैं, हमें मांगना पड़ता है, यानी हमारे पूरा अहंकार का त्याग होता है।
0: माँ नर्मदा जहाँ जहाँ से निकली है उनके घाटों को स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए। इस यात्रा में आपने क्या देखा, पर्यावरण को लेकर लोग कितने सचेत हैं, वो कितनी माँ नर्मदा की सेवा कर रहे हैं उसे निर्मल करने के लिए?
1: कई जगह बहुत सी समितियां बनी हुई हैं गाँव में, और वो लोग अपने गांव के घाट को साफ सुथरा रखते हैं। कहीं तो मतलब खुद आपस में मिलकर लोगों ने घाट का निर्माण किया है, कहीं कहीं तो कपड़े तक नहीं धोते हैं नर्मदा जी में। कुछ जगह ऐसी इतनी श्रद्धा है कि वो बाल्टी में पानी लेके बाहर धोएंगे पर नर्मदा जी में ही कपड़े नहीं धोएंगे, तो ऐसा भी लोगों के मन में भाव है।
0: श्रीवास्तव जी, अब नर्मदा परिक्रमा की इस 5 महीने की गाथा को आप किस तरह से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: कहीं कुछ कार्यक्रम होता है तो हम उस तरह से बताते हैं, बाकी हम इसके लिए एक पुस्तक लिखेंगे, आध्यात्म की नदी नर्मदा, क्योंकि हमने देखा है कि सौंदर्य पे बहुत लिखा गया है नर्मदा जी पे, पौराणिक तो है ही बहुत सारा, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो हम घूमते हैं और हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, उसको हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं मुख्य रूप से।
0: निश्चित रूप से आपकी जो गाथा है वो

0: ज्यादा से ज्यादा लोग पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। इतना समय देने के लिए उपी श्रीवास्तव जी भारती जी आपका हृदय से धन्यवाद।
1: नर्मदे हर।
2: नर्मदे।
0: नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा कर लौटे श्री उपी श्रीवास्तव जी और भारती श्रीवास्तव जी से हमने जाने उनके अनुभव। निश्चित ही ये चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण और प्रेरक रही होगी। नर्मदा का प्रवाह, उसकी कलकल, छल छल, उसका सौंदर्य इसी तरह बना रहे, इसके लिए हमें अपने स्तर पर भी प्रयत्न करने होंगे ताकि सारी नदियां सदा नीरा, सदा निर्मल बनी रहें। फिर चाहे भारत की कोई भी नदी हो, सरस्वती, जमुना या फिर गंगा।

0: एक बराबर जिसमें पानी डाले रे लहराए, पानी में जैसे धूप छाओ रे।
1: काबुली वाला फिल्म का गीत हमने आप तक पहुंचाया। बोल गुलजार के थे, दस बनाई थी सलील चौधरी ने और स्वर था हेमंत कुमार का। हेमंदा की आज जयंती भी है 16 जून को, और मशहूर संगीतकार के रूप में आपका शुमार होता है और मशहूर गायक के रूप में, तो उनकी स्मृति को भी हम नमन करते हैं इस गीत के जरिए। जरूरी जानकारी हो या शहर का हाल, सब कुछ लेकर आता नमस्कार भोपाल।
2: सुंदर श्याम सुंदर बर लीला।
3: मैं हूँ भरतनाट्यम नृत्यांगना गीता चंद्रन। आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: सुंदर बर लीला।
1: सुबह के 7:43 और 52 सेकंड हुए हैं। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश की अलग अलग विधाओं के कलाकारों को भी इस सूची में स्थान मिला है। इसी में शामिल है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध युवा तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का नाम, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हमने बधाई स्वरूप छोटी सी मुलाकात की है रामेंद्र सोलंकी के साथ। सबसे पहले तो रामेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और बहुत खुशी हो रही है हमें ये जानकर कि आपको संगीत नाटक अकादमी का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार, उससे आपको सम्मानित किया जाएगा।
4: थैंक यू सो मच। ये सब मेरे गुरु, मेरे माता पिता, भगवान का और आप सबका आशीर्वाद है जिसके कारण ये सफल हुआ।
1: संगीत के क्षेत्र में तबला वादन के लिए आपको ये पुरस्कार दिया गया है और तबला

0: मदन का जब जिक्र होता है तो मैंने जहाँ तक आपको देखा है, बचपन से ही आपने संगीत की तालीम ली थी अपने पिताजी से, और आप गुरु जी भी आपके प्रथम वही रहे हैं। और तबले को लेकर आपने जो मेहनत की है, तो आज आपने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भी सुशोभित किया है। बताएं कि ये जर्नी कैसी रही, और जब आपको शुरुआत आपने की थी तो क्या आपको लगता था कि इस मुकाम तक आप पहुँचेंगे?
1: ये इसमें मैं अपने माता पिता का, भगवान का और मेरे गुरु उनका इसमें सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद थोड़ा सा अगर कह सके तो मेरा जर्नी तो बहुत मुश्किल रही, परिश्रम से भरी रही, जो अभी तक करता आ रहा हूँ और आगे भी करना ही है।
0: तबला वादन के प्रति रुझान कैसे रहा?
1: मेरे पिताजी मेरे ऑलरेडी तबला प्लेयर हैं, आप जैसा आप जानते
0: जी
1: हैं, उन्होंने तबला सीखा तो बचपन में वो रियाज करते थे घर पर छोटे में, तो मैं उनको सुनता था, तबला सुनता था, तो उनको भी लगा और मैं उनके पास जब वो रियाज करते थे तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता था, तो उनको लगा कि ये कुछ कर सकता है, तो खेल खेल में उस टाइम उन्होंने मुझे सिखाया, तो फिर धीरे धीरे उनको लगा कि ये कुछ इसमें कर सकता है, तो उन्होंने फिर प्रॉपर शिक्षा चालू की, तो अभी तक निरंतर जारी है मेरी।
0: सबसे पहली शुरुआत आपने बेहतर मंच की कहां से की थी?
1: सबसे पहले मेरा परफॉर्मेंस यहीं भोपाल में ही हुआ था, पंडित ओम प्रकाश चौरसिया जी फेमस संतूर प्लेयर हैं, भारत भवन में मुझे बजाने का अवसर दिया।
0: और शुरू में आपने जाहिर की स्वतंत्र वादन यानी सोलो वादन ही किया होगा, और धीरे धीरे फिर आपकी जो पहचान बनी है वो एक संगतकार के रूप में बनी है। और एक ये परिवर्तन कैसे हुआ कि सोलो से अधिकतर आप संगत पे आए?
1: पहले तो तबला सीखा, मेरे पिताजी ने जो संस्कार दिया है, जो तबला सोलो के साथ साथ तबला एक संगत का वाद्य है जो आप सब जानते हैं, उसके लिए हमें मुझे पिताजी ने रिकॉर्डिंग सुनवाई, संगत सुनवाई, जो बड़े बड़े तबला प्लेयर हैं, कि उन्होंने मुझे बोला कि तबला सोलो तो आप बजा रहे हो लेकिन संगत इसमें इम्पोर्टेंट है, तो वो संस्कार मुझे दिया गया, तो उसी को मैंने सुना सीखा, उनको मैं सुनकर अपने तबला वादन में उसको इम्प्लीमेंट करता।
0: इतने सारे आपने मंचों पर प्रदर्शन किए हैं और संगत की है, और बहुत सारे कलाकारों के साथ आपका तालमेल बैठा है, कुछ खास कलाकारों का जिक्र कीजिए जिनके साथ आपने संगत की है और उनको आप जब भी याद करते हैं तो एक अलग ही रोमांचित हो उठते हैं।
1: भगवान के गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़े लोगों के साथ बैठने का अवसर मिला है, उन्होंने ही मुझे अवसर दिया, उस्ताद अमजद अली खां साहब जी, पंडित रोनू मजूमदार जी, पंडित राजेंद्र राजन मिश्रा जी, उस्ताद निषाद खां साहब, पंडित राकेश चौरसिया जी, उल्लास कशालकर जी, उन्होंने मुझे अवसर दिया, ये भगवान की कृपा, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है।
0: वाह, ये ऐसे नाम हैं जो शिखर पर हैं और इनके साथ संगत करके हम गौरवान्वित होते हैं, ये तो लाजमी है। लगातार आप तबला वादन के क्षेत्र में सक्रिय हैं, किस तरीके से इसे और भी मांझने की जरूरत होती है, क्योंकि कलाकार आजीवन सीखता है, तो रोजाना का किस क्या क्रम होता है आपके रियाज का, थोड़ा बताएं।
1: रियाज तो संगीत में आप जानते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रियाज तो करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े तबला वादक या कितना ऊंचा स्थान भी रख लें, अगर आपने रियाज नहीं किया तो वो चीज़ आपके हाथ में दिखती है, वो मैं समझता हूँ, कोशिश करता हूँ रोज के 3 से 4 घंटे 5 घंटे अपने समय निकालूं तबले के लिए दूं, जो साज है मैं अपने उसको एक ऐसा कोशिश करता हूँ कि वो मेरे को बताए कि मेरे से क्या गलती है, उस हिसाब से मैं, और जब मैं परफॉर्मेंस देता हूँ अपना तो उसमें मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं, या तो उसको मैं सोच के अगली बार ना हो उसका मैं अनुसरण, उसका रियाज करके मैं आगे इम्प्लीमेंट करता हूँ।
0: और कुछ नए आप नवाचार भी करते हैं तबला वादन में, विशेष रूप से संगत के दौरान, तो मैंने आपको देखा ही है कि आप कायदे और टुकड़े जब लगाते हैं तो एक अलग ही माहौल बनता है, और क्या नवाचार करते हैं?
1: अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ग्रुप परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ, मैं मेरे जो कला के जो फ्रेंड्स लोग हैं, मित्र लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, आपने लास्ट ईयर देखा होगा मैंने एक 12 बाजा के नाम से एक
0: बिल्कुल
1: वृंद प्रस्तुत किया था, भारत भवन वालों ने ही मुझे निर्देशन करने का अवसर दिया, ऐसे मैं आगे बढ़ता हूँ कि इंडियन क्लासिकल को कोशिश करता हूँ कि उसको आगे बढ़ा सकूँ।
0: ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये नवाचार भी जो हम कर रहे हैं आने वाले समय में एक वृहद रूप लेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लेकर आपने कुछ विदेश की यात्राएं भी की हैं, उसके बारे में कुछ बताएं कि वो यात्राएं कैसी रही हैं और वहां पर आपने क्या माहौल देखा है संगीत को लेकर, हिंदुस्तानी संगीत को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है?
1: हिंदुस्तानी संगीत का जितना अपने भारत में नाम है उतना ही और उससे कहीं ज़्यादा वो लोग अपने अपने संगीत को अप्रिशिएट करते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि ये हमारे भारतीय संगीत बहुत बड़ी धरोहर है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गया, इससे पहले मैं कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा में गया था, उसके बाद मैं साउथ कोरिया में भी गया था, मेरा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ फेस्टिवल ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर जाके हमें वहाँ के लोगों के सामने अपना संगीत प्रस्तुत करने में बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं।
0: वाकई बहुत अच्छी बात कही रामेंद्र आपने, और विदा लें उससे पहले हम चाहते हैं कि कोई परन या कोई कायदा हमारे सुनने वालों को एक ऐसा सुना दें ताकि आपसे हुई ये मुलाकात और भी शानदार हो उठे।
1: गत प्रस्तुत करता हूं। 3 ताल में प्रस्तुत है। दिन दिन ना ना दिन दिन दा दा दिन दिन ना तक दिन दिन दा दधि गड़ तक दा दधि गड़ तक दा दधि गड़ दधि गड़ तक दा तक दा के ते टे टा गिन तरा ना दा के ते टे ता का दधि गड़ तक दा दधि गड़ तक दा दधि गड़ तक दा दधि गड़ तक दा दधि गड़ तक दा दधि गड़।

0: क्या बात है, क्या बात है। लोगों को एहसास हो गया होगा कि रामन जी का तबला चल रहा है। तो हम एक बार फिर से आपको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिलने पर, संगीत नाटक अकेडमी का जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया।
0: तो तबला उनके साथ, रावण जी के साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बोल प्रस्तुत किए, आनंद आ गया कि वे तबला वादन समक्ष कर रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं मध्य प्रदेश को मिले इस सम्मान पर। यकीनन रावण जी संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान इसी तरह देते रहें, अपने वादन से सबको अभिभूत करते रहें, हम यही कामना करते हैं। और चलिए अब आपको सुना देते हैं मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का एक प्यारा सा गीत, जिसमें तबला बहुत ही प्रमुखता से उपयोग किया गया है। और स्वर है मोहम्मद रफ़ी का, बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: दादा धिकी धिकी चिकदा।
1: आज 16 जून है और आने वाली 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस से पूर्व भी कई गतिविधियां विभिन्न स्थानों पर शुरू हो गई हैं। हम अपने नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में रोजाना इसकी महत्ता पर चर्चा कर रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। इनसे हम चर्चा कर रहे हैं ओबेसिटी या मोटापे के नियंत्रण में योग किस प्रकार कारगर हो सकता है और इस बार की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसके बारे में सुनिए।
2: मंशा है कि देखिए, हमारे यहाँ ये धारणा है एज हो रही है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा वॉक नहीं करूंगा, घुटने खराब हो रहे हैं, बैक खराब हो रही है, स्किन खराब हो रही है। डेफिनेटली एजिंग की निशानियां हैं, लेकिन अगर आप यौगिक जीवन शैली को अपनाते हैं यकीनन एजिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन ईटिंग हैबिट्स, अनुशासित जीवन शैली जिसे योग में कहा जाता है, उसको अगर आप अपनाते हैं तो योग में किसी तरह की कोई एजिंग नहीं है। जिसे कहा जाता है एजिंग को डिले कर सकते हैं और स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं। योग में नियमितता बहुत जरूरी है। योग से अच्छा ऑप्शन आपके पास विदाउट एनी साइड इफेक्ट कुछ और नहीं है।
1: सही कहा आपने कि योग अगर आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और आपको एक स्वस्थ जीवन शैली भी आपके सामने होगी। इन दिनों हम देख रहे हैं आकांक्षा जी की ओबेसिटी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, तो मोटापे के कंट्रोल के लिए योग हम कौन कौन से अपना सकते हैं?
2: लाइफस्टाइल डिजीज जो कही जाती हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ओबेसिटी, मोटापा भी बीमारी ही कहा जाता है। वजन जो है वो आवश्यकता से अनुसार बढ़ने लगता है, ऐसा बोला जाता है कि मोटापा बीमारियां लेकर आता है। योग में जो आसन है मोटापे के लिए, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ मोबिलिटी के लिए एक्टिविटीज होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती हैं। आसन होते हैं जैसे धनुरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, नौकासन, ये सारे आसन करके आप मोटापे को आप दूर कर सकते हैं। जब भी योग शुरू करें उसमें सबसे पहले नियमितता की आवश्यकता होती है।
1: नियमितता की आवश्यकता है। और इन आसनों को करने के लिए क्या खाली पेट हमें होना चाहिए और किस समय हमें करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, और कितनी देर करना चाहिए?
2: सर्वोत्तम समय योग करने का है प्रातः काल। सबसे पहले सुबह उठकर गर्म पानी से शुरुआत कीजिए, जिसे कहा जाता है योग में उषा पान। गर्म पानी पीने से बहुत सारे आपके

0: शरीर के विषैले पदार्थ टॉक्सिन्स के थ्रू आपके शरीर से बाहर होते हैं। उसके बाद जिनका बीपी फ्लक्चुएट करता है, बीपी की या किसी तरह की मेडिसिन लेते हैं, उनको सुबह बोला जाता है कि थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, फिर आधे घंटे बाद आप योग कीजिए। सर्वोत्तम समय प्रातः काल है। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हार्मोन प्रॉपर रिलीज होते हैं, प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस हो जाता है बॉडी में, और ऑर्गन्स पर जो वो आसन आपके शरीर में प्रभावित करते हैं उन ऑर्गन्स को, जो एक्स्ट्रा चर्बी जो है, अतिरिक्त चर्बी जो है शरीर की, वो टॉक्सिन्स के थ्रू बॉडी से बाहर होने लगती है। 30% योग इक्वल टू कंप्लीट हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी आपको। क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड एंड टाइमिंग ऑफ फूड, दैट्स इट।
1: तो ये जो मोटापे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिन्होंने योग का सहारा लिया है, तो क्या आपके सामने ऐसे उदाहरण आपने देखे हैं जिन्होंने काफी वेट था उनका, आज वर्तमान में वो बिल्कुल उनकी बॉडी शेप में है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, 25-25 किलो वजन कम किया है लोगों ने मेरे सामने, मेरे देखते हुए, मेरे कैरियर में जब से मैं काम कर रही हूँ, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है लोगों की, सिर्फ बॉडी शेप में ही नहीं, उनकी हेल्थ में, उनके कार्य क्षमता बढ़ी है। दिन दिन भर जो एक घंटे जो काम करने में परेशान हो जाते थे, हाँफने लगते थे, परेशानियां होती थी, जैसे ही उनको स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई है, अब वो उन्होंने मुझे अपना फीडबैक शेयर किया है कि अब 10 से 12 घंटे वो लोग विदाउट एनी प्रॉब्लम काम कर रहे हैं, कार्य क्षमता उनकी बढ़ी है।
1: वैसे नियमित हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमें कौन कौन से ऐसे योग आसन या प्राणायाम करने चाहिए जिनके माध्यम से हम अपने को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रख सकें?
0: बिना प्राणायाम के और ब्रीदिंग के, मेडिटेशन के, योग 50% कहा जाएगा। और ये चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि योग जो है सिर्फ आसन और प्राणायाम करना ही योग नहीं है। शुरुआत जो करनी है वो प्रार्थना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, कोई भी एक मंत्र उच्चारण करना है, उससे आप अपने मन को शांत करते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए, कुछ 3 से 4-5 आसनों का एक समूह बना लीजिए, उन आसनों का अभ्यास कीजिए, कपालभाति कीजिए, प्राणायाम मतलब श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण, ये पूरे पैकेज के साथ आपका 1 घंटे का योगाभ्यास पूर्ण होता है और इसके साथ निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
1: तो योग दिवस बहुत ही करीब है, इस योग दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहती हैं आप हमारे सुनने वालों से, क्या आह्वान है आपका?
0: हमारी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, योगा कर्मेषु कौशलम, अपने हर काम को, अपने हर सत्कर्म को कुशलतापूर्वक करना योग है। तो आप सबसे निवेदन है, यौगिक जीवन शैली को अपना के देखिए, आप निश्चित रूप से कभी निराश नहीं होंगे।
1: आकांक्षा जी, आपने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद।
1: हमारे साथ थी योग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, जिनसे हमने जाना कि योग न केवल ओबेसिटी बल्कि तमाम बीमारियों के निदान या नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। बात वही फिर दोहराएंगे कि नियमित योग से ही हमारे जीवन शैली में सुखद बदलाव संभव है, तो गौर कीजिए इस बात पर और चल पड़िए योग के जरिए खुशियों की डगर पर गाते गुनगुनाते हुए।

हम आपको बता दें कि सुबह 8:30 बजे सुरमई सवेरा 10:05 पर गीत सागर और 12 बजे आपकी फरमाइश पेश करेंगी साधना जैन, जरूर सुनिएगा। आज के कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रिया भेजिए नमस्कार भोपाल द्वारा निदेशक आकाशवाणी श्याम लहल भोपाल पिन 462002। तो अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, तो आपका दिन शुभ हो, आपकी सारी कामनाएं पूरी हों, इसी आशा के साथ अनुमति दीजिए अपने मित्र संजय श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12

0: 5 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले

0: पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील

0: की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे।

साधना जैन का नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब खूबसूरती की बात चली है तो उसकी असल में परिभाषा क्या है, आज हम इस पर ही बात कर लेते हैं आपसे। खूबसूरत है वो प्रार्थना जहाँ से किसी और के लिए दुआ निकलती है। खूबसूरत है वह हृदय जो पराए दुखों को भी अपना समझ लेता है। खूबसूरत है वो जज्बात जो बिना कहे ही भावनाओं को पढ़ लेते हैं। खूबसूरत है वह एहसास जिसमें प्रेम की मधुरता घुली होती है। और खूबसूरत हैं वो हाथ जो कठिन घड़ी में सहारा बनकर थाम लेते हैं। खूबसूरत हैं वो आंसू जो अपने लिए नहीं किसी और के दर्द में बहते हैं, क्योंकि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि हमारी इंसानियत, हमारी बोली, हमारे व्यवहार में होती है।

दोस्तों, अगर विचार अच्छे हों तो अपना मन ही मंदिर है, कर्म अगर अच्छे हों तो तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा हो तो अपना धन ही मंदिर है, और यह तीनों अगर अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है और खुशहाल है।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से सुरमई सवेरा। दोस्तों, कई बार हमने देखा है और अपने आप पर भी हमने ये लागू किया है कि हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं, लेकिन जब हम हर बार क्रोधित होते हैं तो अपना ही कुछ खोते हैं, संबंध, समय और शांति।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से सुरमई सवेरा, मैं हूं आपके साथ साधना। दोस्तों, जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। हमने ये बात बहुत पुरानी सुनी है, बचपन से सुनी है, अभी तक सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको यदि अनुशासन डिसिप्लिन का कुछ पार्ट सीखना हो तो हमारी आकाशवाणी से सीख लीजिए। सेकंड्स का भी अंतर नहीं आता है, मिनट तो बहुत दूर है। जो प्रोग्राम जब निर्धारित होता है उसी समय शुरू होता है। आंधी आए, तूफान आए, सुबह जो वंदे मातरम शुरू होना है, ST जो शुरू होनी है वो होती है। दूसरा, अनुशासन का यदि हम प्रकृति को देखें तो कभी प्रकृति को गौर से देखें। एक फल के अंदर दानों का कितना अनुशासन है, वो रंग, वो सलीका, जो परम सत्ता सृष्टि के इतने छोटे से हिस्से में इतना मुकम्मल रूप दे देती है। तो यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो क्या आपको अकेला छोड़ देंगे? नहीं, वो ईश्वर हर वक्त हमारे साथ होता है, बस विश्वास करने की बात होती है।

दोस्तों, समय, स्वास्थ्य, मित्र और संबंध, ये वस्तुएं बहुत मूल्यवान हैं। अधिकतर लोग इनका मूल्य तब नहीं समझते जब ये उनके पास होती हैं, और जब ये वस्तुएं खो जाती हैं, उनसे छूट जाती हैं, तब उनका मूल्य समझ में आता है। और जब इनका मूल्य समझ आता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। हमें समय पर इन वस्तुओं से लाभ क्यों नहीं उठाया? समय निकल जाने पर पश्चाताप करने से कुछ लाभ नहीं होता, इसलिए समय रहते इन चार वस्तुओं का मूल्य समझें, उसका यथा योग्य लाभ उठाएं और उसकी कद्र करें।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। इसका शेष भाग आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरों के बाद। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे। इसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी 6-7 महीने में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रदेश में इस हफ्ते मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल और ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुरमई सवेरा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम का शेष भाग। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप बताइएगा हमें। और दोस्तों देखिएगा, हम हर रोज दर्पण देखते हैं है ना, तो दर्पण के सामने चाहे सुंदर फूल रखा हो या कांटों का ढेर, दर्पण न तो फूल से आसक्त होता है और न ही कांटों से घृणा करता है। जैसे ही वे सामने से हटते हैं, दर्पण फिर से खाली और शुद्ध हो जाता है। एक जागृत मन भी उसी दर्पण की भांति होना चाहिए। जीवन के हर रंग को

दोस्तों, जो हम बातचीत करते हैं, गॉसिप करते हैं, वो तो सबका बहुत मन पसंदीदा काम होता है, क्योंकि उसके बगैर तो ऐसे लगता है कि शायद कुछ छूट सा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करता है, और कमज़ोर दिमाग लोगों पर चर्चा करता रहता है।

दोस्तों, दूसरे क्या कहते हैं यह मसला दूसरों पर ही छोड़ दें तो हम अपना अति उत्तम खुद ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सुरमई सवेरे में बस इतना ही। कभी जीवन में किसी मोड़ पर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा साधना के साथ। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार तिवारी के गाए भजन।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार तिवारी के गाए भजन। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शशिकांत मणि त्रिपाठी की वार्ता योग और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और प्रदीप श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ। पहले सुनिएगा वार्ता शशिकांत मणि त्रिपाठी की।
1: मानसिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका क्या हो सकती है, ये एक बहुत ही महत्व

महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान समय में तनाव, अवसाद, चिंता ऐसे शब्द बड़े कॉमन हो गए हैं, इसका उपयोग अपने जीवन में लोग करते हैं। लेकिन योग एक ऐसी विद्या है जो चित्त को शुद्ध रखने में अपनी महती भूमिका निभाती है। योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, यानी चित्त में वृत्तियां निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं और उन वृत्तियों को शांत करके उनका निरोध करके ही हम योग की सिद्धि कर सकते हैं। तो निश्चित ही मन में जो विकार आते हैं वो चित्त की वृत्तियों की वजह से आते हैं। तो इसमें हमें ये जानना चाहिए कि चित्त की वृत्तियां क्या हैं। चित्त की वृत्तियां साधक और बाधक दो रूप में हो सकती हैं। जैसे हम लगातार विचार करते हैं तो विचारों में किस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। क्योंकि हम सोचते तो रहते हैं लेकिन क्या सोचते हैं इसके बारे में नहीं सोचते। तो जब इस पर हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि योग की साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग चित्त का ही विज्ञान है और चित्त को समझने के लिए योग का निरंतर अभ्यास, जिसमें अष्टांग योग की बात महर्षि पतंजलि ने की है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये उत्तरोत्तर जब इसकी साधना हम करते हैं तो एक एक सोपान पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता देखें तो योग का ही शास्त्र है और इसमें चित्त में उत्पन्न होने वाले विषाद को अभिव्यक्त करते हैं अर्जुन पहले अध्याय में, और पहले अध्याय का नाम विषाद योग ही है। तो विषाद व्यक्ति को होता क्यों है? विषाद का मूल कारण है फल की आकांक्षा या फल के बारे में सोचते रहना। आप देखें तो कभी भी हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के पीछे जो ड्रिवन फोर्स होती है वो ये होती है कि इसके परिणाम को हम कैसे प्राप्त कर लें, और परिणाम पर हम फोकस होते हैं, कर्म पर फोकस नहीं होते। जबकि कर्म पर अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें तो निश्चित ही कर्म में कुशलता आएगी और कर्म को आप परफेक्शन के साथ कर सकेंगे, और जब कर्म पूरे परफेक्शन के साथ किया जाएगा तो परिणाम उस कर्म के अधीन होगा। और परिणाम पर जब हम सोचते हैं तो कार्य हमारा अधूरा छूट जाता है, और आधा अधूरा कार्य कभी भी परिणाम लाने में अक्षम होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कई बार इसका अर्थ लोग ये निकालते हैं कि क्या कर्म बिना फल की इच्छा के किया जा सकता है? फल की इच्छा के बिना कर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फल की प्राप्ति बिना कर्म की शुद्धता या कर्म की पूर्णता के नहीं होती। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। इसलिए कर्म योग भी योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और कर्म में कुशलता लाना योग का एक महती उद्देश्य है। और कर्म की कुशलता की बात तो हम करते हैं, एक परिभाषा भी है, योगः कर्मसु कौशलम्, लेकिन कर्म में कुशलता कैसे आती है, इसके लिए फिर गीता में सूत्र दिया गया है। कहते हैं, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय उज्जस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसका अर्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि से युक्त हो। बुद्धि से युक्त होने का मतलब ऐसी बुद्धि नहीं जो हमेशा फल के बारे में सोचती रहती है, ऐसी बुद्धि जो सुकृत और दुष्कृत, मतलब असफलता और सफलता, इन दोनों का त्याग कर दे और सिर्फ उस कर्म पर ध्यान केंद्रित करे जिस कर्म से सफलता प्राप्त होती है। तो निश्चित ही व्यक्ति के कर्म में कुशल होने का जो की योग्यता आएगी वो तभी आएगी जब आप सुकृत और दुष्कृत इन दोनों का त्याग करेंगे। यानी दोनों के त्याग से तात्पर्य है कि दोनों के प्रभाव से अपने को मुक्त करेंगे। आप देखें, अक्सर जब हम फल पर चिंतन करते हैं या परिणाम ही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है तो उस दौरान हम ये पाते हैं कि हमारे कर्म के साथ हमारा योग नहीं हो पा रहा है, और कर्म के साथ योग न होने के कारण जीवन में कई तरह की असंगतियाँ या कई तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास हिलता है, और क्यों? क्योंकि आपने अपना
बेस्ट कर्म में नहीं दिया। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित नहीं है, लॉयल नहीं है, कर्म नहीं कर पा रहा है। और जब भी कोई

मानसिक विकार जीवन में उत्पन्न होता है तो आदमी सबसे पहले अपने को कर्म से दूर करता है। आप देखेंगे जब भी आप जो चाहते हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार जो कर्म करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, या कर्म से अपने आप को दूर करने लगते हैं, कर्म करने का मन नहीं करता, तो ये मान लें कि कोई न कोई मानसिक विकृति जन्म ले रही है। क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे कि शरीर को जितना आप सक्रिय रखेंगे उतना ही आप फिजिकली स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मन जितना शांत रहेगा उतना ही आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मानसिक अस्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम मन से लगातार विचार करते रहते हैं और ऐसे अनावश्यक विचार करते रहते हैं जिसमें हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, या कई बार हमारे मन में ऐसे विचार भी आते हैं जो हमें ही संदिग्ध बनाते हैं, तो निश्चित ही ये तनाव, अवसाद और चिंता का कारण बनते हैं। तो जिसको ओवरथिंकिंग भी आजकल कहते हैं ना, कि बहुत सारे विचारों की आंधियां चल रही हैं, ओवरथिंकिंग बढ़ रही है। ओवरथिंकिंग तभी बढ़ती है जब हम अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं। कार्य से संतुष्ट होना एक बहुत बड़ी कुशलता है, इसी को कर्म योग कहते हैं। कि आप जो कर्म कर रहे हैं क्या वो कर्म आपको संतोष दे पा रहा है, उस कर्म को करके आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं है। अगर ये सवाल आप अपने आप से करते हैं तो निश्चित ही आपका कर्म योग से युक्त है, अन्यथा वो कर्म विचार करने योग्य है। तो कर्म से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए विचारों में हमेशा उलझे रहना आवश्यक नहीं है। जो विचार आप करें उस विचार के साथ आप अपने को क्रिया में भी संलग्न करें, क्योंकि क्रिया से अलग हो पाना एक प्रकार से मानसिक विकार को जन्म दे रहा है। और गीता को आप देखें तो गीता में अर्जुन भी मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब होता है, या ऐसे परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं जो परिणाम भविष्य में घटित होने वाला है, तो वो कर्म से अपने को अलग करने की चेष्टा करते हैं। मानसिक रोगों की पहचान के लिए अगर हम बात करें योग की भाषा में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आपको ये लगे कि आप जो आपका नियत कर्म है, जो आपका कर्म करने की का दायित्व है, उस दायित्व से जब आप अपने को अलग पा रहे हैं, तो ऐसे में आप ये पाएं कि आप ऐसे विचार से ग्रसित हो जा रहे हैं जिन विचारों के नाते आपका कर्म प्रभावित हो रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य में योग की बहुत महती भूमिका है। और योग के द्वारा हम अपने मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी जो संवेदनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य है, भावनात्मक अस्थिरता जो जन्म ले रही है विचारों की वजह से, उस भावनात्मक स्थिरता को लाने में योग की बड़ी भूमिका है। उसमें प्राणायाम का अभ्यास करके, ध्यान का अभ्यास करके हम अपने भावनात्मक स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भावनात्मक रूप से हम स्थिर होते हैं तब विचारों में स्थिरता आती है, क्योंकि आप देखिए कि अगर भावनाओं में आंदोलन उत्पन्न हो गया, भाव जगत आपका अस्थिर हो गया, तो फिर विचारों पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। कितना भी कहा जाए कि विचारों को पॉजिटिव सोचिए, लेकिन अगर भाव जगत आपका अस्थिर है तो सकारात्मक विचार ला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और योग में जो आसन के बाद प्राणायाम है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन का मतलब होता है स्थिर सुखमासनम, कि सुखपूर्वक स्थिरता से शरीर को स्थिर रखना, ये है आसन। और इसी आसन के बाद प्राणायाम की सिद्धि होती है। तो प्राणायाम के द्वारा हम मन को नियंत्रित करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि आपके श्वासों की गति जैसी होगी वैसे ही आपके मन की गति भी होगी। अगर आप एक बार अपने को ऑब्जर्व करें तो देखें, जब आप किसी राग और द्वेष में होते हैं तो उस समय आपके श्वासों की गति बदल जाती है, और जब आप किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु के बारे में चिंतन न कर रहे हों, शांत हों, तो उस समय आपके श्वासों की गति बिल्कुल अलग होती है, शांत होते हैं। तो ऐसे में प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन के विचारों को, या मन में विचार करने की या विचारों के आने की जो तीव्रता है, उसे शांत किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग डीप ब्रीदिंग यानी गहरे सांस लेने की अभ्यास लेने का अभ्यास करते हैं, जिसमें श्वास को पूरी गहराई से आप लें, डीप ब्रीदिंग करें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। तो ऐसे आप श्वास पर ध्यान दे करके अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, और विचारों को नियंत्रित करना
ही मानसिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की प्राप्ति है। एक सूत्र है योग में जिसमें कहते हैं, ध्यान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। यद्यपि ध्यान के बहुत सारे तकनीकी का लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान करने का विषय नहीं है। ध्यान करने की तैयारी हो सकती है, लेकिन ध्यान समस्त कार्यों से अपने को मुक्त करना ध्यान है। इस प्रकार जब आप देखेंगे तो ध्यान से हम मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं, मन के विकार मन को चलायमान बनाते हैं। मन एकाग्र तभी हो सकता है जब मन शुद्ध हो, यानी मन में जो संकल्प लिया उसी संकल्प पर आपका मन केंद्रित हो सके, तो ये समझें एक मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। जब आपका संकल्प बार बार टूटता है, आप बार बार विचारों में उलझते जाते हैं, तो ये समझें कि कहीं ना कहीं मन की कमजोरी है। मन जब विचारों की दुनिया में भटकाता है तो वो अनियंत्रित विचार आते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे विचार जो सार्थक नहीं हैं, निरर्थक हैं, वो लगातार हम करते रहते हैं। ये विचार हमें मानसिक रूप से रोगी बनाते हैं। तो इसलिए योग का अभ्यास करके, योग की विद्या का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को स्वस्थ कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए महर्षि पतंजलि एक सूत्र देते हैं, कहते हैं कि सुखी व्यक्ति को देख करके आपके अंदर मित्रता का भाव आना चाहिए, और जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति करुणा का भाव आना चाहिए। जो पुण्य कर्म करने वाला है उसको देख करके मुदित होना चाहिए, और जो पाप कर रहा है, पाप मतलब ऐसा कर्म कर रहा है जो कर्म नहीं करने योग्य है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम करते हैं। आप देखें अपने व्यवहार को तो आपको लगेगा कि जब आप किसी सुखी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको अपने दुखी होने का पता चलता है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति आपके अंदर करुणा नहीं, दया का भाव उत्पन्न होता है। दया और करुणा में अंतर है। दया एक प्रकार से उसके केंद्र में आप होते हैं, सब्जेक्टिव चिंतन है, लेकिन करुणा एक बहुत विकसित मन का चिंतन है कि जहां आप चाहते हैं, जिसको ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जहां व्यक्ति अपने सुख, अपने दुख और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, वहां जो ऋषि है वो कहता है सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों और सभी दुख से मुक्त हों। तो ऐसे में ये देखें कि जब आप सबके बारे में सोचते हैं ये भाव करुणा का है, लेकिन जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, तो हो सकता है ये दया हो, या हो सकता है ये आपके अंदर एक स्वयं से जुड़ा हुआ कोई भाव उत्पन्न हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये योग का भाव नहीं है, जुड़ने का भाव नहीं है ये, बल्कि अन्य से अलग होकर के सिर्फ अपने हित के बारे में सोचने का भाव है। जबकि योग आपको जुड़ना और जोड़ना सिखाता है, किससे? समस्त जगत से। योग को अद्वैय ज्ञान कहा गया भारतीय शास्त्र में। अद्वैय ज्ञान का मतलब होता है जहाँ कोई दूसरा ना हो। दूसरे का ज्ञान जब आपको होगा तो वहाँ पर आप निश्चित ही आपका व्यवहार वो मानवीय नहीं होगा। एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने कहा अदर इज हेल, सार्त्र, ये उनका सिद्धांत है कि जो दूसरा है वही नर्क है। आप जब कभी दूसरे को देखते हैं तो उस समय आपके व्यवहार में द्वैत उत्पन्न होता है, और ये द्वैत आपको भी नरक में ले जाता है और अगले के साथ आपके व्यवहार में समरूपता नहीं रहने देता। तो जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्तो, गीता में कि बुद्धि से युक्त हो, ऐसी बुद्धि से जो बुद्धि समत्व में स्थापित करती है, क्योंकि समत्व में स्थापित होना योग है। गीता में योग को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि योग में स्थित होकर के कर्म तभी हो सकता है जब सिद्ध और असिद्ध, यानी सफलता और विफलता दोनों में सम स्थिति आपकी हो, यानी आपकी बुद्धि में विषमता न आए, तब आप समत्व में स्थित होकर के योग को जान सकते हैं। योग एक ऐसा स्टेट है जहां मन प्रवाह में नहीं, सम में स्थित है। आप ये देखेंगे कि मन की स्वाभाविक जो स्थिति है, जहां पर मन बीमार होता है या मन रोगी होता है, वो स्वाभाविक स्थिति राग और द्वेष की है।
मन की दो प्रवृत्तियां होती हैं, या तो किसी चीज को चाहता है, कहीं सुख का उसने

0: अनुभव किया है, तो जहां सुख का अनुभव हुआ है उस व्यक्ति और उस विषय में राग का होना स्वाभाविक है, और जहां आपको दुख का अनुभव हुआ है उस व्यक्ति वस्तु और विषय में आपका द्वेष होना स्वाभाविक है। तो मन का प्रवाहित होना इन दो प्रभावों से होता है, मन प्रभावित राग और द्वेष से। जबकि मन जब सम में स्थित होता है तो वो योग में स्थित होता है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि राग द्वेषात्मक वृत्ति से मन को मुक्त करके समत्व में स्थापित करो। जब मन समत्व में स्थापित होगा तब तुम बुद्ध से युक्त हो सकते हो। जबकि बुद्धि राग द्वेषात्मक भी हो सकती है, लेकिन समत्व बुद्धि से युक्त होने का मतलब योग में स्थित होना, योगस्थ होकर कर्म करना, और ये समत्व बुद्धि ही कर्म की कुशलता प्रदान करती है। कर्म की कुशलता राग द्वेषात्मक बुद्धि नहीं करती। राग द्वेषात्मक बुद्धि में हम परिणाम को पाने की तरफ अग्रसर तो हो जाते हैं, लेकिन हम अपने को दुख से मुक्त नहीं कर पाते। दुख से मुक्ति तब मिलती है जब हमारी बुद्धि सम हो, और समत्व ही योग है। और योग की महत्ता को भगवान बताते हुए एक जगह और कहते हैं कि तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। कि हे अर्जुन, तपस्वी से श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ योगी है, फल की आकांक्षा से युक्त होके कर्म करने वाले कर्म योगियों से श्रेष्ठ योगी है, इसलिए तू योगी बन। तो बार बार जो योग है, ये योग आपके मन की तरफ इशारा है कि मन जो आपका किसी परिणाम को पाने या किसी परिणाम से बचने के लिए जो गतिशील होता है, इस मन को नियंत्रित करके समत्व में स्थित करें, और मन को परिणाम केंद्रित करने के बजाय कर्म केंद्रित करें, क्योंकि कर्म का ही परिणाम बनता है। और कर्म में अगर कुशलता आएगी तो मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा। और अगर कर्म परिणाम के बारे में ही सोचते रहे, तो नेपोलियन ने कहा था कि जो लोग परिणाम के बारे में सोचते हैं वो कदाचित ही कुछ कर पाते हैं। देखिए कितना बड़ा ही घोष है कि जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हम कर्म को दोयम दर्जे का मान लेते हैं, कर्म नहीं करते, सिर्फ परिणाम के बाद। और जितनी विकृतियां आती हैं, हिंसा, राग, द्वेष, ये अभिनिवेश, ये सब कुछ ऐसे कर्म हमें, ऐसे विचार हमें सताने लगते हैं। तो योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है, और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति योग की साधना से ही हो सकती है। और योग विद्या जो मानसिक रोगों को उत्पन्न करने का कारण अविद्या है उसको नष्ट करता है। तो योग और मन के स्वास्थ्य का एक बहुत गहरा संबंध है। निश्चित ही योग का अभ्यास करके हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे शशिकांत मणि त्रिपाठी की वार्ता योग और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन। शब्द सागर में लीजिए आप सुनिएगा प्रदीप श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ।
2: प्रस्तुत है कविता उड़ान। उड़ती चिड़िया देखकर मन में जागी आस, उड़ती चिड़िया देखकर मन में जागी आस, एक दिन पंख खोलकर मैं उड़ जाऊंगी आकाश। मम्मी बोली बिटिया मत हो तू उदास, और वो दिन बस आने वाला है जब पंख मिलेंगे खास। भैया बोला उड़ने को तो हम सब हैं तैयार, और गगन में होंगे हम सब तेरे बिल्कुल पास। ताई बोली बिटिया ले लो पंखों का उपहार, और जब उड़ने की तूने ठानी तो पूरी होगी आस। बिट्टू भैया ने कहा मेरा पूरा है विश्वास, मेरी फिल्मों में उड़ेगी बन उड़न परी तू खास। धूम हमारी इन फिल्मों की चारों ओर तमाम, और क्या OTT क्या थिएटर पर भीड़ रहेगी खास। जिया लगी तैयारी में शादी जो होना है मेरी, और बोली फिर भी चिंता नहीं रहूंगी तेरे आसपास। चिड़िया सा कैसे उड़ना है मैं बतलाऊं आज, बुआ बोली गले लगाकर लाड़ो आजा मेरे पास। करो फैसला रखो हौसला सपना पूरा करना है, और पहली बार भले गिर जाए ले फिर से एक सांस। मैं बोली हो गई हमारी सपनों से पहचान, मैं बोली हो गई हमारी सपनों से पहचान, और सब खुश होकर पीठ ठोंक कर बोले ये बात हुई ना साबास। दूसरी कविता है पिता के ऊपर। पिता वटवृक्ष होते हैं, देते हैं खूब से स्नेहमयी छाया,

सुरक्षित रखते हैं धूप बरसात से। हम सदा छोटे बने रहते हैं जब तक जीते हैं उनकी छाओं में। फिर अचानक एक दिन वही अनचाहा शाश्वत सत्य कि नहीं रहे पिताजी। उस दिन छोटे पूछते हैं हमसे क्या कैसे करना है, और बेख्याली में मुंह से निकल जाता है बाबूजी से पूछो। छोटे एक टक चुपचाप देखते रह जाते हैं हमें, और अचानक हम बड़े हो जाते हैं। तीसरी कविता है मेरी, जिंदगी एक अवलोकन। जिंदगी एक अवलोकन, इसके अंतर्गत जिंदगी क्या है क्या बताऊँ मैं, जिंदगी क्या है क्या बताऊँ मैं, किसी अंधे का ख्वाब हो जैसे, या किसी सूदखोर बनिए का उलझा उलझा हिसाब हो जैसे। जिंदगी एक सफ़र है, हम मुसाफिर हैं। जिंदगी एक सफ़र है, हम मुसाफिर हैं। हर कदम तलाशे मंजिल हो जैसे, हर कदम तलाशे मंजिल हो जैसे, और कहीं राह ना भटक जाएं यूं ही बिखरा बिखरा ख्वाब हो जैसे। जिंदगी फूल है ये गुलशन का, जिंदगी फूल है ये गुलशन का, महकती बसंती बयार हो जैसे, और नज़र लगे ना किसी पतझड़ की निखरा निखरा सिंगार हो जैसे। जिंदगी है कड़ी तपस्या सी, पाना जिसका साधना हो जैसे, और फल मिले मीठे इसके आंगन में प्यारा प्यारा उपहार हो जैसे। जिंदगी किरण है सूरज की फैले जिससे उजियार हो जैसे, और दुख का अंधियारा सिमट ही जाए सुलझा सुलझा संसार हो जैसे। जिंदगी क्या है क्या बताऊँ मैं, किसी गूंगे की आवाज़ हो जैसे। जिंदगी क्या है क्या बताऊँ मैं, किसी गूंगे की आवाज़ हो जैसे, और किसी दिल को गहरे छू जाए महका महका खुमार हो जैसे। जिंदगी पर एक और कविता है कि जिंदगी के गीत गाते हैं सभी, जिंदगी के गीत गाते हैं सभी, मौत को भी गुनगुनाना चाहिए, और नफ़रतें तो ज़िंदगी के साथ हैं, नफ़रतें तो ज़िंदगी के साथ हैं, मौत पर सबको भुलाना चाहिए। हिसाब है आए गए का ज़िंदगी, हिसाब है आए गए का ज़िंदगी, मौत पर सब चुकता हो जाना चाहिए। और जब तक जिए ये ज़िंदगी संगीत थी, जब तक जिए ये ज़िंदगी संगीत थी, मौत पर बस यह तराना चाहिए। और ज़िंदगी के बाद जिंदा है यदि, ज़िंदगी के बाद जिंदा है यदि रहना, तो काम बिरला करके जाना चाहिए। और ज़िंदगी समझो कि एक वरदान है, ज़िंदगी समझो कि एक वरदान है, व्यर्थ क्यों इसको गंवाना चाहिए। और दुनिया तो रहेगी हम रहें या ना रहें, दुनिया तो रहेगी हम रहें या ना रहें, मौत के बाद सबको याद आना चाहिए। और निशानी सांस का चलना बताता ज़िंदगी बाकी, निशानी सांस का चलना बताता ज़िंदगी बाकी, और सांस को भी थमने का एक बहाना चाहिए। और चल दिए चुपचाप रुखसत इस जहां से, चल दिए चुपचाप रुखसत इस जहां से, आओगे कब यह तो बताना चाहिए। और ज़िंदगी के बाद तय है मौत का होना, जब कभी आकर पधारे मुस्कुराना चाहिए। और शिकवे के लिए सब छोड़ आगे बढ़ो, शिकवे के लिए सब छोड़ आगे बढ़ो, मौत पर बेवाक खुशियां मनाना चाहिए। और कुछ शान से जी कर गई ये ज़िंदगी, कुछ शान से जी कर गई ये ज़िंदगी, जाते जाते राज सबको बताना चाहिए। और जब गए वो उजाला भरपूर था मगर, जब गए वो उजाला भरपूर था मगर, क्यों हुआ ये अंधेरा जान जाना चाहिए। एक और कविता ज़िंदगी के ऊपर है अलग, कि सांसों का चलना जीवन है, सांसों का चलना जीवन है, और सांस रुकी तो कहाँ ये तन है, सांसों का चलना जीवन है, सांस रुकी तो कहाँ ये तन है, और जीवन संग उल्लास उमंग है, वरना मातम ही मातम है। दर्द पराया वो क्या जाने, ना चिंतन ना मंथन है, दर्द पराया वो क्या जाने, ना चिंतन ना मंथन है, और संभावों से देखे सबको क्या कोई ऐसा भी मन है। आदर्शों का ओढ़ मुखौटा, आदर्शों का ओढ़ मुखौटा, नया ठगाई का उपक्रम है, और मन मैला है सोच कसैली, मन मैला है सोच कसैली, ये कैसा अपनापन है। और हम दोनों जब साथ साथ है, हम दोनों जब साथ साथ है, लगे रोज अकेलापन है, और समृत को नहीं दोस्त घुसाई, जंगल जीवन का नव दर्शन है। अगली कविता है, जिंदगी एक पहेली कहें सब, जिंदगी एक पहेली कहें सब, बुझते जिसको जिंदगी आती,

0: बूझते जिसको जिंदगी आती और खुशनसीब मान ले खुद को जिनको जिंदगी समझ में आती, बूझना जिंदगी जिसको है बाकी। अखबारों की पहेलियां भरते थे, अखबारों की पहेलियां भरते थे, इनाम जीते थे इनको हल करके, और बीत गई जिंदगी इसी उलझन में, सवाल अब भी वैसे ही हैं बाकी। और देखा जब दीन के दुखों को तो, देखा जब दीन के दुखों को तो, उसकी हर कमी खटकती दिल में, और उनको भी देखा नज़रों ने जिनके पाने को कुछ रहा ना बाकी। जिंदगी समझ ना आया ढंग तेरा, जिंदगी समझ ना आया ढंग तेरा, कोई हंसता है तो कोई रोता है। जिंदगी समझ ना आया ढंग तेरा, कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई भी मन ना मायूस हो कभी, ये भेदभाव क्यों अब तक है बाकी। और बहुत सारे फलसफे हैं जिंदगी में, बहुत सारे फलसफे हैं दुनिया में, तुझको लेकर कई बयान हुए, बहुत तेरे फलसफे हैं दुनिया में, तुझको लेकर कई बयान हुए, और कुछ ने माना सजा तुझको तो, कुछ ने माना सजा तुझको तो, और कुछ ने कहा है गुणगान बाकी। और ज़िंदगी का मज़ा लिया हर पल, ज़िंदगी का मज़ा लिया हर पल, तूने एहसान पर एहसान किए, और ज़िंदगी तुझसे ना गिला शिकवा, ज़िंदगी तुझसे ना गिला शिकवा, नहीं तुझसे कोई अब वरदान बाकी। एक और कविता है कि दिल को सुकून है रूह को सांस है, दिल को सुकून है रूह को सांस है, और ऐसी भी वैसी भी ज़िंदगी लाजवाब है। दिल को सुकून है रूह को सांस है, और ऐसी भी वैसी भी ज़िंदगी लाजवाब है, देसी है या फिरंगी ज़िंदगी लाजवाब है। खो गया या बच रहा फ़िक्र कहाँ है, खो गया या बच रहा फ़िक्र कहाँ है, बचा ना बचा ज़िंदगी लाजवाब है। वाजिब प्यार अपनों का जाहिर बेरुखी भी, वाजिब प्यार अपनों का जाहिर बेरुखी भी, कैसा हिसाब अब ज़िंदगी लाजवाब है। गम और खुशी अलग एहसास अलग है, गम और खुशी अलग एहसास अलग है, और दिल की सुनी जितनी ज़िंदगी लाजवाब है। अच्छे बुरे जैसे भी पल गुजर ही गए हैं, अच्छे बुरे जैसे भी पल गुजर ही गए हैं, क्यों है ये सवाल ज़िंदगी लाजवाब। रोटी गोल है टेढ़ी मेढ़ी है मिली तो है, रोटी गोल है टेढ़ी मेढ़ी है मिली तो है, भूख मिटा दे तो ज़िंदगी लाजवाब है। तजुर्बा जिसका सच भी उसी का, परेशान क्यों जब ज़िंदगी लाजवाब है। किससे कहानी बने सब अपने ही तो हैं, अपने ही हैं खास, ज़िंदगी लाजवाब है। ख्वाबों में ख्यालों में या रूबरू ही हैं, है हंसी एहसास ज़िंदगी लाजवाब है। और जिसका नहीं जवाब वही लाजवाब है, यही तो है इजहार ज़िंदगी लाजवाब है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रदीप श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ, कार्यक्रम था शब्द सागर। शब्द सागर में आपने शशिकांत मणि त्रिपाठी की वार्ता सुनी और प्रदीप श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ सुना। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
2: कवि हेमंत देवलेकर,
3: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रीवा जिले में इन दिनों गर्मी, उमस और बारिश की बूंदों वाले मिले जुले मौसम का असर देखा जा रहा है। कभी धूप की तेज तपन है तो कभी तेज आंधियां अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच भी तेज गर्मी का

असर लगातार बना हुआ है। जिले में 12 जून से जनकल्याण शिविर आयोजित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले जनकल्याण शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालयों तथा नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में पहुंचते हैं। अधिकारियों द्वारा शिविरों में विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। शिविरों में स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, व्यय वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य योजनाओं के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर योग सप्ताह जिले में भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय कारागार रीवा में बीते दिनों इसके तहत योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उप जेल त्योथर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर आयोजित रक्तदान शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। संजय गांधी अस्पताल में 50 यूनिट तथा ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में 7 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जिले में इन दिनों खेत बचाओ अभियान में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जिले के सिरमौर विकासखंड के अंतर्गत बीरखाम गांव में कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष के बल पर युवा अपनी मंजिलों को हासिल कर ही लेते हैं। इसे ही चरितार्थ कर दिखाया है रीवा जिले के ग्राम बुसौली निवासी बाबूलाल रावत ने। बाबूलाल का चयन भारतीय सेना में हुआ है। बाबूलाल रावत शासकीय आईटीआई रीवा के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र रहे हैं। बाबूलाल बताते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने पिछले 4 वर्षों तक लगातार कड़ा संघर्ष और अथक परिश्रम किया है। रीवा जिले में मछली पकड़ने पर आज से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्षा काल में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संभागायुक्त सहित अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। कृषि विभाग द्वारा जिले भर में किसानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। वन विभाग ने जयंती कुंज में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन विषय पर एक विशेष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में मातृशक्तियों द्वारा पौधों का रोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। बीते दिनों रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल एवं होमगार्ड के कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत निर्मित रीवा जिला स्थित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन टनल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे टनल में कुल 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से टनल के प्रत्येक हिस्से पर नजर रखी जाएगी। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग रीवा स्थित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। बीते दिनों रीवा के मेहरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 114 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी तथा उनके साथ 50 ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। रीवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे रीवा जिले की चिट्ठी, आलेख आरती श्रीवास्तव का, वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? थोड़ी थोड़ी गर्मी है, थोड़ी थोड़ी सर्दी है, कुछ छूटता है तो कुछ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे कुछ अंतराल के बाद छूट जाती हैं, हालांकि वो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, चाहे इंसान हो या चाहे काम हो। लेकिन एक समय के बाद छूट तो जाता ही है ना, लेकिन फिर हमें अपने आप को उसके बगैर रहने की आदत डालना होती है।

जो हमसे कुछ अंतराल के बाद छूट जाती हैं, हालांकि वो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, चाहे इंसान हो या चाहे काम हो, लेकिन एक समय के बाद छूट तो जाता ही है ना। लेकिन फिर हमें अपने आप को उसके बगैर रहने की आदत डालना होती है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर साधना के साथ है। और आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जो बहुत हमें प्यारा होता है और वो जब छूटने लगता है तो आपके मन की व्यथा क्या होती है। जीवन में व्यथा एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी गलियाँ, मुरझाई कितनी बल्लरियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई।

दोस्तों, हमारे जीवन में जब पसंदीदा चीज़ें छूट जाती हैं तो केवल वह चीज़ नहीं जाती, उससे जुड़ी अनगिनत यादें भी मन को उदास कर जाती हैं। फिर भी समय सिखाता है कि जो मिला था वह एक सुंदर उपहार था, और जो छूट गया वह एक प्यारी स्मृति बनकर हमेशा दिल में रहेगा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर साधना के साथ। दोस्तों, आज हम कुछ छूटने की बातें आपसे कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और जब वे हमसे दूर हो जाती हैं तो दिल बार बार उन्हें याद करता है, लेकिन सच्चा प्रेम और अपनापन कभी नहीं छूटता। वह यादों के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है।

0: आप सुन रहे हैं गीत सागर। तो दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं छूटने की। जो अपना था वह याद बन गया, जो पास था वह ख्वाब बन गया। दुख तो इस बात का है कि वह साथ नहीं, पर सुकून इस बात का है कि वह कभी मेरा था और हमने उसके लिए बहुत मेहनत की। तो दोस्तों, जो छूटता है कई बार नए रास्ते भी खुलते हैं।
1: जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या?
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रूपाली पांडे का राग भैरव में ध्रुपद गायन। तबले पर आपके साथ हैं रविशंकर द्विवेदी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में रूपाली पांडे का राग भैरव में ध्रुपद गायन। तबले पर आपके साथ थे रविशंकर द्विवेदी। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। सोशल मीडिया पर संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और नौवे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल इस वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष 1 जनवरी को नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अगले महासचिव पद के उम्मीदवारों के साथ संवाद का आयोजन किया गया। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमरीका के शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने एक पोस्ट में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में ऐतिहासिक संबोधन दिया था। स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात दार्शनिक और विचारक थे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा से पहले सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्रक मिल जाएंगे और नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे और इनका निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति है श्वेता तिजोरिया की।
1: नमस्कार श्रोताओं, कुछ अंदाज, कुछ बात, कुछ ख्याल से बन जाते हैं विचार और यहीं से जन्म लेती है एक धारणा जो आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। ये धारणा आधुनिक नवीन दोनों हो सकती है। खास ये है कि आप अपने विचार किस तरह रखते हैं। श्रोता मित्रों, आज हम जानना चाहेंगे आपके विचार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में कि आपके दैनिक जीवन में प्लास्टिक का क्या महत्व है। यह हम कहें कि बाजार जाते समय, यात्रा करते समय आप प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं, क्या ये सुविधाजनक है या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं। हम जानना चाहेंगे आपके विचार हमारे फोन नंबर 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता साथी हमें एसटीडी कोड लगाकर यानी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो हमें इंतजार है आपके विचार का और आपके फोन का। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार मैम।
1: आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
2: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से।
1: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: है ना। और आज हम
1: जी
0: आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार, है ना, आपके विचार जानना चाहेंगे। है एक एक दैनिक जीवन में आने वाली एक बात है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपके विचार। जैसे आप अपने घर पर हैं या कहीं बाहर यात्रा करते हैं तो प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं? प्लास्टिक के पॉलिथिन बैग, इन सब चीज़ों का उपयोग आप करते हैं? करते हैं।
1: जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्लास्टिक जो होती है वो उसका सिंगल यूज, जो प्लास्टिक होती है उसको एक निर्धारित करें कि हमें कितना करना है। उससे पहले तो एक थैला लें आप, तो वो ही बाजार में लेके जाएं, तो उससे थोड़ा पॉलीथीन कम होती है।
0: है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। आप जानते हैं प्लास्टिक का उपयोग, और पॉलीथिन जिसका उपयोग हम कर रहे हैं आज अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है ना। तो क्या ये हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है आपको पता है?
1: जी मैम, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे कि हम कहीं से भी निकलते हैं तो जैसे देखते हैं कि कुछ पशु खा लेते हैं, तो कहीं गंदगी बहुत रहती है, ये उड़ती हैं तो खेतों में बहुत नुकसान कर देती होंगी,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: है
0: यही
1: ना।
0: मैं, हाँ यही मैं जानना चाह रही थी आपसे, है ना, कि ये पॉलिथीन का उपयोग हमें कम कम करना ही नहीं चाहिए। इसके बदले हमें कपड़े के थैले, है ना, कपड़े के
1: वही
0: थैले हो
1: बाजार
0: गया
1: लेके
0: उसका
1: जाएं।
0: उपयोग करें बाजार जाते समय, है ना। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम अपने पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। क्या सोचते
1: बना
0: हैं आप?
1: सकते हैं। तो ये तभी होगा जब हम सजग रहेंगे और हम कदम उठाएं एक कदम स्वच्छता की ओर, तो
0: जी
1: ये तभी संभव हो पाएगा।
0: जी बिल्कुल, और ये हम सभी का दायित्व है ना
1: जी,
0: जी।
1: हाँ, ये
0: तो
1: सभी का दायित्व है,
0: जी जी
1: और
0: आपने
1: अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखते हैं
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: हाँ
1: गंदगी नहीं होगी।
0: बिल्कुल। तो आपने देखिए फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद, नमस्ते।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी। दीदी
0: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से।
0: सारनाथ वाराणसी से आप बात कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम
1: जी
0: में आपका स्वागत है, आपने फोन
1: धन्यवाद
0: किया
1: दीदी,
0: है।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: हाँ जी, तो आपने फोन किया है, कार्यक्रम बात आपकी और गीत हमारे में है ना। और
1: जी।
0: हम एक विचार जानना चाहेंगे आप के, आप हम सभी इस देश के नागरिक हैं है ना। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम अधिकतर अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग है ना, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं, तो
1: जी
0: ये कहाँ तक हमारे लिए अच्छा होता है ये बताएं।
1: दीदी देखिए, ये तो अच्छा है नहीं, ये तो इंसान अपनी सुविधा के लिए करता है,
0: जी जी जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये हमारे लिए नुकसानदेह है।
0: हाँ
1: ये जहाँ पड़ा रहता है, गलता भी नहीं है,
0: बिल्कुल
1: और
0: अच्छी
1: इसको
0: बात है,
1: जलाने पर जैसे
0: हाँ
1: धुआं निकलता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल है ना।
1: तो इसलिए ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है और हम लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
0: हाँ
1: और पहले दीदी मैं देखता था कि पहले जब इसका चलन नहीं था,
0: हाँ
1: तभी तो मार्केट था, तभी तो लोग सामान ले आते थे।
0: बिल्कुल, वही हम
1: ये
0: जानना
1: तो
0: चाह
1: है,
0: रहे हैं।
1: इसके पहले बाजार ही नहीं था या हम लोग नहीं थे तो।
0: हाँ बिल्कुल, मैं यही हाँ आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे बाजार जाते समय, यात्रा करते समय, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, कपड़े के बने थैले हैं है ना, स्टील की बॉटल है, इसका उपयोग कर सकते हैं है ना, यात्रा करते समय, बाहर जाते समय।
1: इसके इसके इजाद से पहले दीदी वही होता था कि लोग जाते थे मार्केट में तो कपड़े के थैले ले जाते थे या कागज के बैग मिलते थे,
0: हाँ जी
1: उसमें
0: जी जी
1: सामान ले आते थे जो
0: हाँ
1: कि फेंकने फेंको देने पर सड़ जाते थे और मिट्टी हो जाते थे। तो
0: बिल्कुल,
1: उस जमाने में ये बात था। अब
0: हाँ
1: क्या है कि हर जगह इसका सुविधा है, लोग वही लेके चले जाते हैं
0: बिल्कुल,
1: और कोई थैला लेके जाना नहीं चाहता है।
0: हाँ और बस हम तो
1: जबकि ये हमारे लिए मतलब प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है कि हम इसका उपयोग ना करें।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और जो सारे हमारे साथी सुन रहे हैं वो भी ये चीज़ को मानेंगे कि हमें अधिक से अधिक वैसे चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए
1: मैं
0: बहुत
1: दीदी
0: अच्छी होती हैं। जैसे हाँ
1: मैं
0: बताएं।
1: बताना चाहूँगा कि जब ये प्लास्टिक नहीं था
0: जी

0: तब भी मार्केट लोग जाते थे
1: हम्म,
0: और तब भी मार्केट करते थे, सामान
1: जी
0: ले आते थे, तो उस दुकानदार जो कागज के
1: जी
0: थैले देते थे
1: हाँ हाँ हाँ
0: या हम लोग अपना कागज कपड़े का थैला लेके जाते थे उसमें
1: हम्म,
0: सामान ले आते थे, तो
1: बिल्कुल
0: ये तो हम लोगों ने मतलब अपने सुविधा के लिए बना लिया, ये अच्छी बात नहीं
1: बिल्कुल
0: है।
1: अच्छी बात
0: और
1: नहीं
0: मैं
1: है।
0: तो कहना चाहूंगा इसका इग्नोर करना चाहिए,
1: हाँ
0: बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप वही चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, है ना।
0: जी जी
1: इन
0: जी
1: सब
0: बिल्कुल
1: बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रकृति भी अच्छी रहेगी और हम भी
0: जी।
1: स्वस्थ रहेंगे, है ना। आपने फ़ोन किया
0: और
1: इसके लिए। हाँ
0: ये
1: जी
0: मुहिम जन जन की होनी चाहिए, ये
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: बिल्कुल,
0: कि ये
1: हाँ
0: सभी की होनी चाहिए।
1: सभी
0: जी
1: की होना चाहिए, है ना। चलिए, आपने फ़ोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: गोपाल ओझा जी, है ना। चलिए
1: आपका
0: कार्यक्रम,
1: नहीं, मैं सोता हूँ, मैं तो पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी भोपाल के। तो
0: अच्छा, चलिए आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम कुछ बातें साझा कर रहे हैं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना। वो ये है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने घर पर, है ना।
1: हाँ,
0: तो
1: कर दिया ना
0: उनमें,
1: मैडम।
0: हाँ, उनमें प्लास्टिक का सामान भी होता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक की बॉटल, है ना। तो
1: हाँ, होती
0: क्या
1: है।
0: ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के पैकेट
1: हाँ,
0: और
1: वो
0: बॉटल?
1: होते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, तो वो घर में ही रखते हैं हम।
0: नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक क्या आपके लिए अच्छा है।
1: प्लास्टिक तो अच्छा।
0: प्लास्टिक का अगर हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं या प्लास्टिक की पॉलिथीन को हम बाहर यूं ही फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा,
1: फिर
0: प्लास्टिक?
1: हाँ जी, मैडम जी
0: ये जानना चाह रही हूँ मैं, है ना।
1: जी
0: क्योंकि देखिए, पॉलिथीन अगर आप फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतल कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो ये मिट्टी में मिलती नहीं है, है ना जी। ये कचरा इकट्ठा होता जाता है, इसको हमारे पशु खा लेते हैं, है ना। नदियों में जमा हो जाता है, तो नदियाँ भी
1: नदियों में
0: प्रदूषित
1: जमा
0: हो
1: हो जाते
0: जाती
1: हैं।
0: हैं, और वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कैसी रहेंगी बताएं।
1: हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो वो तो क्या है, वो तो नुकसान ही है,
0: हाँ, उससे हमारे, हमें समस्या होगी, है ना। तो
1: समस्या होती है मैडम
0: जी
1: जी।
0: जी जी तो मैं तो यही चाहूँगी गोपाल ओझा जी कि प्लास्टिक का उपयोग हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा
1: ना
0: होगा,
1: करें
0: है
1: ना
0: ना।
1: करें जी, सही
0: हाँ
1: बोला है आपने
0: जी ना,
1: मैडम
0: है
1: जी।
0: ना। और अपने घर के छोटे बच्चे, युवा अवस्था वाले जो भी बच्चे हैं, उनको सबको समझाएं, है ना, तभी ये बात जन जन तक पहुंचेगी, है ना। आपने फोन किया इसके
1: जी
0: लिए
1: मैडम
0: आपका
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: मैडम जी नमस्कार, पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, छत्तीसगढ़ गंडई पंडरिया से।
0: जी पवन कुमार सेन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम
1: बहुत
0: बात
1: बहुत
0: आपकी गीत हमारे में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम जी, और आकाशवाणी का तो हम पुराने श्रोता हैं,
0: जी,
1: और
0: हाँ
1: रेडियो तो एनी टाइम चलते रहते हैं, हमारे रेडियो मोबाइल के द्वारा सुन लेते हैं मैडम जी आप लोगों के प्रसारण।
0: हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, है ना?
1: जी, तो
0: तो
1: नहीं
0: आज
1: कार्यक्रम
0: हम,
1: विशेष रूप से सुनता हूँ मैडम जी।
0: जी, बिल्कुल, आज हम आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आपके विचार कि जैसे हम अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग, है ना, पैकेट,
1: जी
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, है ना, किसी अच्छे पर्यटन स्थल पर, मार्केट में, और जाके उन्हें फेंक देते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है?
1: बिल्कुल गलत है मैडम जी। अब क्या है, अब आजकल के आदमी को कौन समझाएगा, कैसे समझाएं यहाँ।
0: देखिए, हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले हमें अपने को ये जानना होगा कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है या खतरनाक है, इस पर सोचना
1: बहुत
0: पड़ेगा।
1: खतरनाक है मैडम जी। अब क्या है, कई पशु पक्षी भी इसे खा लेते हैं, गाय लोग खाते हैं,
0: हाँ
1: और उसमें क्या है, कई प्रकार की बीमारी भी पैदा होते हैं मैडम जी। अब मैं तो कहता हूँ कि इस चीज
0: और हम ये चाहेंगे कि आप, हम सभी पॉलिथीन का उपयोग ना करें, प्लास्टिक बैग, है ना, इन सब का उपयोग ना करें, वो चीजें करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, अच्छी हो,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: मैडम जी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: कपड़े के थैले, कागज, है ना,
1: जी।
0: और स्टील की बॉटल, इन सब का उपयोग करें, है ना।
1: जी हम क्या है, हम लोग ना विशेष रूप से अब रेडियो में जो बताए जाते बातें उसको अपने जीवन में अमल जरूर करते हैं मैडम जी। हम जब भी सब्जी लेने जाते हैं तो बिल्कुल अपने घर से थैला लेके जाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात, बिल्कुल, और मैं ये सोच
1: जी
0: रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को सुन भी रहे हैं, है ना,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: भी अच्छी
1: मैडम
0: बात है। जी बिल्कुल, और साथ साथ हम ये भी सिखाएं लोगों को, अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना,
1: जी,
0: हाँ
1: मैडम जी
0: हाँ इस बारे में उन्हें जानकारी दें कि अधिक से अधिक उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। आपने
1: जी
0: फ़ोन
1: मैडम
0: किया,
1: जी,
0: इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी, नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: जी मैडम,
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं सुमत कुमार जैन, पिंडरी जिला मंडला से रिटायर्ड शिक्षक बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और
1: जी सुमत,
0: हाँ जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल देखिए पर्यावरण बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो रहा है ना, आजकल है ना, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कहीं बाढ़ अधिक आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में, है ना। और प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए कहीं कहीं हम भी दोषी हैं, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन। तो क्या इनका उपयोग करना अच्छा होता है, बताएं।
1: हमारे चारों तरफ फैली हुई समस्त वस्तुएं,
0: जी
1: जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ फैली है, सब पर्यावरण ही है मैडम।
0: जी बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: इसे सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का
0: हाँ
1: संकल्प लेकर के काम करना चाहिए, इसे सुरक्षित
0: हाँ
1: रखने का।
0: जी बिल्कुल।
1: रहा सवाल ये पेड़ पौधे जो कट रहे हैं,
0: जी
1: बड़े बड़े जो पहाड़ या जो सड़कें या जो खेल मैदान या कुछ भी बन रहे हैं, वो पहाड़ पेड़ पौधों को काट करके बनाए जा रहे हैं, इससे हमारा पर्यावरण असंतुलित।

0: हो रहा है मैडम।
1: जी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पर्यावरण को संतुलित करने में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए, जन जन की भागीदारी, है ना?
0: मैडम एक काम करें, लेकिन
1: जी
0: क्या है आप पॉलिथीन का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, उस पर कोई
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: बिल्कुल,
0: नहीं दे रहा है।
1: प्लास्टिक की बोतल हम खा पी कर
0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक के
0: बोतलें
1: पैकेट फेंक देते हैं
0: जहाँ
1: कहीं पर
0: आए
1: भी।
0: जहाँ रास्ते में
1: हाँ
0: फेंक देते हैं लोग,
1: जी
0: कहीं
1: जी
0: उसका,
1: बिल्कुल, हाँ।
0: हाँ
1: और उसको देखिए हमारे पशु खा लेते हैं, है ना, नदियों में
0: हाँ
1: जमा हो जाते हैं, इससे
0: बिल्कुल
1: कितनी
0: बिल्कुल,
1: अधिक
0: पशुओं
1: गंदगी
0: को
1: और
0: भी पानी
1: बीमारियां फैल
0: वगैरह
1: रही हैं।
0: जो सामान रख के ले
1: जी
0: जाते हैं उसे भी ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, तो
1: जी
0: पशु खाते हैं तो पशु भी मृत हो जाते हैं। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये हमारी कुछ सुरक्षा है, पेड़ पौधे लगाना,
1: जी
0: संकल्पित होकर के कोई अच्छे कार्य करना
1: बिल्कुल
0: जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये
0: और
1: हमारा
0: लोगों
1: ही
0: में ऐसी
1: दायित्व
0: भावना
1: होगा,
0: पैदा, जागरूक पैदा
1: बिल्कुल
0: करना चाहिए। तो
1: हाँ, ये हमारा ही दायित्व होगा, जन जन का दायित्व होगा
0: बहुत
1: कि
0: अच्छा
1: वो
0: विषय है आपका, और
1: जी
0: बहुत बढ़िया आप विषय को उठाया है।
1: जी
0: जितने भी देश के अंदर रेडियो श्रोता श्रोता हैं वो आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे और देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप में जनता को प्रभाव पड़ेगा और जागरूकता आएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण हमारा सबसे जीवन को सफल और सुरक्षित रखने का एक साधन है,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हमें अब स्वयं को भी उपयोग करना पड़ेगा,
1: जी
0: और स्वयं भी सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ पौधे और ये
1: अधिक से अधिक
0: बाटल
1: लगाने पड़ेंगे,
0: और पानी
1: बिल्कुल
0: वगैरह इत्यादि
1: हाँ।
0: का
1: और
0: उपयोग
1: उसके बिल्कुल बिल्कुल, और उसके
0: करना।
1: पश्चात उसकी देखभाल भी जरूरी है कि पेड़
0: बिल्कुल
1: पौधे, है ना, बढ़ रहे
0: बिल्कुल
1: हैं कि नहीं, उनमें खाद डालें,
0: बिल्कुल
1: उनका ध्यान रखें, है ना? जी
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: बढ़िया मिशन है
1: तो
0: आपका,
1: आपने फोन
0: अभी
1: किया,
0: आप लोगों
1: जी बिल्कुल आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी। मैं लक्ष्मी घोषी बात कर रही हूँ
0: लक्ष्मी
1: जी, लक्ष्मी ग्वारा, जिला क्षेत्र मध्य प्रदेश से।
0: क्या कहते हैं, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ,
0: पढ़ाई
1: करती हूँ
0: करती हैं?
1: बीए स्टूडेंट, बीए की छात्रा हूँ।
0: अच्छा, तो आज हमने कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका फोन लगा है और कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, है ना।
1: जी
0: जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं उसमें आप पर्यावरण के बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे,
1: जी मैम
0: है ना। तो बताएं पर्यावरण जो अभी प्रदूषित हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, क्या क्या विचार हैं आपके?
1: देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के तो बहुत से कारण है, जैसे कि कारखानों से निकलने वाला धुआं, इनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। और जैसे गाड़ी वाहन है, उनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम कई ऐसी चीजें भी ले आते हैं, जैसे कि कुछ प्लास्टिक वाली चीजें हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, और हम उनको ऐसे खुले में फेंक देते हैं।
0: है ना। हाँ बिल्कुल,
1: हाँ, उनसे भी प्रदूषण होता है।
0: हाँ बिल्कुल। और हम उनका लगातार उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन है, बॉटल है ना प्लास्टिक की, है। तो इन्हें हम क्यों ना, ज़रूरी ये हो कि इन्हें हम हटा कर कपड़े के बैग, जूट के बैग, है ना, और स्टील की बॉटल, इन सब का उपयोग करें।
1: हमें इन सब का उपयोग कम करना चाहिए, मतलब जो हमारी प्रकृति से बनी हुई चीजें, उनका उपयोग ज्यादा करना
0: हाँ
1: चाहिए,
0: वही मैं कहना
1: जो
0: चाह
1: हमें
0: रही हूँ।
1: लाभदायक भी हो।
0: हाँ
1: और आज बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिकतर प्रदूषण फैल रहा है।
0: हाँ बिल्कुल। और लेकिन हमारा दायित्व तो ये भी है खुश लक्ष्मी जी कि हम इसे संरक्षित करें, पर्यावरण को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, उन चीज़ों का उपयोग करें जो हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, है ना
1: जी
0: जी। तो देखिए आपने फ़ोन किया और आपके विचार भी हमें जानने को मिले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, आकाशवाणी
0: हाँ
1: भोपाल
0: जी,
1: से।
0: आपका नाम बताएं।
1: नाम सोनकंत, ग्राम पटेरी, जिला दमोह से बोल रहे हैं। जिला
0: अच्छा
1: दमोह।
0: जी, तो आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका फोन लगा है ना?
1: जी
0: तो
1: मैडम।
0: हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। कहाँ आप, कौन से गांव, मतलब कहाँ रहते हैं आप? दमोह में रहते हैं ना?
1: ग्राम पटेरी है, जिला दमोह।
0: हाँ जी, तो आपने अपने आसपास देखा होगा कई बार लोग प्लास्टिक के बैग, पॉलिथीन है ना, बॉटल का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल का, उन्हें फेंक देते हैं। तो क्या ऐसा करना आपको सही लगता है?
1: नहीं मैडम, ये तो गलत है। ये प्लास्टिक के सामान है जो यहाँ वहाँ नहीं फेंक रहे, उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि प्लास्टिक की चीज़ें को हम जलाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है, वो धुआं भी खतरनाक होता है ना?
1: हाँ मैडम, हाँ।
0: हाँ।

0: तो
1: सर्दी
0: मैं ये
1: वाली
0: कहना
1: चीज़।
0: चाह रही हूँ कि प्लास्टिक की बजाय हम कपड़े की थैली, जूट की थैली, है ना, स्टील
1: हाँ
0: की
1: इनका उपयोग
0: बोतल,
1: ज्यादा से ज्यादा करें।
0: ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग करें, है ना,
1: हाँ इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं इनका उपयोग कम करें, ज्यादा
0: ना।
1: कम करें, एक
0: प्रकृति, जी
1: फर्नीचर का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से जो जुड़ी चीज़ें हैं, है ना, जो पुराने समय में हम उपयोग करते थे, तो क्यों ना
1: हाँ
0: उन्हीं चीज़ों को हम फिर से उपयोग करें जो भूल गए थे शायद हम।
1: हाँ मैडम, अभी जो पहले जमाने में उपयोग करते थे उन्हीं को उपयोग करें तो बेहतर रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा,
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ रहेंगे,
0: बिल्कुल,
1: वातावरण में शुद्ध हवा मिलेगी,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम यही आपसे जानना चाह रहे थे, और इसमें हम सबकी भागीदारी होगी तभी हमारा
1: सबकी
0: पर्यावरण
1: भागीदारी से हम
0: जी सुरक्षित रहेगा, है ना।
1: सुरक्षित रहेंगे
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: जी नमस्कार। हाँ जी
1: नमस्कार दीदी।
0: आपका नाम बताएं।
1: सनी शर्मा,
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताइए।
1: गंजवास होता राजेंद्र नगर।
0: अच्छा जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज आपने फोन किया है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, और हम
1: हाँ
0: कुछ
1: दीदी,
0: बातें आपसे करना चाहेंगे, आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि आजकल

0: पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, तो इसके लिए
1: यार
0: क्या
1: मैम,
0: हम दोषी हैं कहीं ना कहीं?
1: जी,
0: कैसे बताएं,
1: हाँ हम दोषी हैं क्योंकि हम प्रदूषण फैलाते हैं।
0: है ना? बहुत सारी चीजें हम ऐसे भी उपयोग करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बॉटल। इसके अलावा हम अपनी जो बहुत सारी गाड़ियां भी आजकल चल रही हैं, और
1: हाँ कचरे की गाड़ी में कचरा
0: बिल्कुल
1: डाल
0: बिल्कुल,
1: रहे हैं।
0: और दूसरी बात यह है कि जैसे कि एक कार है या एक बाइक है, उसमें हम एक ही व्यक्ति जा रहे हैं, हो सकता दो भी जा सके, है ना? कार में तीन लोग
1: हाँ
0: चार लोग
1: दीदी,
0: भी जाके जा सकते हैं अपने निश्चित स्थान पर।
1: हाँ
0: तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल की बचत भी होगी और साथ ही साथ जो धुआं हो रहा है, प्रदूषण है, वो भी कम होगा। क्या सोचते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कुछ ऐसी
1: हाँ
0: चीज़ें
1: दीदी सही
0: हमें
1: कह रहे
0: अपनानी पड़ेंगी कि हम अपनी बिजली, अपनी ऊर्जा
1: हैं। हाँ दीदी
0: की बचत करें।
1: जी, हाँ
0: और क्या कर सकते हैं हम बताएं? आप पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, संरक्षित करने के लिए और क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से उपाय?
1: हाँ हम कचरे की गाड़ी में कचरा डालें, प्रदूषण ना फैलाएं धुएं वाली गाड़ी में।
0: और दूसरी
1: हाँ
0: बात, हम ये चाहेंगे कि हम अपने आसपास हरियाली और स्वच्छता भी रखें।
1: जी बिल्कुल दीदी
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए, आपने फोन किया, हमारे साथ विचार साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज हमने अपने सभी श्रोता साथियों से जाने कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी चाहिए। आपके विचार जान के हमें बहुत अच्छा लगा। तो दीजिए मुझे इजाजत अपनी रेडियो मित्र श्वेता को।

0: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्वेता तिजोरिया की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी राज्य सरकारों को दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये रिसर्च सेंटर महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों एवं सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चले हम अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के समस्त स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक प्रदेश के खिलाड़ियों ने अर्जित किए और प्रदेश में इस हफ्ते मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने आपके लिए लिया है, फिल्म है एक दूजे के लिए, लता मंगेशकर के साथ SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस सब गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, चिट्ठियां भेजी हैं। बीना जिला सागर से विमल कठरिया, राजमती कठरिया, सलिल सुनीता कठरिया, संजय रत्ना कठरिया, ग्वालियर से स्नेहलता हरिश्चंद, छिंदवाड़ा से अशोक जैन, शोभा जैन, जुमेराती भोपाल से संजय संध्या जैन और सुनील जैन गौतम नगर से। तो आप सभी की पसंद पर हम भेज रहे हैं ये गीत।

0: फरमा लिए।
1: आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत चौदहवीं का चांद इस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है रवि का। और इस गीत को बड़ी दूर से हमें चिट्ठियां भेजी हैं अमेरिका के बॉस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, उनकी मित्रा बिंदु जैन, आपके परिवार से प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव, अनिरुद्ध, जो भारत में अपने भाई और रिश्तेदारों को सुनाना चाहते हैं डॉक्टर विजय प्रकाश जी की ओर से, नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देश पांडे, मोहन और रमेश बल्लाल को सुनाना चाहते हैं। तो लीजिए डॉक्टर विजय प्रकाश जी अमेरिका में सुनिएगा और नागपुर में अपने दोस्तों को सुनवाइए चौदहवीं का चांद इस फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत ड्रीम गर्ल फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को पसंद करना चाहा है दिल्ली से बुलबुल आदि आर्यवीर, सपना और परिवार के सदस्य। दिल्ली से ही पंडित अशोक शास्त्री, सोनागिर से शशि श्रेयांश पप्पू जैन, खंडवा से बबली जैन ने इस गीत को सुनना चाहा। आप सभी की पसंद पर ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत है।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, मैं हूं साधना। सरस्वती चंद्र का वो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, इंदौर से साइकिल वाले परिवार में चंदा जैन, सुशीला जैन, अरविंद उषा सिंघई, महेंद्र सिंघई, जितेंद्र भारती सिंघई और राजेश जैन, रजनीश जैन, रत्नेश जैन, निशांत, आशीष जैन, अंकेश जैन, मोहित, जानू जैन। और इसी गीत को सुनना चाहा है इंदौर से ही बिंजल, सुरभि, सिद्धि, सुनीता, रचना, प्रीति, रेशु और सारिका ने। इसी गीत को सुनना चाहा है शशि जैन ने पालीताना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं सरस्वती चंद्र का ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म में मुकेश को। हसरत जयपुरी ने संगीत लिखा है और शंकर जयकिशन ने हसरत जयपुरी ने इसका गीत लिखा है और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। और आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है। दिल्ली से बिंदु, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर ने इस गीत को पसंद किया है। साथ ही रियांश ठाकुर भी हैं। तो आप सभी सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश का अंतिम गीत उपकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को पसंद किया है जबलपुर से पातली वाले रुचिर शिखा ओमी और कामनी जैन ने। इसी गीत को पसंद किया है नवीन निश्चल अक्षत साहिल मनु जैन नेहा जैन सौम्या जैन जूही श्रुति जैनिशा जैन बीना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम उपकार फिल्म का अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइशों में थी आपके साथ साधना जैन। इसी गीत के साथ संपन्न होती है आज के फरमाइश की ये यात्रा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा जंग लगी तलवार का भाग 11।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी के पकड़े जाने पर सभी लोग हकीकत जानने के लिए ठाकुर साहब के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। ठाकुर उन्हें बताता है कि भूख की मारी नारायणी इतनी रात गए उनसे पैसे मांगने आई थी। यशवंत नारायणी की ओर से बलबीर स्वामी से माफी मांगता है और नारायणी को घर छोड़ने जाता है। कंपनी अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी शर्तों पर बाहर से नए मजदूरों को बुलाती है। शांत पड़ी मशीनों का शोर फिर से शुरू हो जाता है। ये देखकर हड़ताली मजदूरों के सीने पर सांप लौटने लगता है। यूनियन के नेता शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री से उन्हें पता चलता है कि लेबर इंस्पेक्टर मुंशीगंज के किसानों को मजदूरों को अनाज न देने के लिए भड़का रहा है। फंड का इंतजाम करने के लिए शास्त्री कंपनी के सीमेंट के ट्रक को लूटने की सलाह देता है। उधर कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस लगाया जाता है, जिसमें हड़ताल को अवैध करार देते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात को मान्यता देने का उल्लेख होता है। नारायणी अपने मुन्ना के साथ तरबूज को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती है, जिसे उसने कटीली झाड़ियों के नीचे छिपा दिया था। साई नदी के तट पर पहुंचने पर नारायणी को बसुमती मिलती है, जो कि तरबूज खा चुकी होती है। बसुमती नारायणी को बताती है कि ठाकुर साहब नपुंसक हैं और उसे उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं है। ये सुनकर नारायणी खुश होती है। अब आ

0: कि हम उनके लोकल लीडर हैं।
1: बात को समझने की कोशिश कीजिए शास्त्री जी, ये वही भूखे नंगे मजदूर हैं जिनके बल पर आपका राजनैतिक अस्तित्व टिका हुआ है। अगर ये भड़क गए तो कोई आपको कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा।
0: बलबीर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
1: अरे कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
0: ठीक है ठीक है, मैं कल ही कंपनी के अधिकारियों से मिलता हूं। हड़ताली मजदूरों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मेरा राजनीतिक अस्तित्व भी बचा रहेगा। भाई अगली बार विधानसभा का चुनाव जो लड़ना है मुझे, 4000 वोट बहुत मायने रखते हैं बलबीर, बहुत मायने। देखिए ठाकुर साहब, आपकी कंपनी ने अभी अगस्त महीने में ही दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त करने का नोटिस दिया था, और अब फिर? अरे भाई ये कहां का न्याय है? कुछ तो मजदूरों के हित की सोचिए।
2: देखिए शास्त्री जी, मजदूरों को तभी बर्खास्त किया जाता है जब कंपनी के पास उनके लिए कोई काम नहीं होता, और फिर हड़ताल का इसलिए भी कानूनी तौर पर समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि सन 75 में हुए समझौते पत्र के अनुसार हड़ताल जायज नहीं है।
0: क्या इस समझौता पत्र पर मजदूर यूनियन की सहमति भी शामिल है ठाकुर साहब?
2: देखिए पिछले दिनों यूनियन और अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी।
0: ठीक।
2: इस बैठक में प्रोजेक्ट और मजदूरों की छटाई के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस बैठक के उद्देश्य लिखित रूप से तैयार करने और हस्ताक्षर करने तक यूनियन के नेता बहाना बनाकर चले गए थे।
0: क्या
2: बाद में हमें खुद सब कुछ तैयार करके अधिकारियों के पास भेजना पड़ा? अब आप देख ही रहे ना कि यूनियन हमें किस तरह निशाना बना रही है।
0: अब हमें क्या पता ठाकुर साहब कि यूनियन कंपनी को किस तरह निशाना बना रही है, आप बताइए।
2: यूनियन हमारी इसी चिट्ठी को निशाना बनाकर भोले भाले मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। हमेशा अधिकारियों के साथ कुछ बेबुनियाद विषय को लेकर बहस और झगड़ा करती रहती।
0: देखिए देखिए ठाकुर साहब, आप और आपकी कंपनी मजदूर यूनियन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अरे आपकी कंपनी मजदूर हितों की भक्षक है जबकि यूनियन रक्षक है। कंपनी हितों को साधने और मजदूरों को शोषण करने बाबत ही आप ऐसा कर रहे हैं, सब जानते हैं हम।
2: नहीं नहीं शास्त्री जी, हमारे पास अपनी बात के पक्ष में पर्याप्त तर्क हैं।
0: कैसे तर्क?
2: मिसाल के तौर पर मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों और रोज की मजदूरी करने वालों की सुरक्षा की मांग की गई है, जबकि सन 75 के समझौते पत्र के अनुसार कंपनी के पास काम न हो तो मासिक वेतन पाने वालों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है और दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया जाता है।
0: इसका मतलब ठाकुर साहब कि कंपनी ये मानती है कि इस समझौता पत्र को नकार कर यूनियन ने कोई गैर कानूनी काम किया है।
2: जी हाँ, इसके अलावा बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखे जाने की मांग भी बिल्कुल निरर्थक है।
0: अच्छा जी, वो किस मायने में?
2: सन 47 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार यूनियन के साथ समझौता न होने पर बुजुर्गों को भी निकाला जा सकता है। इस बारे में कंपनी के पास सन 75 में बनाया गया कानूनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है।
0: तो आप मुझे कानूनी एग्रीमेंट का डर दिखा रहे हैं ठाकुर साहब? मैं भी लीगल फाइट करवा सकता हूँ, लीगल फाइट। अरे आपने यूनियन को समझ क्या रखा है?
2: कैश में ना आइए शास्त्री जी, सन 75 के ही राजीनामे के अनुसार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले मजदूरों को तुरंत नए विभाग में काम मिल सकता है, लेकिन उनका वेतन और अन्य सुविधाएं स्थानीय परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेंगी। कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।
0: क्या कहा आपने? क्या कहा? कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती?
2: जी हाँ,
0: जिला और केंद्र ने जो कानून बनाए हैं क्या उन कानूनों का कंपनी पालन करती है? कंपनी को दिहाड़ी मजदूरों और मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों की कोई चिंता है या नहीं?
2: आप तो खामखा भड़क रहे हैं शास्त्री जी।
0: अरे मैं भड़कूं नहीं तो और क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे तुम्हारी सारी जायज नाजायज बातों को मानता रहूं।
2: देखिए शास्त्री जी, माना कि आप राय बरेली के लोकल लीडर हैं, आपका मान सम्मान और दबदबा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करें।
0: ऐसा मैंने क्या कह दिया?
2: अभी तक तो नहीं किया, पर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी बर्खास्त मजदूरों को जिला और केंद्र के कानून के अनुसार पैसा देती रहती है। नियम अनुसार उन्हें दूसरी जगह काम पर भेजते समय रेल और बस का किराया भी मिलता है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बर्खास्त मजदूरों को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह काम पर भेजा जाए।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही है ठाकुर साहब, क्या सबूत है आपके पास ठाकुर साहब?
2: अच्छा अच्छा, आप सबूत की बात करते हैं
0: जी,
2: तो ठीक है सुनिए।

0: शास्त्री जी, अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो हमारे हित में अच्छा नहीं होगा। मजदूर हमारे खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं।
1: उन भूखे नंगे मजदूरों की ये मजाल की हमारे खिलाफ विद्रोह करें? क्या वह जानते नहीं

0: ए बाबू, ए बाबू, कुछ खाने को देना, बहुत भूख लगी है।
1: अरे
0: कुछ खाने को।
1: कौन है रे तू? कहाँ से आई है?
0: मैं दलितों की बैरक में रहती हूँ बाबू, कुछ खाने को देना, पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है।
1: अच्छा, तो तू यूनियन के साथ है?
0: बातें ना बना बाबू, रोटी का कोई टुकड़ा है तो देना, भूख लगी है।
1: अरे अरे अरे, तू जवान है, खूबसूरत है, अरे तू भूखी क्यों मरती है? अरे मुझसे कहना, मैं तुझे यहाँ से दूर ले चलूंगा। हाँ सच, मेरे साथ रहेगी तो फिर कभी भूखी नहीं रहेगी।
0: सच सच बाबू, तू मुझे रोज खाना खिलाएगा?
1: मैं सच कहता हूँ, खाना भी खिलाऊंगा और पहनने के लिए नए नए कपड़े भी दूंगा।
0: सच बाबू, तू कितना अच्छा है। मेरा बाबू और दादी

0: तो मुझे खाने को देते हैं, नए कपड़े दिलवाते हैं।
1: ओह, तभी तो तेरा चेहरा कुमला गया है। देख तो, इस जवानी में तेरा रंग कैसा काला हो गया है। अच्छा अच्छा, ये ले, 5 रुपए ले ले ले ले। अरे रख ले ना, कहीं से कुछ खरीद कर खा ले।
0: बाबू बाबू, तेरा ही एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे अरे सुन सुन, अपना नाम तो बता दे।
0: मेरा नाम पार्वती है बाबू।
1: हाँ तो पार्वती, कल शाम को स्टेशन पर मिलियो। हाँ, मैं तेरा इंतजार करूंगा, आई ना।
0: अच्छा, आऊंगी बाबू, आऊंगी।
1: ठीक है,
0: जरूर आऊंगी।
1: ठीक है पार्वती।

0: नारायणी।
1: आओ काकी।
0: हाँ भगवान तेरा भला करे नारायणी, जो तू हमको मिल गई। अच्छा पहले ये बता कि तेरा मर्द कैसा है?
1: कैसे होंगे काकी, मौत की राह देख रहे हैं।
0: चुप कर निगोड़ी, है क्या अनाप शनाप बक रही है?
1: तुम बताओ काकी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी?
0: अरे हाँ, तुझे एक बात बतानी थी।
1: कौन सी बात?
0: होशियार रहे नारायणी, होशियार। हाँ? तुझे नहीं मालूम कैसे भयानक दिनों का सामना करना पड़ सकता है?
1: भयानक दिन? मैं कुछ समझी नहीं काकी।
0: अरे हम मुंशीगंज में काम के लिए गए थे। हम बीमार लोगों के कपड़े धो सकते हैं, यहाँ तक कि 5 महीने का गर्भ। राम राम राम राम राम।
1: क्या हुआ काकी, क्या कहीं काम नहीं मिला?
0: अरे वो काम की क्या कहूँ, बस पीने का पानी मांगा तो गाली दे दी, कुत्ते पीछे छोड़ दिए। देख नारायणी, तेरी गोद में एक नन्ना बच्चा है, जब छटनी होगी तो जेठ महीने की लू में तू राय बरेली की सड़क पर बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ फिरेगी। और फिर तेरा वो बीमार मर्द, उसको भी घसीटना पड़ेगा, तो क्या करेगी तू? अरे हम तो जानते थे एक भी पैसा न बचा होगा। तू नहीं जानती नारायणी, वो दोनों शैतान झूठी गवाही देने के लिए बदनाम हो चुके हैं। हाँ अच्छा चल छोड़ उन दोनों को, अपने मतलब की बात सुन।
1: हाँ सुन ही तो रही हूँ तुम्हारी बात।
0: सुनने में आया है कि राय बरेली शहर में कोई लाडी कारपेट और कास आयरन कंपनी आई है, कंपनी वाले जगदीशपुर में कैंप बना कर रहेंगे। अरे तुझे वहाँ सफाई का काम मिल जाएगा।
1: अच्छा तुम्हें कैसे पता काकी?
0: यूनियन का एक आदमी मिला था हमको, वो कह रहा था कि पक्का मकान बनने तक अफसर लोग तंबू में ही रहेंगे।
1: लेकिन काकी कोई हमें काम क्यों देगा, हमें तो कोई जानता तक नहीं है।
0: अरे भगवान से दुआ कर सब ठीक हो जाएगा, तो दुआ कर।

0: अरे अरे उधर देख मदन भैया, उधर देख, एक रोटी के लिए चार कुत्ते आपस में किस तरह लड़ रहे हैं।
1: रोटी? हाँ, रोटी ही तो है वो। बामू भैया, क्यों ना मैं कुत्तों से रोटी छीन लूं।
0: अब मरना है क्या? देखा नहीं कितने खतरनाक कुत्ते हैं, काट लिया तो पेट में ये बड़ी बड़ी सुइयां लगवानी पड़ेंगी।
1: सुइयां तो तब लगेगी ना जब मैं जिंदा रहूंगा, भूख से तो वैसे ही एक दो दिन में मर जाऊंगा बाबू भैया। हतमरा तो मैं पहले ही हो रहा हूँ, कब कश खाकर गिर पड़ूं पता नहीं।
0: ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है।
1: तो ठीक है ठीक है, तुम यही खड़े रहो। हाँ, मैं कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर लाता हूँ।
0: भूखे कुत्तों के मुंह से भला आज तक कोई रोटी छीन सका?
1: कुत्ते ही तो है ना, शेर तो नहीं। फिर भूखा इंसान तो शेर के मुंह का शिकार छीन लाता है।

0: अरे अरे सुन तो, मदन मदन, अरे कहाँ जा रहा है? अरे दरवाजा बंद कर दो, कुत्ते।
1: अरे बाप रे, लगता है कुत्ते ने उसे जान से मार डाला। अरे अरे अरे, ये कुत्ते तो भाग गए,
0: रोटी भी ले गए।
1: इसको जाकर देखता हूँ। मदन, अरे हाँ मदन मदन, अरे
0: ये हिल डुल क्यों नहीं रहा? मदन मदन ओ मदन,
1: अरे अरे इसकी तो सांस ही बंद हो गई है। मार डाला, अरे अरे मार डाला, मार डाला।

0: बाबू अरे कहाँ भागा जा रहा है बाबू, अरे बाबू रुक तो, अरे बता के जा कि किसने किसको मार डाला।
1: कुत्तों से रोटी छीनने वाले मदन को कुत्तों ने मार डाला।
0: कुत्तों के मुंह से रोटी।

0: जिस दिन से ठाकुर साहब की घर वाली घटना घटी है तब से यशवंत बाबू मुझसे मिलने नहीं आए। पहले तो इनका हाल चाल पूछने आ जाया करते थे, अब वो भी नहीं। शायद मैं उनकी नजरों में गिर गई हूं। उन्हें मेरे चरित्रहीन होने का विश्वास हो गया है। हो भी क्यों ना, परिस्थितियां ऐसी थी, उस पर मेरी चुप्पी भी कांटा बनकर उनके सीने में गड़ रही होगी। वैसे भी यशवंत बाबू सज्जन आदमी है, हमेशा मेरी मदद की। पर हमेशा मेरी मदद क्यों की? लिच्छू, शंभू या बसुमती काकी की क्यों नहीं की? कहीं वो मुझे जाने तो नहीं लगे? ये मुझे क्या हो रहा? नहीं, एक सुहागन को बर पुरुष के विषय में सोचने का कोई अधिकार नहीं है।
1: नारायणी, हरिओम नारायणी।
0: कौन तुम?
1: हाँ, मैं कालू राम, यूनियन का सचिव।
0: तुम मेरे पास क्यों आए हो?
1: मैं अरे, मुझसे तुम्हारी दुर्दशा देख ही नहीं जाती। ये दूध मुहा बच्चा, बीमार पति और उस पर तेरी गरीबी, हाय हाय हाय। हरि नारायणी, मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूँ। हाँ, मदद?
0: कैसी मदद कालूराम?
1: अरे, क्या बसुमती ने नहीं बताया? लूडी कारपेट कंपनी के अफसर मुंशीगंज में ही रहेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के माध्यम से सफाई वालों की नियुक्ति होने में तो भी बहुत समय लगेगा। हाँ, अगर तब तक तुम चाहो
0: बसुमती काकी ने मुझे

0: बताया तो था
1: नारायणी, आजकल तू ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने नहीं जा रही है? क्यों क्यों नहीं जा रही?
0: वैसे ही
1: सुन नारायणी, ठाकुर साहब आजकल बीमार हैं, कुछ दिन के लिए कारपेट कंपनी के तंबू में आकर रहेंगे। हाँ, अगर तू चाहे तो उसकी सेवा में आ सकती है। हाँ, हाँ, समझ रही है ना तू?
0: लेकिन ठाकुर साहब कारपेट कंपनी वालों के तंबू में क्यों रहेंगे वो?
1: अरे नारायणी, तू नहीं जानती, कारपेट कंपनी के साहब के साथ ठाकुर साहब की दोस्ती है। बहुत ही गहरी दोस्ती। इलाज करवाने के लिए ठाकुर साहब ने वहां रहने का मन बनाया है। अगर तू चाहे तो दो दिन बाद चुपचाप पुरानी सड़क से आकर अपना काम शुरू कर दे। हाँ।
0: लेकिन वो यूनियन के आदमियों ने देखा और मारपीट की तो?
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कोई डर नहीं। हाँ। वो क्या है, कारपेट कंपनी के दरवाजे पर दो बंदूकधारियों का पहरा रहेगा। बोल है, क्या कहती है? अरे बोल ना नारायणी, बता मैं ठाकुर साहब को क्या जवाब दूं? बोल बोल बोल बोल बोल।
0: कालूराम, पहले तुम मुझे ये बताओ कि यूनियन के सचिव होकर तुम ठाकुर साहब का साथ क्यों दे रहे हो?
1: हरि नारायण, छोड़ इस बात को, ये अंदर की बात है। हाँ, अंदर की बात, तू अपनी बात बता। ठाकुर साहब ने विशेष रूप से मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
0: मुझे सोचने के लिए समय चाहिए।
1: समय चाहिए, ठीक है। तो मैं दो दिन बाद फिर आऊंगा।
0: नहीं, तुम मत आना, मैं खुद आऊंगी।
1: खुद आएगी?
0: हाँ,
1: ठीक है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है।
0: हाँ ठीक है।
1: अच्छा।
2: छिपाई क्यों बैठा? अब चल, जलूस में हमारे साथ चल।
3: नहीं जाना मुझे जुलूस में, नहीं शामिल होना इस हड़ताल में। मुझे मेरी हालत पर अकेला छोड़ दो।
2: तू रो रहा है भिगू? अरे क्या हुआ तुझे? देख भिगू, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, मुझे बता क्या बात है।
3: मैं बर्बाद हो गया यशवंत, मैं बर्बाद हो गया।
2: क्या?
3: मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं कहीं का नहीं रहा यशवंत, कहीं का नहीं रहा।
2: भृगु देख, तू रो मत, चुप हो जा। जो भी बात है, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, तू मुझे साफ साफ बता।
3: पार्वती?
2: हाँ हाँ, क्या हुआ पार्वती को?
3: पार्वती मेरे मुंह पर काली पोत कर भाग गई।
2: क्या?

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्यप्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। करीब 15 दिन तक चलने वाले इस सत्र में सदन की 10 से 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और नौवें महासचिव एंटोनियो गुतरस का कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष 1 जनवरी को नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे और इनका निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए दान और कीमती सामान के दुरुपयोग के आरोप में राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की है। साथ ही 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

स्वागत है आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी, बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी। एक नौकरी के चक्कर में गांव, घर, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सबको छोड़ना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है सखियों, घर चलाने के लिए दूर शहर या विदेश में काम करने वाला इंसान सिर्फ पैसा नहीं भेजता, वो अपनी खुशियाँ, आराम और परिवार के लिए सपने भी भेजता है। घर से दूर रहना कोई शौक नहीं, बल्कि अक्सर एक मजबूरी या बेहतर भविष्य की तलाश होती है। चाहे वह देश के भीतर किसी दूसरे शहर में रहने वाले लोग हों या सात समंदर पार विदेशों में बसे प्रवासी, अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चों से दूर रहने का दर्द वही समझ सकते हैं जो इसे जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इसी संघर्ष को सम्मान देने का माध्यम है। जी हाँ सखियो, हर साल 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करने वाले प्रवासियों के त्याग और उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को समर्पित है। कई माता पिता बच्चों की पढ़ाई इसी पैसे से करवाते हैं, घर का खर्च चलता है, इलाज होता है और सपनों को सहारा मिलता है। लेकिन इस पैसे के पीछे एक अलग कहानी भी होती है, परिवार से दूरी, त्योहारों में अकेलापन और लगातार मेहनत। फिर भी लोग मुस्कुराकर काम करते हैं ताकि उनके अपने खुश रह सकें। हर भेजा गया रुपया सिर्फ कमाई नहीं, परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी की पहचान होता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, परिवार के लिए किया गया प्रयास दिलों को जोड़े रखता है। एक प्रवासी का जीवन बाहर से जितना चकाचौंध भरा दिखता है, भीतर से वह उतना ही एकाकी और संघर्षपूर्ण होता है। त्योहारों, शादियों या किसी बीमारी के समय घर से दूर रहने की टीस सबसे ज्यादा महसूस होती है। अपनों के बिना हर उत्सव अधूरा सा लगता है।

आपका बिजनेस करने का सपना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैसा और लोन का है, तो यह जानकारी आप सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री योजना स्टैंड अप इंडिया मिशन की। हमारी कई सखियां हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन कैपिटल और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी उनके कदम रोक देती है, तो इसी चुनौती को

ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया मिशन शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार और बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस मिशन के तहत बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। यह लोन मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग बिजनेस जैसी क्षेत्रों में नया उद्योग शुरू करने के लिए दिया जाता है। योजना का मकसद सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रेरित करना भी है। अगर कोई महिला अपना बुटीक, फूड बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट या ब्यूटी पार्लर या सलून या कोई उद्योग शुरू करना चाहती है तो यह योजना उसके लिए मददगार हो सकती है। आवेदन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी बैंक या आधिकारिक पोर्टल से ली जा सकती है। याद रखिए, कई बड़े बिजनेस भी एक छोटे कदम और सही अवसर से शुरू हुए थे। और अगर आप कभी बिजनेस शुरू करने का सपना है तो योजनाओं की जानकारी जरूर लें और आगे बढ़ें। याद रखिए, सपनों की उड़ान तभी मिलती है जब हौसलों के साथ सही जानकारी भी हो। और हाँ, उड़ान से याद आया कि अब वक्त है मेरी उड़ान क्रम का, तो सुनते हैं मेरी उड़ान।

0: भी एक छोटे कदम और सही अवसर से शुरू हुए थे। और अगर आप कभी बिजनेस शुरू करने का सपना है तो योजनाओं की जानकारी जरूर लें और आगे बढ़ें। याद रखिए, सपनों की उड़ान तभी मिलती है जब हौसलों के साथ सही जानकारी भी हो। और हाँ, उड़ान से याद आया कि अब वक्त है मेरी उड़ान क्रम का, तो सुनते हैं मेरी उड़ान। सखियों, योगा के प्रति पूरी दुनिया में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। आज के समय में खुद को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखने के लिए लोग योगा का सहारा ले रहे हैं। शायद इसीलिए योगा के क्षेत्र में बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी महिलाओं के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माया खिलावदिया, जो कि एक योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। माया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: माया जी, हमारी सखियों को आप बताइए कुछ अपने बारे में।
1: मेरा नाम डॉक्टर माया खिलावदिया है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में योग डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ 4 वर्षों से। मेरा पर्सनल योगा सेंटर है, पर्सनल होम विजिट भी लेती हूँ, एक योगा थेरेपिस्ट हूँ।
0: तो मैम, आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हैं?
1: वैसे तो मैं 2009 से सबसे पहली बार योग को मैंने जाना कि योग क्या है, उसके बाद से लगातार आज तक योग के पद पर कार्य कर रही हूँ। जब मैंने योग को समझा कि योग क्या है, कि योग मुझे ऐसा लगता था सिर्फ आसन वगैरह ही, पर श्वास पर ध्यान लगाकर करा तो मैंने अपने अंदर के हार्ट बीट को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये इंटरनल जो शांति प्रदान करने वाली जो सुख की अनुभूति होती है, योग कर कर अनुभव किया।
0: मैम, इतने टाइम से आप योग सिखा रही हैं लोगों को, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का?
1: कई अलग अलग पेशेंट आए, कई स्वस्थ व्यक्ति आए, कई अस्वस्थ व्यक्ति आए। ये चेक करा कि इस संसार में पूर्ण रूप से कोई स्वस्थ नहीं। आजकल वैसे देखा जाए लैपटॉप और मोबाइल की वजह से सर्वाइकल ज्यादा हो रहा है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी उठे कि, पर क्या हो रहा है, जल्दी कोई भी नहीं उठना चाहता है। जो ज्यादा बिजी है वो तो यही कर रहा है कि समय के आधे घंटे पूरे होके फटाफट तैयार होके अपने जॉब पे जाना चाहता है। तो उससे भी मेंटल हेल्थ पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, आप अस्वस्थ रहेंगे। आप जितना थोड़ा जल्दी उठेंगे, आप रिलैक्स होके हर कार्य को करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे।
0: मैम, हम सभी जानते ही हैं कि योगा हमें इंटरनली, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है। बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो अपना वेट लॉस करने के लिए जिम भी जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो योगा इस में क्या हेल्प कर सकता है? मतलब योगा से आंतरिक जो शक्ति वो तो मिलती है, बाहरी तौर पर योगा किस तरीके से काम करता है?
1: जब हम योग को करते हैं तो आप मान लिया कि आप जिम जा रहे, आपको जिम कैसे फायदा करेगा? सिर्फ शारीरिक रूप से ज्यादा फायदा करेगा, आपको मेंटली इतना फायदा नहीं करेगा। आप योग करते हैं शारीरिक रूप से फायदा करने के अलावा मानसिक रूप से ज्यादा फायदा करेगा। क्यों करेगा? जब हम जब योग आसन करते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता है। हमारे पतंजलि ने कहा है कि आपको जब भी कोई आसन करना है तो स्थिर सूक्ष्मासन के रूप में करना है, मतलब स्थिर अवस्था में आपको करना है कि आपको कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो कष्ट न हो, जितना आपको सुख की अनुभूति हो रही है वह आसन आप करें।
0: किस तरह के आपके पास क्लाइंट आते हैं?
1: स्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं वेट कम करने के लिए, पर हम स्वस्थ व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दे पाते हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से आसन कर लेंगे, क्योंकि उनको हर टाइप का हम आसन करवा सकते हैं। और अस्वस्थ व्यक्ति को सावधानी पूर्वक आसन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ आसन ऐसे रहते हैं, मान लिया कि सर्वाइकल है तो गर्दन नहीं झुकाना है, तो फिर कुछ आसन ऐसे रहते आप सूर्य नमस्कार ही करना है मान लीजिए, तब उसमें तो बहुत सारे पोस्चर ऐसे कि आपको गर्दन नीचे करना ही पड़ेगी। तो हमें बस थोड़ा सा यह ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास जो भी व्यक्ति आ रहा है इस बीमारी का, तो उसको कौन से आसन करवाना है और कौन से आसन नहीं करवाना है,
0: मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक करवाना पड़ता है। तो कहाँ से, कैसे सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कुछ होते होंगे, क्या इनिशियल लेवल पे क्या करना चाहिए?
1: सर्टिफिकेट कोर्स तो वैसे कई संस्थाएं करा रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह कई जगहों पे सर्टिफिकेट कोर्स होता है। आपको सिर्फ नॉलेज बढ़ाना है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स करें, और आपको अगर कहीं किसी पोस्ट पर जैसे स्कूल में जॉब करना है, कॉलेज में जॉब करना है, तो उसके लिए आपको डिग्री करना पड़ेगी, जैसे डिप्लोमा है, मास्टर डिग्री है।
0: तो ये कितने साल के कोर्सेज होते हैं?
1: डिप्लोमा 1 साल का होता है।
0: अच्छा,
1: मास्टर डिग्री आपकी 2 साल की होती है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा मैम, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि लगभग कितना इन्वेस्टमेंट होता है जब भी हम कोई क्लासेस शुरू करते हैं या सेंटर स्टार्ट करते हैं, इनिशियल लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट होता है?
1: यदि आप योग का सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके स्वयं की प्लेस हो तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपको रेंट नहीं लगेगा।

0: और प्लेस भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ खिड़की हो, कमरे हो, जहाँ से हवा अच्छे से आ रही है, ऐसी प्लेस होना चाहिए योगा के लिए। मौसम के अकॉर्डिंग आप टेरेस पे भी शुरू कर सकते हैं, गार्डन में भी कर सकते हैं।
1: मैम, काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपसे जानी कि योगा को एज अ प्रोफेशन हम कैसे कर सकते हैं, और हम अपने घर से ही टेरिस से शुरुआत कर सकते हैं या किसी गार्डन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोई महिला अगर घर के बाहर नहीं जा सकती तो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकती हैं।
0: महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वह घर बैठे भी यह विधा को सिखा सकती है।
1: जी, आखिरी में हमारी सखियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं यही सखियों से कहना चाहूंगी कि वह एक अच्छी योगा टीचर बनकर सबसे पहले तो स्वयं योग करें, क्योंकि जब तक हम स्वयं योग नहीं करेंगे, उसको अनुभव नहीं करेंगे, तो हम सामने वालों को कैसे करवाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए सबसे पहले स्वयं योग करें, फिर घर में सभी की आदत डालें कि भाई आप भी योग करें, परिवार में योग की आदत डालें, समाज को योग के प्रति जागरूक करें। योग की विधा को अपनाकर आप सबसे अच्छा आय का साधन अपना सकती है। हम खुद तो स्वस्थ रहेंगे और सामने वालों को भी स्वस्थ करेंगे।
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके कि योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम खुद को स्वस्थ रख ही सकते हैं और साथ में हम दूसरों को भी स्वस्थ बना सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी आय का जरिया भी इसको बना सकते हैं। हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और सखियों, अब बारी है रूप लावण की। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में होने वाली टैनिंग को कम करने के लिए महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। दही, बेसन, टमाटर और शहद, नींबू जैसी किचन की चीजें स्किन को साफ कर सकती हैं और नेचुरल ग्लो देने में भी मदद कर सकती हैं। सही तरीके से नियमित उपयोग करने पर ये घरेलू उपाय स्किन को फ्रेश और चमकदार बना सकते हैं, क्योंकि दही और बेसन त्वचा की देखभाल के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू नुस्खों में से है। इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है तो यह स्किन की टैनिंग साफ करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। वहीं बात करें अगर टमाटर के रस की, तो टमाटर को स्किन के लिए एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह माना गया है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और डलनेस को कम करते हैं। और सखियों, शहद जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसे सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, जबकि नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड त्वचा की सफाई और टोन को सुधारने में सहायक माने जाते हैं। और जब इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है तो यह डल स्किन को रिफ्रेश करने और हल्की टैनिंग को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही सखियों, स्किन टैनिंग को हटाने के लिए सिर्फ घरेलू उपाय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की स्किन केयर भी उतनी ही जरूरी है। धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, पर्याप्त पानी पीना और चेहरे की नियमित सफाई त्वचा की टैनिंग से बचाने में मदद करता है।

से खुशबू खफा। तो क्यों आजकल मार्केट में जाओ तो चारों तरफ आम ही आम दिखाई दे रहा है। आम तो वैसे भी फलों का राजा है और इसको सभी पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि आम से कई सारी स्वादिष्ट और ताजा रेसिपीज बनाई जा सकती हैं। जी हाँ, सबसे लोकप्रिय और झटपट बनने वाली रेसिपी है मैंगो मलाई कुल्फी। आज के फूड जोन क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो मलाई कुल्फी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए झटपट से लिख लीजिए सामग्री को। मैंगो मलाई कुल्फी बनाने के लिए आपको चाहिए पके और मीठे आम, जिनको आप बारीक काट लें या फिर प्यूरी बना लें। साथ ही चाहिए फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी 4 से 5 बड़े चम्मच, कटे हुए मेवे, काजू, बादाम और पिस्ता, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। और आप जानते हैं इसको बनाना कैसे है, जो कि बहुत ही आसान है। एक पैन में दूध उबालें और उसे तब तक पकाएं जब तक वह आधा न रह जाए, यानी कि गाढ़ी रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी कर लेनी है। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें, दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आम की प्यूरी, कटे हुए मेवे मिला दें। इस मिक्सचर को कुल्फी मोड्स या छोटी कटोरियों में डालें, ऊपर से थोड़े मेवे डालें और इसे फॉइल पेपर से कवर करके 8-10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, तैयार है मैंगो मलाई कुल्फी। कितनी आसान और इतनी टेस्टी कि बस बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे। तो सखियों, आप ट्राई कीजिए ये मैंगो मलाई कुल्फी और मैं सुनवाती हूँ आपको ये प्यारा सा गीत। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि खुशी का मतलब बस एक शांत सुबह, अच्छी हेल्थ, टाइम पर भरे हुए बिल और एक सुरक्षित घर और फालतू झगड़ा ना करने वाले लोग होते हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपको बता दे सखियो, इस कार्यक्रम का संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। तो अब दे अनुमति अपनी सखी दीपलक्ष्मी त्रिपाठी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का,

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं मुकेश राठौर और साथी इनके गाए लोकगीत आज आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

मुकेश राठौर और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुजाता वैशंपायन की गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं मीरा की इस रचना के साथ। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

0: कबीर की रचना भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे सुजाता वैशंपायन के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत है। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़। मजरू ने गीत लिखा है, आनंद मिलिंद ने धुन बनाई है।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए फिल्म कयामत से कयामत तक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। MyGov पोस्ट में पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में आए बदलावों का उल्लेख किया गया है। इन बदलावों से आवाजाही तेज हुई है, लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिली है और विकास के नए मार्ग खुले हैं। पोस्ट में कहा गया है कि बेहतर संपर्क सुविधाओं से दूरियां कम होने के साथ साथ अवसरों में वृद्धि और समृद्ध भारत की नींव मजबूत हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून 2026 तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उसकी टीमें सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। वहीं 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मॉनसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, मई, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समान नागरिक संहिता के संबंध में जन परामर्श को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आगरमालवा जिला जेल और सुसनेर उप जेल में कल से 21 जून तक साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। नर्मदापुरम जिले के जनपद पंचायत बनखेड़ी क्षेत्र में 12 से 18 जून तक

कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ दिलाना और लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपने वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी

0: डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक फिवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले

0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहली फरमाइश शामिल कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल की। ग्राम चौहल्दा बागपत से संजय ढिंगनिया, नमन मुस्कान और कुणाल की। राजा बाजार बिहिया से सुरेश केसरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी। रामलखन फिल्म का गीत मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल ने गाया है। आनंद बख्शी की गीत रचना है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, गांव भड़भुंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, आयुष और ओम प्रकाश की पसंद है। धीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली, सुनना पसंद किया है तेजाब फिल्म का गीत। अनुराधा पोडवाल और अमित कुमार का गाया, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगले गीत का अनुरोध हमें मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्ला राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनके परिवार के सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की। लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का नाम है। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा, गाया है उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल ने।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। ग्राम बगबुड़वा पथरिया सा नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम की। अनुरोध करता है गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। हुकुम कर्मकर सुनीता कर्मरकर, हार्दिक कर्मरकर, प्राची कर्मरकर, तनु कर्मरकर की पसंद। ये खत है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा की। सुनना पसंद किया है वारिस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर का गाया, वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, उत्तम जगदीश ने धुन बनाई है।

0: वारिस फिल्म के इसी गीत को सुनना पसंद किया था शुभचंद बजाज कालका हरियाणा से और मोहाली पंजाब से टीडी मल्होत्रा ने। वारिस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माई गव की एक पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर बैतूल ओंकारेश्वर जबलपुर ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में कहा कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है और मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आतंकवाद। उर्दू प्रोग्राम कहकशा रात्रि 9:30 पर, इसके अंतर्गत आज होगा आबशारे गजल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन, राग होगा जोग। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत कुलदीप शर्मा से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय होगा खरीफ फसलों की तैयारी और बीजोपचार। ये थी सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम

मुकेश राठौर और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुजाता वैशंपायन की गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं मीरा के इस भजन के साथ।

रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे सुजाता वैशंपायन की गाई कुछ भजन। ये DTH के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

एसपी बालासुब्रमण्यम और अनुराधा पोडवाल ने इसे गाया है। रविंदर रावल का लिखा यह गीत है, बाबुल बोस ने धुन बनाई है। फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में।

मोहम्मद अजीज़ और सपना मुखर्जी का गाया फिल्म हत्या का ये गीत है। इंदिवर ने बोल लिखे हैं और धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: तुम भी गाओ। सा सा सा सा
1: सा। भ्रष्टाचार फिल्म का ये गीत सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

0: क्या करती?
1: मेरे जानो,
0: मुझे डर लगती है।
1: मेरे बालम,
0: तेरा भाई हमको मारती।
1: तुझे सलाम, मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
2: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
2: हाँ, यू आर इन लव।

0: आशा भोसले के गाए फिल्म खून भरी मांग के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज फ्रांस के व्यू पहुंचेंगे। स्लोवाकिया यात्रा संपन्न करके श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा संसद इस लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए एक सशक्त मंच है। ये युवाओं में नेतृत्व, कर्तव्य बोध, तार्किक सोच और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने जैसे मूल्यों को विकसित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगे। 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है और मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। लीजिए सबसे पहले कार्यक्रम में सुनते हैं शशिकांत मणि त्रिपाठी की वार्ता, योग और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन।
1: मानसिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका क्या हो सकती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान समय में तनाव, अवसाद, चिंता ऐसे शब्द बड़े कॉमन हो गए हैं, इसका उपयोग अपने जीवन में लोग करते हैं। लेकिन योग एक ऐसी विद्या है जो चित्त को शुद्ध रखने में अपनी महती भूमिका निभाती है। योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, यानी चित्त में वृत्तियां निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं और उन वृत्तियों को शांत करके उनका निरोध करके ही हम योग की सिद्धि कर सकते हैं। तो निश्चित ही मन में जो विकार आते हैं वो चित्त की वृत्तियों की वजह से आते हैं। तो इसमें हमें ये जानना चाहिए कि चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं। चित्त की वृत्तियाँ साधक और बाधक दो रूप में हो सकती हैं। जैसे हम लगातार विचार करते हैं तो विचारों में किस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। क्योंकि हम सोचते तो रहते हैं लेकिन क्या सोचते हैं इसके बारे में नहीं सोचते। तो जब इस पर हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि योग की साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग चित्त का ही विज्ञान है और चित्त को समझने के लिए योग का निरंतर अभ्यास, जिसमें अष्टांग योग की बात महर्षि पतंजलि ने की है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये उत्तरोत्तर जब इसकी साधना हम करते हैं तो एक एक सोपान पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता देखें तो योग का ही शास्त्र है और इसमें चित्त में उत्पन्न होने वाले विषाद को अभिव्यक्त करते हैं अर्जुन पहले अध्याय में, और पहले अध्याय का नाम विषाद योग ही है। तो विषाद व्यक्ति को होता क्यों है? विषाद का मूल कारण है फल की आकांक्षा या फल के बारे में सोचते रहना। आप देखें तो कभी भी हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के पीछे जो ड्रिवन फोर्स होती है वो ये होती है कि इसके परिणाम को हम कैसे प्राप्त कर लें, और परिणाम पर हम फोकस होते हैं, कर्म पर फोकस नहीं होते। जबकि कर्म पर अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें तो निश्चित ही कर्म में कुशलता आएगी और कर्म को आप परफेक्शन के साथ कर सकेंगे, और जब कर्म पूरे परफेक्शन के साथ किया जाएगा तो परिणाम उस कर्म के अधीन होगा। और परिणाम पर जब हम सोचते हैं तो कार्य हमारा अधूरा छूट जाता है, और आधा अधूरा कार्य कभी भी परिणाम लाने में अक्षम होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कई बार इसका अर्थ लोग ये निकालते हैं कि क्या कर्म बिना फल की इच्छा के किया जा सकता है? फल की इच्छा के बिना कर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फल की प्राप्ति बिना कर्म की शुद्धता या कर्म की पूर्णता के नहीं होती, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। इसलिए कर्म योग भी योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और कर्म में कुशलता लाना योग का एक महती उद्देश्य है। और कर्म की कुशलता की बात तो हम करते हैं, एक परिभाषा भी है, योगः कर्मसु कौशलम्, लेकिन कर्म में कुशलता कैसे आती है, इसके लिए फिर गीता में सूत्र दिया गया है। कहते हैं, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय उज्जस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसका अर्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि से युक्त हो। बुद्धि से युक्त होने का मतलब ऐसी बुद्धि नहीं जो हमेशा फल के बारे में सोचती रहती है, ऐसी बुद्धि जो सुकृत और दुष्कृत, मतलब असफलता और सफलता, इन दोनों का त्याग कर दे और सिर्फ उस कर्म पर ध्यान केंद्रित करे जिस कर्म से सफलता प्राप्त होती है। तो निश्चित ही व्यक्ति के कर्म में कुशल होने का जो की योग्यता आएगी वो तभी आएगी जब आप सुकृत और दुष्कृत इन दोनों का त्याग करेंगे। यानी दोनों के त्याग से तात्पर्य है कि दोनों के प्रभाव से अपने को मुक्त करेंगे। आप देखें, अक्सर जब हम फल पर चिंतन करते हैं या परिणाम ही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है तो उस दौरान हम ये पाते हैं कि हमारे कर्म के साथ हमारा योग नहीं हो पा रहा है, और कर्म के साथ योग न होने के कारण जीवन में कई तरह की असंगतियाँ या कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास,

हिलता है। और क्यों? क्योंकि आपने अपना बेस्ट कर्म में नहीं दिया। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित नहीं है, लॉयल नहीं है, कर्म नहीं कर पा रहा है। और जब भी कोई मानसिक विकार जीवन में उत्पन्न होता है तो आदमी सबसे पहले अपने को कर्म से दूर करता है। आप देखेंगे, जब भी आप जो चाहते हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार जो कर्म करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, या कर्म से अपने आप को दूर करने लगते हैं, कर्म करने का मन नहीं करता, तो ये मान लें कि कोई न कोई मानसिक विकृति जन्म ले रही है। क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे कि शरीर को जितना आप सक्रिय रखेंगे उतना ही आप फिजिकली स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मन जितना शांत रहेगा उतना ही आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मानसिक अस्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम मन से लगातार विचार करते रहते हैं, और ऐसे अनावश्यक विचार करते रहते हैं जिसमें हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, या कई बार हमारे मन में ऐसे विचार भी आते हैं जो हमें ही संदिग्ध बनाते हैं, तो निश्चित ही ये तनाव, अवसाद और चिंता का कारण बनते हैं। तो जिसको ओवर थिंकिंग भी आजकल कहते हैं ना, कि बहुत सारे विचारों की आंधियां चल रही हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। ओवर थिंकिंग तभी बढ़ती है जब हम अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं। कार्य से संतुष्ट होना एक बहुत बड़ी कुशलता है। इसी को कर्म योग कहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं, क्या वो कर्म आपको संतोष दे पा रहा है? उस कर्म को करके आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं है? अगर ये सवाल आप अपने आप से करते हैं तो निश्चित ही आपका कर्म योग से युक्त है, अन्यथा वो कर्म विचार करने योग्य है। तो कर्म से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए विचारों में हमेशा उलझे रहना आवश्यक नहीं है। जो विचार आप करें उस विचार के साथ आप अपने को क्रिया में भी संलग्न करें, क्योंकि क्रिया से अलग हो पाना एक प्रकार से मानसिक विकार को जन्म दे रहा है। और गीता को आप देखें तो गीता में अर्जुन भी मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब होता है, या ऐसे परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं जो परिणाम भविष्य में घटित होने वाला है, तो वो कर्म से अपने को अलग करने की चेष्टा करते हैं। मानसिक रोगों की पहचान के लिए अगर हम बात करें योग की भाषा में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आपको ये लगे कि आप जो आपका नियत कर्म है, जो आपका कर्म करने की का दायित्व है, उस दायित्व से जब आप अपने को अलग पा रहे हैं, तो ऐसे में आप ये पाएं कि आप ऐसे विचार से ग्रसित हो जा रहे हैं जिन विचारों के नाते आपका कर्म प्रभावित हो रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य में योग की बहुत महती भूमिका है। और योग के द्वारा हम अपने मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी जो संवेदनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य है, भावनात्मक अस्थिरता जो जन्म ले रही है विचारों की वजह से, उस भावनात्मक स्थिरता को लाने में योग की बड़ी भूमिका है। उसमें प्राणायाम का अभ्यास करके, ध्यान का अभ्यास करके हम अपने भावनात्मक स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भावनात्मक रूप से हम स्थिर होते हैं तब विचारों में स्थिरता आती है, क्योंकि आप देखिए कि अगर भावनाओं में आंदोलन उत्पन्न हो गया, भाव जगत आपका अस्थिर हो गया, तो फिर विचारों पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। कितना भी कहा जाए कि विचारों को पॉजिटिव सोचिए, लेकिन अगर भाव जगत आपका अस्थिर है तो सकारात्मक विचार ला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और योग में जो आसन के बाद प्राणायाम है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन का मतलब होता है स्थिर सुखमासनम, कि सुखपूर्वक स्थिरता से शरीर को स्थिर रखना, ये है आसन। और इसी आसन के बाद प्राणायाम की सिद्धि होती है। तो प्राणायाम के द्वारा हम मन को नियंत्रित करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि आपके श्वासों की गति जैसी होगी वैसे ही आपके मन की गति भी होगी। अगर आप एक बार अपने को ऑब्जर्व करें तो देखें, जब आप किसी राग और द्वेष में होते हैं तो उस समय आपके श्वासों की गति बदल जाती है, और जब आप किसी विषय व्यक्ति वस्तु के बारे में चिंतन न कर रहे हों, शांत हों, तो उस समय आपके श्वासों की गति बिल्कुल अलग होती है, शांत होते हैं। तो ऐसे में प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन के विचारों को, या मन में विचार करने की या विचारों के आने की जो तीव्रता है, उसे शांत किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग डीप ब्रीदिंग यानी गहरे सांस लेने का अभ्यास

करते हैं, जिसमें श्वास को पूरी गहराई से आप लें, डीप ब्रीदिंग करें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। तो ऐसे आप श्वास पर ध्यान दे करके अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, और विचारों को नियंत्रित करना ही मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति है। एक सूत्र है योग में जिसमें कहते हैं, ध्यान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। यद्यपि ध्यान के बहुत सारे तकनीकी का लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान करने का विषय नहीं है। ध्यान करने की तैयारी हो सकती है, लेकिन ध्यान समस्त कार्यों से अपने को मुक्त करना ध्यान है। इस प्रकार जब आप देखेंगे तो ध्यान से हम मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं, मन के विकार मन को चलायमान बनाते हैं। मन एकाग्र तभी हो सकता है जब मन शुद्ध हो, यानी मन में जो संकल्प लिया उसी संकल्प पर आपका मन केंद्रित हो सके, तो ये समझें एक मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। जब आपका संकल्प बार बार टूटता है, आप बार बार

मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं, मन के विकार मन को चलायमान बनाते हैं। मन एकाग्र तभी हो सकता है जब मन शुद्ध हो, यानी मन में जो संकल्प लिया उसी संकल्प पर आपका मन केंद्रित हो सके, तो ये समझें एक मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। जब आपका संकल्प बार बार टूटता है, आप बार बार विचारों में उलझते जाते हैं, तो ये समझें कि कहीं ना कहीं मन की कमजोरी है। मन जब विचारों की दुनिया में भटकाता है तो वो अनियंत्रित विचार आते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे विचार जो सार्थक नहीं हैं, निरर्थक हैं, वो लगातार हम करते रहते हैं। ये विचार हमें मानसिक रूप से रोगी बनाते हैं। तो इसलिए योग का अभ्यास करके, योग की विद्या का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को स्वस्थ कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए महर्षि पतंजलि एक सूत्र देते हैं, कहते हैं कि सुखी व्यक्ति को देख करके आपके अंदर मित्रता का भाव आना चाहिए और जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति करुणा का भाव आना चाहिए। जो पुण्य कर्म करने वाला है उसको देख करके मुदित होना चाहिए और जो पाप कर रहा है, पाप मतलब ऐसा कर्म कर रहा है जो कर्म नहीं करने योग्य है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम करते हैं। आप देखें अपने व्यवहार को तो आपको लगेगा कि जब आप किसी सुखी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको अपने दुखी होने का पता चलता है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति आपके अंदर करुणा नहीं, दया का भाव उत्पन्न होता है। दया और करुणा में अंतर है। दया एक प्रकार से उसके केंद्र में आप होते हैं, सब्जेक्टिव चिंतन है, लेकिन करुणा एक बहुत विकसित मन का चिंतन है कि जहां आप चाहते हैं, जिसको ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जहां व्यक्ति अपने सुख, अपने दुख और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, वहां जो ऋषि है वो कहता है सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों और सभी दुख से मुक्त हों। तो ऐसे में ये देखें कि जब आप सबके बारे में सोचते हैं ये भाव करुणा का है, लेकिन जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं सुखी हूं तो हो सकता है ये दया हो, या हो सकता है ये आपके अंदर एक स्वयं से जुड़ा हुआ कोई भाव उत्पन्न हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये योग का भाव नहीं है, जुड़ने का भाव नहीं है ये, बल्कि अन्य से अलग होकर के सिर्फ अपने हित के बारे में सोचने का भाव है। जबकि योग आपको जुड़ना और जोड़ना सिखाता है, किससे? समस्त जगत से। योग को अद्वैय ज्ञान कहा गया भारतीय शास्त्र में। अद्वैय ज्ञान का मतलब होता है जहाँ कोई दूसरा न हो। दूसरे का ज्ञान जब आपको होगा तो वहाँ पर आप निश्चित ही आपका व्यवहार वो मानवीय नहीं होगा। एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने कहा अदर इज हेल, सार्त्र, ये उनका सिद्धांत है कि जो दूसरा है वही नरक है। आप जब कभी दूसरे को देखते हैं तो उस समय आपके व्यवहार में द्वैत उत्पन्न होता है और ये द्वैत आपको भी नरक में ले जाता है और अगले के साथ आपके व्यवहार में समरूपता नहीं रहने देता। तो जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्त हो, गीता में कि बुद्धि से युक्त हो, ऐसी बुद्धि से जो बुद्धि समत्व में स्थापित करती है, क्योंकि समत्व में स्थापित होना योग है। गीता में योग को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि योग में स्थित होकर के कर्म तभी हो सकता है जब सिद्ध और असिद्ध, यानी सफलता और विफलता दोनों में सम स्थिति आपकी हो, यानी आपकी बुद्धि में विषमता न आए, तब आप समत्व में स्थित होकर के योग को जान सकते हैं। योग एक ऐसा स्टेट है जहां मन प्रवाह में नहीं, सम में स्थित है। आप ये देखेंगे कि मन की स्वाभाविक जो स्थिति है, जहाँ पर मन बीमार होता है या मन रोगी होता है, वो स्वाभाविक स्थिति राग और द्वेष की है। मन की दो प्रवृत्तियाँ होती हैं, या तो किसी चीज़ को चाहता है, कहीं सुख का उसने अनुभव किया है, तो जहाँ सुख का अनुभव हुआ है उस व्यक्ति और उस विषय में राग का होना स्वाभाविक है, और जहाँ आपको दुख का अनुभव हुआ है उस व्यक्ति, वस्तु और विषय में आपका द्वेष होना स्वाभाविक है। तो मन का प्रवाहित होना इन दो प्रभावों से होता है, मन प्रभावित राग और द्वेष से।
जबकि मन जब सम में स्थित होता है तो वो योग में स्थित होता है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि राग द्वेषात्मक वृत्ति

0: से मन को मुक्त करके समत्व में स्थापित करो। जब मन समत्व में स्थापित होगा तब तुम बुद्ध से युक्त हो सकते हो। जबकि बुद्धि राग द्वेषात्मक भी हो सकती है, लेकिन समत्व बुद्धि से युक्त होने का मतलब योग में स्थित होना, योगस्थ होके कर्म करना, और ये समत्व बुद्धि ही कर्म की कुशलता प्रदान करती है। कर्म की कुशलता राग द्वेषात्मक बुद्धि नहीं करती। राग द्वेषात्मक बुद्धि में हम परिणाम को पाने की तरफ अग्रसर तो हो जाते हैं, लेकिन हम अपने को दुख से मुक्त नहीं कर पाते। दुख से मुक्ति तब मिलती है जब हमारी बुद्धि सम हो, और समत्व ही योग है। और योग की महत्ता को भगवान बताते हुए एक जगह और कहते हैं कि तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन, कि हे अर्जुन, तपस्वी से श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ योगी है, फल की आकांक्षा से युक्त होके कर्म करने वाले कर्म योगियों से श्रेष्ठ योगी है, इसलिए तू योगी बन। तो बार बार जो योग है, ये योग आपके मन की तरफ इशारा है कि मन जो आपका किसी परिणाम को पाने या किसी परिणाम से बचने के लिए जो गतिशील होता है, इस मन को नियंत्रित करके समत्व में स्थित करें, और मन को परिणाम केंद्रित करने के बजाय कर्म केंद्रित करें, क्योंकि कर्म का ही परिणाम बनता है। और कर्म में अगर कुशलता आएगी तो मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा। और अगर कर्म परिणाम के बारे में ही सोचते रहे, तो नेपोलियन ने कहा था कि जो लोग परिणाम के बारे में सोचते हैं वो कदाचित ही कुछ कर पाते हैं। देखिए कितना बड़ा ही घोष है कि जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हम कर्म को दोयम दर्जे का मान लेते हैं, कर्म नहीं करते, सिर्फ परिणाम के बारे। और जितनी विकृतियां आती हैं, हिंसा, राग, द्वेष, ये अभिनिवेश, ये सब कुछ ऐसे कर्म हमें, ऐसे विचार हमें सताने लगते हैं। तो योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है, और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति योग की साधना से ही हो सकती है। और योग विद्या जो मानसिक रोगों को उत्पन्न करने का कारण अविद्या है उसको नष्ट करता है। तो योग और मन के स्वास्थ्य का एक बहुत गहरा संबंध है। निश्चित ही योग का अभ्यास करके हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे शशिकांत मणि त्रिपाठी की वार्ता, योग और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन। शब्द सागर कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए प्रदीप श्रीवास्तव का काव्य पाठ।
2: प्रस्तुत है कविता उड़ान। उड़ती चिड़िया देखकर मन में जागी आस, उड़ती चिड़िया देखकर मन में जागी आस, एक दिन पंख खोलकर मैं उड़ जाऊंगी आकाश। मम्मी बोली बिटिया मत हो तू उदास, और वो दिन बस आने वाला है जब पंख मिलेंगे खास। भैया बोला उड़ने को तो हम सब हैं तैयार, और गगन में होंगे हम सब तेरे बिल्कुल पास। ताई बोली बिटिया ले लो पंखों का उपहार, और जब उड़ने की तूने ठानी तो पूरी होगी आस। बिट्टू भैया ने कहा मेरा पूरा है विश्वास, मेरी फिल्मों में उड़ेगी बन उड़न परी तू खास। धूम हमारी इन फिल्मों की चारों ओर तमाम, और क्या OTT क्या थिएटर पर भीड़ रहेगी खास। जिया लगी तैयारी में शादी जो होना है मेरी, और बोली फिर भी चिंता नहीं रहूंगी तेरे आसपास। चिड़िया सा कैसे उड़ना है मैं बतलाऊं आज, बुआ बोली गले लगाकर लाड़ो आजा मेरे पास। करो फैसला रखो हौसला, सपना पूरा करना है, और पहली बार भले गिर जाए ले फिर से एक सांस। मैं बोली हो गई हमारी सपनों से पहचान, मैं बोली हो गई हमारी सपनों से पहचान, और सब खुश होकर पीठ ठोंक कर बोले ये बात हुई ना साबास। दूसरी कविता है पिता के ऊपर। पिता वट वृक्ष होते हैं, देते हैं खूब से स्नेहमयी छाया, सुरक्षित रखते हैं धूप बरसात से, हम सदा छोटे बने रहते हैं जब तक जीते हैं उनकी छाओं में। फिर अचानक एक दिन वही अनचाहा शाश्वत सत्य कि नहीं रहे पिताजी। उस दिन छोटे पूछते हैं हमसे क्या कैसे करना है, और बेख्याली में मुंह से निकल जाता है बाबूजी से पूछो। छोटे एकटक चुपचाप देखते रह जाते हैं हमें, और अचानक और अचानक हम

बड़े हो जाते हैं। तीसरी कविता है मेरी, जिंदगी एक अवलोकन। जिंदगी एक अवलोकन, इसके अंतर्गत जिंदगी क्या है क्या बताऊँ मैं, जिंदगी क्या है क्या बताऊँ मैं, किसी अंधे का ख्वाब हो जैसे, या किसी सूदखोर बनिए का उलझा उलझा हिसाब हो जैसे। जिंदगी एक सफ़र है, हम मुसाफिर हैं। जिंदगी एक सफ़र है, हम मुसाफिर हैं। हर कदम तलाशे मंजिल हो जैसे, हर कदम तलाशे मंजिल हो जैसे, और कहीं राह ना भटक जाएं यूं ही बिखरा बिखरा ख्वाब हो जैसे। जिंदगी फूल है ये गुलशन का, जिंदगी फूल है ये गुलशन का, महकती बसंती बयार हो जैसे, और नज़र लगे ना किसी पतझड़ की निखरा निखरा सिंगार हो जैसे। जिंदगी है कड़ी तपस्या सी, पाना जिसका साधना हो जैसे, और फल मिले मीठे इसके आंगन में प्यारा प्यारा उपहार हो जैसे। जिंदगी किरण है सूरज की, जिंदगी किरण है सूरज की, फैले जिससे उजियार हो जैसे, और दुख का अंधियारा सिमट ही जाए, सुलझा सुलझा संसार हो जैसे। जिंदगी क्या है क्या बताऊँ मैं, किसी गूंगे की आवाज़ हो जैसे। जिंदगी क्या है क्या बताऊँ मैं, किसी गूंगे की आवाज़ हो जैसे, और किसी दिल को गहरे छू जाए, महका महका खुमार हो जैसे। जिंदगी पर एक और कविता है कि जिंदगी के गीत गाते हैं सभी, जिंदगी के गीत गाते हैं सभी, मौत को भी गुनगुनाना चाहिए, और नफ़रतें तो ज़िंदगी के साथ हैं, नफ़रतें तो ज़िंदगी के साथ हैं, मौत पर सबको भुलाना चाहिए। हिसाब है आए गए का ज़िंदगी, हिसाब है आए गए का ज़िंदगी, मौत पर सब चुकता हो जाना चाहिए, और जब तक जिए ये ज़िंदगी संगीत थी, जब तक जिए ये ज़िंदगी संगीत थी, मौत पर बस यह तराना चाहिए, और ज़िंदगी के बाद जिंदा है यदि, ज़िंदगी के बाद जिंदा है यदि रहना, तो काम बिरला करके जाना चाहिए, और ज़िंदगी समझो कि एक वरदान है, ज़िंदगी समझो कि एक वरदान है, व्यर्थ क्यों इसको गंवाना चाहिए। और दुनिया तो रहेगी हम रहें या ना रहें, दुनिया तो रहेगी हम रहें या ना रहें, मौत के बाद सबको याद आना चाहिए, और निशानी सांस का चलना बताता ज़िंदगी बाकी, निशानी सांस का चलना बताता ज़िंदगी बाकी, और सांस को भी थमने का एक बहाना चाहिए। और चल दिए चुपचाप, चल दिए चुपचाप रुखसत इस जहां से, चल दिए चुपचाप रुखसत इस जहां से, आओगे कब यह तो बताना चाहिए, और ज़िंदगी के बाद तय है मौत का होना, जब कभी आकर पधारे मुस्कुराना चाहिए। और शिकवे के लिए सब छोड़ आगे बढ़ो, शिकवे के लिए सब छोड़ आगे बढ़ो, मौत पर बेवाक खुशियां मनाना चाहिए, और कुछ शान से जी कर गई ये ज़िंदगी, कुछ शान से जी कर गई ये ज़िंदगी, जाते जाते राज सबको बताना चाहिए, और जब गए वो उजाला भरपूर था मगर, जब गए वो उजाला भरपूर था मगर, क्यों हुआ ये अंधेरा जान जाना चाहिए। एक और कविता ज़िंदगी के ऊपर है अलग, कि सांसों का चलना जीवन है, सांसों का चलना जीवन है, और सांस रुकी तो कहाँ ये तन है, सांसों का चलना जीवन है, सांस रुकी तो कहाँ ये तन है, और जीवन संग उल्लास उमंग है, वरना मातम ही मातम है। दर्द पराया वो क्या जाने, ना चिंतन ना मंथन है, दर्द पराया वो क्या जाने, ना चिंतन ना मंथन है, और संभावों से देखे सबको, क्या कोई ऐसा भी मन है। आदर्शों का ओढ़ मुखौटा, आदर्शों का ओढ़ मुखौटा, नया ठगाई का उपक्रम है, और मन मैला है सोच कसैली, मन मैला है सोच कसैली, ये कैसा अपनापन है। और हम दोनों जब साथ साथ हैं, हम दोनों जब साथ साथ हैं, लगे रोज अकेलापन है, और समृत को नहीं दोष घुसाई, जंगल जीवन का नव दर्शन है। अगली कविता है, जिंदगी एक पहेली कहें सब, जिंदगी एक पहेली कहें सब, बूझते जिसको जिंदगी आती, बूझते जिसको जिंदगी आती, और खुशनसीब मान ले खुद को जिनको जिंदगी समझ में आती, बूझना जिंदगी जिसको है बाकी। अखबारों की पहेलियां भरते थे, अखबारों की पहेलियां भरते थे, इनाम जीते थे इनको हल करके, और बीत गई जिंदगी इसी उलझन में, सवाल अब भी वैसे ही हैं बाकी। और देखा जब दीन के दुखों को तो, देखा जब दीन के दुखों को तो,
उसकी हर कमी खटकती।

0: में और उनको भी देखा नज़रों ने जिनके पाने को कुछ रहा ना बाकी। जिंदगी समझ ना आया ढंग तेरा, जिंदगी समझ ना आया ढंग तेरा, कोई हंसता है तो कोई रोता है। जिंदगी समझ ना आया ढंग तेरा, कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई भी मन ना मायूस हो कभी, ये भेदभाव क्यों अब तक है बाकी। और बहुत सारे फ़लसफे हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे फ़लसफे हैं दुनिया में, तुझको लेकर कई बयान हुए। बहुत तेरे फ़लसफे हैं दुनिया में, तुझको लेकर कई बयान हुए, और कुछ ने माना सजा तुझको तो, कुछ ने माना सजा तुझको तो, और कुछ ने कहा है गुणगान बाकी। और ज़िंदगी का मज़ा लिया हर पल, ज़िंदगी का मज़ा लिया हर पल, तूने एहसान पर एहसान किए, और ज़िंदगी तुझसे ना गिला शिकवा, ज़िंदगी तुझसे ना गिला शिकवा, नहीं तुझसे कोई अब वरदान बाकी। एक और कविता है कि दिल को सुकून है रूह को सांस है, दिल को सुकून है रूह को सांस है, और ऐसी भी वैसी भी ज़िंदगी लाजवाब है। दिल को सुकून है रूह को सांस है, और ऐसी भी वैसी भी ज़िंदगी लाजवाब है। देसी है या फिरंगी ज़िंदगी लाजवाब है। खो गया या बच रहा फ़िक्र कहाँ है, खो गया या बच रहा फ़िक्र कहाँ है, बचा ना बचा ज़िंदगी लाजवाब है। वाजिब प्यार, वाजिब प्यार अपनों का जाहिर बेरुखी भी, वाजिब प्यार अपनों का जाहिर बेरुखी भी, कैसा हिसाब अब ज़िंदगी लाजवाब है। गम और खुशी अलग, गम और खुशी अलग, एहसास अलग है, गम और खुशी अलग, एहसास अलग है, और दिल की सुनी जितनी ज़िंदगी लाजवाब है। अच्छे बुरे जैसे भी पल गुजर ही गए हैं, अच्छे बुरे जैसे भी पल गुजर ही गए हैं, क्यों है ये सवाल ज़िंदगी लाजवाब। रोटी गोल है टेढ़ी मेढ़ी है मिली तो है, रोटी गोल है टेढ़ी मेढ़ी है मिली तो है, भूख मिटा दे तो ज़िंदगी लाजवाब है। तजुर्बा जिसका सच भी उसी का, परेशान क्यों जब ज़िंदगी लाजवाब है। किससे कहानी बने सब अपने ही तो हैं, अपने ही हैं खास, ज़िंदगी लाजवाब है। ख्वाबों में ख्यालों में या रूबरू ही हैं, ख्वाबों में ख्यालों में या रूबरू ही हैं, है हंसी एहसास ज़िंदगी लाजवाब है। और जिसका नहीं जवाब वही लाजवाब है, यही तो है इजहार ज़िंदगी लाजवाब है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रदीप श्रीवास्तव का काव्य पाठ। इसके साथ ही शब्द सागर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: मनु भाई मोटर चली पाम पाम पाम, मनु भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
3: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
4: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें,
3: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
4: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
3: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
4: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
3: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
4: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
3: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
4: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
3: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
4: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
1: DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 11वीं कड़ी।
5: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी के पकड़े जाने पर सभी लोग हकीकत जानने के लिए ठाकुर साहब के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। ठाकुर उन्हें बताता है कि भूख की मारी नारायणी इतनी रात गए उनसे पैसे मांगने आई थी।

यशवंत नारायणी की ओर से बलबीर स्वामी से माफी मांगता है और नारायणी को घर छोड़ने जाता है। कंपनी अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी शर्तों पर बाहर से नए मजदूरों को बुलाती है। शांत पड़ी मशीनों का शोर फिर से शुरू हो जाता है। ये देखकर हड़ताली मजदूरों के सीने पर सांप लौटने लगता है। यूनियन के नेता शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री से उन्हें पता चलता है कि लेबर इंस्पेक्टर मुंशीगंज के किसानों को मजदूरों को अनाज न देने के लिए भड़का रहा है। फंड का इंतजाम करने के लिए शास्त्री कंपनी के सीमेंट के ट्रक को लूटने की सलाह देता है। उधर कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस लगाया जाता है, जिसमें हड़ताल को अवैध करार देते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात को मान्यता देने का उल्लेख होता है। नारायणी अपने मुन्ना के साथ तरबूज को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती है, जिसे उसने कटीली झाड़ियों के नीचे छिपा दिया था। साई नदी के तट पर पहुंचने पर नारायणी को बसुमती मिलती है, जो कि तरबूज खा चुकी होती है। बसुमती नारायणी को बताती है कि ठाकुर साहब नपुंसक हैं और उसे उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं है। ये सुनकर नारायणी खुश होती है। अब आगे।

0: शास्त्री जी, अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो हमारे हित में अच्छा नहीं होगा। मजदूर हमारे खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं।
1: उन भूखे नंगे मजदूरों की ये मजाल की हमारे खिलाफ विद्रोह करें? क्या वह जानते नहीं कि हम उनके लोकल लीडर हैं?
0: बात को समझने की कोशिश कीजिए शास्त्री जी। ये वही भूखे नंगे मजदूर हैं जिनके बल पर आपका राजनैतिक अस्तित्व टिका हुआ है। अगर ये भड़क गए तो कोई आपको कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा।
1: बलबीर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
0: अरे कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
1: ठीक है ठीक है, मैं कल ही कंपनी के अधिकारियों से मिलता हूं। हड़ताली मजदूरों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मेरा राजनीतिक अस्तित्व भी बचा रहेगा। भाई अगली बार विधानसभा का चुनाव जो लड़ना है मुझे, 4000 वोट बहुत मायने रखते हैं बलबीर, बहुत मायने। देखिए ठाकुर साहब, आपकी कंपनी ने अभी अगस्त महीने में ही दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त करने का नोटिस दिया था, और अब फिर? अरे भाई ये कहां का न्याय है? कुछ तो मजदूरों के हित की सोचिए।
2: देखिए शास्त्री जी, मजदूरों को तभी बर्खास्त किया जाता है जब कंपनी के पास उनके लिए कोई काम नहीं होता, और फिर हड़ताल का इसलिए भी कानूनी तौर पर समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि सन 75 में हुए समझौते पत्र के अनुसार हड़ताल जायज नहीं है।
1: क्या इस समझौता पत्र पर मजदूर यूनियन की सहमति भी शामिल है ठाकुर साहब?
2: देखिए पिछले दिनों यूनियन और अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी।
1: ठीक,
2: इस बैठक में प्रोजेक्ट और मजदूरों की छटाई के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस बैठक के उद्देश्य लिखित रूप से तैयार करने और हस्ताक्षर करने तक यूनियन के नेता बहाना बनाकर चले गए थे।
1: क्या
2: बाद में हमें खुद सब कुछ तैयार करके अधिकारियों के पास भेजना पड़ा? अब आप देख ही रहे ना कि यूनियन हमें किस तरह निशाना बना रही है।
1: अब हमें क्या पता ठाकुर साहब कि यूनियन कंपनी को किस तरह निशाना बना रही है, आप बताइए।
2: यूनियन हमारी इसी चिट्ठी को निशाना बनाकर भोले भाले मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। हमेशा अधिकारियों के साथ कुछ बेबुनियाद विषय को लेकर बहस और झगड़ा करती रहती।
1: देखिए देखिए ठाकुर साहब, आप और आपकी कंपनी मजदूर यूनियन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अरे आपकी कंपनी मजदूर हितों की भक्षक है जबकि यूनियन रक्षक है। कंपनी हितों को साधने और मजदूरों को शोषण करने बाबत ही आप ऐसा कर रहे हैं, सब जानते हैं
2: हम। नहीं नहीं शास्त्री जी, हमारे पास अपनी बात के पक्ष में पर्याप्त तर्क हैं।
1: कैसे तर्क?
2: मिसाल के तौर पर मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों और रोज की मजदूरी करने वालों की सुरक्षा की मांग की गई है, जबकि सन 75 के समझौते पत्र के अनुसार कंपनी के पास काम न हो तो मासिक वेतन पाने वालों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है और दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया जाता है।
1: इसका मतलब ठाकुर साहब कि कंपनी ये मानती है कि इस समझौता पत्र को नकार कर यूनियन ने कोई गैर कानूनी काम किया है।
2: जी हाँ, इसके अलावा बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखे जाने की मांग भी बिल्कुल निरर्थक है।
1: अच्छा जी, वो किस महीने में?
2: सन 47 के औद्योगिक

0: आवाज अधिनियम के अनुसार यूनियन के साथ समझौता न होने पर बुजुर्गों को भी निकाला जा सकता है। इस बारे में कंपनी के पास 75 में बनाया गया कानूनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है।
1: तो आप मुझे कानूनी एग्रीमेंट का डर दिखा रहे हैं ठाकुर साहब? मैं भी लीगल फाइट करवा सकता हूँ, लीगल फाइट। अरे आपने यूनियन को समझ क्या रखा है?
0: कैश में ना आइए शास्त्री जी, 75 के ही राजीनामे के अनुसार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले मजदूरों को तुरंत नए विभाग में काम मिल सकता है, लेकिन उनका वेतन और अन्य सुविधाएं स्थानीय परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेंगी। कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।
1: क्या कहा आपने? क्या कहा? कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती?
0: जी हाँ,
1: जिला और केंद्र ने जो कानून बनाए हैं, क्या उन कानूनों का कंपनी पालन करती है? कंपनी को दिहाड़ी मजदूरों और मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों की कोई चिंता है या नहीं?
0: आप तो खामखा भड़क रहे हैं शास्त्री जी।
1: अरे मैं भड़कू नहीं तो और क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे तुम्हारी सारी जायज नाजायज बातों को मानता रहूं।
0: देखिए शास्त्री जी, माना कि आप राय बरेली के लोकल लीडर हैं, आपका मान सम्मान और दबदबा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करें।
1: ऐसा मैंने क्या कह दिया?
0: अभी तक तो नहीं किया, पर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी बर्खास्त मजदूरों को जिला और केंद्र के कानून के अनुसार पैसा देती रहती है। नियम अनुसार उन्हें दूसरी जगह काम पर भेजते समय रेल और बस का किराया भी मिलता है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बर्खास्त मजदूरों को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह काम पर भेजा जाए।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही है ठाकुर साहब! क्या सबूत है आपके पास ठाकुर साहब?
0: अच्छा अच्छा, आप सबूत की बात करते हैं
1: जी,
0: तो ठीक है, सुनिए। पुराने दिहाड़ी मजदूरों को माधोपुर कंपनी का काम खत्म होने के बाद बर्खास्त किया गया था
1: जी,
0: लेकिन वो मजदूर अब अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। इन लोगों को काम छूटने पर वेतन के अलावा 300 रुपए अलग से दिया जाएगा।
1: बड़ा एहसान करेंगे आप, बड़ा एहसान करेंगे ठाकुर साहब। सारी जिंदगी आधी पगार देकर काम लेने वाली कंपनी 300 रुपल्ली पकड़ाकर मजदूरों का भला करने चली है। वाह,
0: देखिए शास्त्री जी, कंपनी दूसरी कंपनियों की अपेक्षा मजदूरों को सबसे अधिक वेतन देती है, फिर दूसरी कंपनियों में भी तो मजदूरों को बर्खास्त किया जाता है। कंपनी हमेशा बर्खास्त मजदूरों को नए विभाग में बहाल करती आई है।
1: ठाकुर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि बर्खास्त कितने मजदूर होते हैं और बहाल कितने होते हैं? ब्यौरा तो होगा आपके पास।
0: देखिए, ये कंपनी का निजी मामला है, बाहरी लोगों के सामने इन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता।
1: अरे क्या करेंगे खुलासा आप? क्या खुलासा करेंगे आप? मुझसे सुनिए आप, बर्खास्त होते हैं 1000 मजदूर तो बहाल होते हैं सिर्फ 100-200 मजदूर, और वो भी सिर्फ कंपनी के चहेते। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं?
0: देखिए, मैं आपसे अधिक बहस नहीं करना चाहता। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि कंपनी ने पुराने मजदूरों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाई है। जिन मजदूरों ने 20 साल से अधिक कंपनी के लिए काम किया है, उन्हें स्वैच्छिक अवकाश की सुविधा दी गई है। ऐसे मजदूरों को ग्रेच्युटी स्कीम की सुविधा भी दी जाती है।
1: चलिए ठाकुर साहब, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि यूनियन की डीए बंटवाने की मांग पर आपका क्या नजरिया है?
0: ठीक है, यूनियन की इस मांग से कंपनी किसी हद तक इत्तेफाक रखती है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 महीने के बाद ही मिल पाएगा, तभी इस पर अमल हो सकता है। इसीलिए यूनियन की ये मांग भी निरर्थक।
1: और बोनस मजदूरों को कब दिया जाएगा, ये बता सकते हैं आप?
0: देखिए, कंपनी ने मजदूरों को पहले ही बता दिया है कि 76-77 का बोनस 78 के मार्च महीने के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि तभी इसके नफा नुकसान का हिसाब तैयार किया जाएगा।
1: वाह वाह ठाकुर साहब, बहाना बनाकर टालने में बहुत पारंगत हो गए हैं आप, लेकिन मेरा नाम भी शास्त्री है ठाकुर साहब, शास्त्री। अब आप ग्रेचुटी की मांग को भी किसी बहाने से खारिज कर देंगे क्यों?
0: देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 20 साल से कंपनी की सेवा करने वाले खास मजदूरों को ही यह सुविधा दी जाती है।
1: मैं कंपनी के खास मजदूरों, नहीं, खास चमचों या 20 साल पुराने मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं ठाकुर साहब, मैं बाकी के उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जिन पर कंपनी की टेढ़ी नजर है।
0: देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों के लिए बने ग्रेच्युटी एक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्ट कंपनियों पर लागू नहीं होता।
1: हाँ ठाकुर साहब, हमने तो सोचा था कि हम बातचीत के जरिए किसी सार्थक निर्णय पर पहुंच सकेंगे, लेकिन ठाकुर साहब,
2: आपकी लफाजी की वजह से बात बन नहीं सकी।

0: चलते चलते आपको एक बात बता दूं ठाकुर साहब।
1: क्या?
0: भले ही मजदूरों को शहीद होना पड़े, भले ही साई नदी में पानी की जगह रक्त का उफान बहे, लेकिन हड़ताल हड़ताल जारी रहेगी ठाकुर साहब, याद रखिएगा, हड़ताल जारी रहेगी।
1: क्या?

0: ए बाबू, ए बाबू, कुछ खाने को देना, बहुत भूख लगी है।
1: अरे
0: कुछ खाने को।
1: कौन है रे तू? कहाँ से आई है?
0: मैं दलितों की बैरक में रहती हूँ बाबू, कुछ खाने को देना, पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है।
1: अच्छा, तो तू यूनियन के साथ है?
0: बातें ना बना बाबू, रोटी का कोई टुकड़ा है तो देना, भूख लगी है।
1: हाँ, अरे अरे अरे, तू जवान है, खूबसूरत है, अरे तू भूखी क्यों मरती है? अरे मुझसे कहना, मैं तुझे यहाँ से दूर ले चलूंगा। हाँ सच, मेरे साथ रहेगी तो फिर कभी भूखी नहीं रहेगी।
0: सच सच बाबू, तू मुझे रोज खाना खिलाएगा?
1: हाँ, मैं सच कहता हूँ, खाना भी खिलाऊंगा और पहनने के लिए नए नए कपड़े भी दूंगा।
0: सच बाबू, तू कितना अच्छा है। मेरा बाबू और दादी ना तो मुझे खाने को देते हैं, नए नए कपड़े दिलवाते हैं।
1: ओह, तभी तो तेरा चेहरा कुमला गया है। देख तो, इस जवानी में तेरा रंग कैसा काला हो गया है। अच्छा अच्छा, ये ले, 5 रुपए ले ले ले ले। अरे रख ले ना, कहीं से कुछ खरीद कर खा ले।
0: बाबू बाबू, तेरा ही एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे अरे सुन सुन, अपना नाम तो बता दे।
0: मेरा नाम पार्वती है बाबू।
1: हाँ तो पार्वती, कल शाम को स्टेशन पर मिलियो। हाँ, मैं तेरा इंतजार करूंगा, आइएगा।
0: अच्छा आऊंगी बाबू।

0: नारायणी।
1: आओ काकी।
0: हाँ भगवान तेरा भला करे नारायणी, जो तू हमको मिल गई। अच्छा पहले ये बता कि तेरा मर्द कैसा है?
1: कैसे होंगे काकी, मौत की राह देख रहे हैं।
0: चुप करनी गोड़ी, है क्या अनाप शनाप बक रही है?
1: तुम बताओ काकी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी?
0: अरे हाँ, तुझे एक बात बतानी थी।
1: कौन सी बात?
0: होशियार रहे नारायणी, होशियार। तुझे नहीं मालूम कैसे भयानक दिनों का सामना करना पड़ सकता है?
1: भयानक दिन? मैं कुछ समझी नहीं काकी।
0: अरे हम मुंशीगंज में काम के लिए गए थे, हम बीमार लोगों के कपड़े धो सकते हैं, यहाँ तक कि 5 महीने का गर्भ।
1: राम राम राम राम राम। क्या हुआ काकी, क्या कहीं काम नहीं मिला?
0: अरे वो काम की क्या कहूँ, बस पीने का पानी मांगा तो गाली दे दी, कुत्ते पीछे छोड़ दिए। देख नारायणी, तेरी गोद में एक नन्ना बच्चा है, जब छटनी होगी तो जेठ महीने की लू में तू राय बरेली की सड़क पर बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ फिरेगी, और फिर तेरा वो बीमार मरद, उसको भी घसीटना पड़ेगा, तो क्या करेगी तू? अरे हम तो जानते थे एक भी पैसा न बचा होगा। तू नहीं जानती नारायणी, वो दोनों शैतान झूठी गवाही देने के लिए बदनाम हो चुके हैं। हाँ अच्छा चल, छोड़ उन दोनों को, अपने मतलब की बात सुन।
1: हाँ सुन ही तो रही हूँ तुम्हारी बात।
0: सुनने में आया है कि रायबरेली शहर में कोई कोई लाडी कारपेट और कास आयरन कंपनी आई है, कंपनी वाले जगदीशपुर में कैंप बना कर रहेंगे। अरे तुझे वहाँ सफाई का काम मिल जाएगा।
1: अच्छा तुम्हें कैसे पता काकी?
0: यूनियन का एक आदमी मिला था हमको, वो कह रहा था कि पक्का मकान बनने तक अफसर लोग तंबू में ही रहेंगे,
1: लेकिन

0: अरे उधर देख मदन भैया, उधर देख, एक रोटी के लिए चार कुत्ते आपस में किस तरह लड़ रहे हैं।
1: रोटी? हाँ, रोटी ही तो है वो। बामू भैया, क्यों ना मैं कुत्तों से रोटी छीन लूं।
0: अब मरना है क्या? देखा नहीं कितने खतरनाक कुत्ते हैं, काट लिया तो पेट में ये बड़ी बड़ी सुइयां लगानी पड़ेंगी।
1: सुइयां तो तब लगेगी ना जब जब मैं जिंदा रहूंगा, भूख से तो वैसे ही एक दो दिन में मर जाऊंगा बाबू भैया।
0: मतलब
1: तो मैं पहले ही हो रहा हूँ, कब कश खाकर गिर पड़ूं पता नहीं।
0: ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है।
1: तो ठीक है तुम यही खड़े रहो, हाँ मैं कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर लाता हूँ।
0: भूखे कुत्तों के मुंह से भला आज तक कोई रोटी छीन सका?
1: कुत्ते ही तो है ना, शेर तो नहीं। फिर भूखा इंसान तो शेर के मुंह का शिकार छीन लाता है। मैं तो चलता हूँ।
0: अरे अरे सुन तो, मदन मदन, अरे कहाँ जा रहा? अरे इधर आ जा, बंद कर कुत्ते।
2: अरे बाप रे, लगता है कुत्ते ने उसे जान से मार डाला। अरे अरे अरे, ये कुत्ते तो भाग गए,
0: रोटी भी ले गए।
2: इसको जाकर देखता हूँ। मदन, अरे हाँ मदन मदन,
0: ये हिलडुल क्यों नहीं रहा? मदन मदन मदन,
2: अरे अरे इसकी तो सांस ही बंद हो गई है। मार डाला, अरे मार डाला।

0: बाबू बाबू अरे कहाँ भागा जा रहा है बाबू? अरे बाबू रुक तो, अरे बता के जा के किसने किसको मार डाला?
1: कुत्तों ने मतलब को मार डाला, कुत्तों से रोटी छीनने वाले मतलब को कुत्तों ने मार डाला, मतलब को कुत्तों ने मार डाला।
0: कुत्तों के मुंह से रोटी?

जिस दिन से ठाकुर साहब की घर वाली घटना घटी है तब से यशवंत बाबू मुझसे मिलने नहीं आए। पहले तो इनका हाल चाल पूछने आ जाया करते थे, अब वो भी नहीं। शायद मैं उनकी नजरों में गिर गई हूं। उन्हें मेरे चरित्रहीन होने का विश्वास हो गया है। हो भी क्यों ना, परिस्थितियां ऐसी थी। उस पर मेरी चुप्पी भी कांटा बनकर उनके सीने में गड़ रही होगी। वैसे भी यशवंत बाबू सज्जन आदमी है, हमेशा मेरी मदद की। पर हमेशा मेरी मदद क्यों की? लिच्छू, शंभू या बसुमती काकी की क्यों नहीं की? कहीं

0: नहीं वो मुझे वो मुझे जाने तो नहीं लगे हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, एक सुहागन को पर पुरुष के विषय में सोचने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है।
1: नारायणी, हरि ओम नारायणी।
0: कौन तुम?
1: हाँ मैं कालू राम, यूनियन का सचिव।
0: तुम मेरे पास क्यों आए हो?
1: मैं अरे मुझसे तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती। ये दूध मुहा बच्चा, बीमार पति और उस पर तेरी गरीबी, हाय हाय हाय। हरि नारायणी, मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मदद
0: मदद कैसी मदद कालूराम?
1: अरे क्या बसुमती ने नहीं बताया, लूडी कारपेट कंपनी के अफसर मुंशीगंज में ही रहेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के माध्यम से सफाई वालों की नियुक्ति होने में तो भी बहुत समय लगेगा। हाँ, अगर तब तक तुम चाहो।
0: बसुमती काकी ने मुझे बताया तो था।
1: नारायणी, आजकल तू ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने नहीं जा रही है? क्यों क्यों नहीं जा रही?
0: वैसे ही।
1: सुन नारायणी, ठाकुर साहब आजकल बीमार है, कुछ दिन के लिए कारपेट कंपनी के तंबू में आकर रहेंगे। हाँ, अगर तू चाहे तो उसकी सेवा में आ सकती है। हाँ, हाँ, समझ रही है ना तू?
0: ठाकुर साहब कारपेट कंपनी वालों के तंबू में क्यों रहेंगे वो?
1: अरे नारायणी, तू नहीं जानती, कारपेट कंपनी के साहब के साथ ठाकुर साहब की दोस्ती है। बहुत ही गहरी दोस्ती। इलाज करवाने के लिए ठाकुर साहब ने वहां रहने का मन बनाया है। अगर तू चाहे तो दो दिन बाद चुपचाप पुरानी सड़क से आकर अपना काम शुरू कर दे। हाँ, हाँ।
0: लेकिन वो यूनियन के आदमियों ने देखा और मारपीट की तो?
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कोई डर नहीं। हाँ हाँ। वो क्या है, कारपेट कंपनी के दरवाजे पर दो बंदूकधारियों का पहरा रहेगा। बोल है, क्या कहती है? अरे बोल ना नारायणी, बता मैं ठाकुर साहब को क्या जवाब दूं? बोल बोल बोल बोल बोल।
0: कालूराम, पहले तुम मुझे ये बताओ कि यूनियन के सचिव होकर तुम ठाकुर साहब का साथ क्यों दे रहे हो?
1: हरि नारायण, छोड़ इस बात को, ये अंदर की बात है। हाँ, अंदर की बात, तू अपनी बात बता। ठाकुर साहब ने विशेष रूप से मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
0: मुझे सोचने के लिए समय चाहिए।
1: समय चाहिए, ठीक है। तो मैं दो दिन बाद फिर आऊंगा।
0: नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद आऊंगी।
1: खुद आएगी?
0: हाँ
1: ठीक है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है।
0: हाँ ठीक है।
1: अच्छा।

0: यहाँ घुटनों में मुँह छिपाए क्यों बैठा? अब चल जुलूस में हमारे साथ चल।
1: नहीं जाना मुझे जुलूस में, नहीं शामिल होना इस हड़ताल में। मुझे मेरी हालत पर अकेला छोड़ दो।
0: तू रो रहा है भिगू? अरे क्या हुआ तुझे? देख भिगू, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, मुझे बता क्या बात है।
1: मैं बर्बाद हो गया यशवंत, मैं बर्बाद हो गया।
0: क्या?
1: मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं कहीं का नहीं रहा यशवंत, कहीं का नहीं रहा।
0: भृगु देख तू रो मत, चुप हो जा। जो भी बात है मैं तेरे भाई जैसा हूँ, तू मुझे साफ साफ बता।
1: पार्वती?
0: हाँ हाँ, क्या हुआ पार्वती को?
1: पार्वती मेरे मुंह पर काली पोत कर भाग गई।
0: क्या?

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार, इसकी 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है, हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर अब हमारी सभा आरंभ होती है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर फ्रांस के एवेन शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। एवेन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा संसद इस लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए एक सशक्त मंच है। ये युवाओं में नेतृत्व, कर्तव्य बोध, तार्किक सोच और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने जैसे मूल्यों को विकसित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे

0: दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं और मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

महकती शाम का पैगाम लेकर आए हैं, कुछ नए ख्वाब और अरमान लेकर आए हैं। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और साथ रहिए, क्योंकि हम आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना। तो आइए इस सुहानी शाम में संगीत के रंग घोलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म तारा रंपम से। इस गीत के गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं विशाल शेखर, और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है के और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों कहते हैं घर से दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अपनों के लिए देखे जाते हैं। कोई शहर बदलता है तो कोई देश, पर हर महीने घर पहुंचने वाली मेहनत की कमाई कई बड़े सपनों को जिंदा रखती है। जी हाँ दोस्तों, दूरियां सिर्फ जगहों की होती है, दिलों की नहीं। घर से दूर रहकर काम करने वाला हर युवा अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार की उम्मीदों को भी साथ लेकर चलता है। उसकी कमाई जब घर पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते, बल्कि माता पिता के चेहरे की मुस्कान, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के बेहतर भविष्य का सहारा बन जाती है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस यानी अपने परिवार के लिए पैसे भेजना। दुनिया भर में लाखों लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में अपने घरों से दूर रहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार तक पहुंचाते हैं। यही मदद किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी बुजुर्ग के इलाज, किसी छोटे काम और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा बनती है। साथियों, इस वर्ष की थीम है रिमिटेंसेस फॉर रूरल रिजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी पारिवारिक सहयोग के जरिए गाँव को मजबूत बनाना, नए कामों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। आज का युवा सिर्फ अपना भविष्य नहीं बना रहे, बल्कि अपने परिवार और समाज की तरक्की में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अपनों के लिए किया गया हर छोटा प्रयास कई बड़े सपनों को सच कर सकता है, क्योंकि अपनों के लिए भेजी गई हर छोटी सी मदद सिर्फ जरूरत ही पूरी नहीं करती, बल्कि सपनों को उड़ान भी देती है। इसी सोच और अपनेपन के साथ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस। तो दोस्तों, बातों का यह सिलसिला थोड़ी देर के लिए यहीं थामते हैं और सुरों की दुनिया में एक बार फिर से दस्तक देते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत, फिल्म दे दनादन से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

दोस्तों कहते हैं सफर की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि उस सफर को समझदारी से तय करने में होती है। जरा सी सावधानी जहां जीवन को सुरक्षित बनाती है, वहीं

दोस्तों कहते हैं सफर की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि उस सफर को समझदारी से तय करने में होती है। जरा सी सावधानी जहां जीवन को सुरक्षित बनाती है, वहीं छोटी छोटी अच्छी आदतें समय पर पैसे और ईंधन तीनों की बचत कर सकती है। दोस्तों आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वाहन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन बढ़ती ईंधन की खपत और प्रदूषण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में स्मार्ट ड्राइविंग केवल एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमारी जेब, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य तीनों से जुड़ी हुई है। स्मार्ट ड्राइविंग का मतलब है जल्दबाजी नहीं, समझदारी। अक्सर हम तेज रफ्तार, बार बार ब्रेक लगाने या बिना जरूरत वाहन चालू रखने जैसी आदतों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी छोटी बातें ईंधन की खपत बढ़ा देती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दोस्तों वाहन की समय पर सर्विस, सही हवा वाले टायर और संतुलित गति से चलने जैसी आदतें ईंधन की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतना ही नहीं, छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या फिर साइकिल का उपयोग करना और एक ही दिशा में जाने पर कार पुलिंग या सार्वजनिक परिवहन को अपनाना भी एक समझदारी भरा कदम है। इससे न केवल ईंधन की बचत होती है बल्कि सड़क पर वाहनों की भीड़ और प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि दोस्तों आज का युवा बदलाव की ताकत रखता है और उसकी छोटी छोटी अच्छी आदतें समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। स्मार्ट ड्राइविंग अपनाकर हम न केवल अपने खर्च को कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि समझदारी से किया गया हर सफर सिर्फ ईंधन की बचत नहीं करता बल्कि एक सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर भविष्य की राह भी बनाता है। इसीलिए सुरक्षित चलें, स्मार्ट चलें और अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर कल का निर्माण करें। तो चलिए दोस्तों अब सुनते हैं फिल्म संगीत में अगला फिल्मी गीत फिल्म कलंक से। इस गीत में स्वर हैं अरिजीत सिंह के, इस गीत के संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। योग्यता है उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप और अधिक जानकारी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रोजगार सूचना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म बागी 2 से जुबिन नौटियाल की आवाज में।

दोस्तों, यूं ही मन में ख्याल आया कि जून के महीने के इस मौसम की थोड़ी सी बात कर ली जाए। जून के महीने की शामों का अपना ही रंग होता है। दिन भर की धूप के बाद चलती हल्की हवाएं और आसमान में बिखरे बादल मन को एक अलग सा सुकून दे जाते हैं। और साथियों, सच में ऐसे ही छोटे छोटे मौसमी रंग हमारी शामों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अब दोस्तों देखिए ना, आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। अब चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मौसम से, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे अपनी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना को दीजिए इजाज़त, और चलते चलते आपको एक आखिरी गीत सुनवाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सबसे पहले सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है सौदागर।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बार फिर आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को, जिसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है रामलखन।

मिस्टर इंडिया, इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं नगीना फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की इस गीत को शुरू में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। एवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा संसद इस लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए एक सशक्त मंच है। ये युवाओं में नेतृत्व, कर्तव्य बोध, तार्किक सोच और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने जैसे मूल्यों को विकसित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं और मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे, कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले।

0: श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
1: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
1: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ

0: भोजन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर लें, 8800-440-5559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: तो सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी

0: खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जोंसी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जोंसी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।

0: बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
2: 15, 40
1: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
2: 13, 12, 11 ओह
1: जॉन्सी,
2: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
2: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
2: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
2: सू, Only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
2: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
3: हाँ हाँ,
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओह जॉन्सी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए, तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: 2 ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर

0: बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
1: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई जॉनसी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉनसी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉनसी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉनसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉनसी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉनसी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ
3: हाँ,
4: मैंने देखा, मैंने देखा जॉनसी, मैंने देखा।
3: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉनसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
1: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर

0: डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन से कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
1: जॉन से। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओह गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
2: ओह,
1: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
2: पेंटिंग?
1: हाँ।
2: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
2: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
2: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
2: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
2: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
2: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सो
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
2: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सो बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सो
1: हाँ,
2: मास्टरपीस।
1: हाँ,
2: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिर।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं शैलेंद्र की आवाज में तराना फिल्म का गीत। गीत और लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत राम लक्ष्मण का है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नागिन फिल्म का गीत, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गुलशन बावरा का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। आवाज आशा भोसले, आरडी बर्मन और साथियों की है और फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

आशा भोसले और आरडी बर्मन की आवाजों में गाए इस गीत के बाद अब सुनते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसकी तर्ज बनाई है आरडी बर्मन ने और फिल्म है तेरी कसम।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: तेरे घर के सामने फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए

पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए हमारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। 7:21 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय है आतंकवाद। 8:35 पर होगा फिल्म संगीत और फिल्म संगीत आप सुनेंगे 10:00 भी। उर्दू कार्यक्रम कहकशा का समय है 9:30 का और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इसमें आप सुनेंगे रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन राग जोग।

ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। और अब सुनिए कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल हमारी सभा आरंभ होगी 5:53 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुरुमई सवेरा आप सुनेंगे 8:30 पर। सुगम संगीत 9:15 पर होगा। कल आप सुनेंगे राजश्री बर्वे के गाए गीत और भजन। प्रदेश की सुर्खियों

में सुना जा सकता है 9:30 पर 10 बजे आप तक पहुंचाई जाएगी जिले की चिट्ठी। महिला संसार कार्यक्रम होगा 10:05 पर और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत कल आप सुनेंगे एस के दास गुप्ता का सरोद पर बजाया राग ललित। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आरंभ होगा 11 बजे से और कल आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कल दोपहर की सभा में आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा 12 बजे और 2:30 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत जंग लगी तलवार इस रेडियो धारावाहिक की 12वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में कल आप सुनेंगे दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, सुगम संगीत 1:45 पर और युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी होगा 5:02 पर। मीडियम वे पर सांध्यकालीन सभा आरंभ करेंगे 5 बजे से। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर। कल शाम 6 बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सुना जा सकता है और कल का विषय होगा नक्सलवाद। कल शाम 6:30 आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल खेल की समाप्ति तक। अभी आप सुन रहे थे हमारी इस सभा की शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना,
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कल नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को बड़ी रफ्तार देते

0: हुए कुल 24,200 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472,29,00,000 रूपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया।
1: इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया, तो अब वह 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन में आ जाएगी।
0: मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकार

0: तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन में आ जाएगी।
1: मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्यप्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्त मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। आज मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में रणनीति तैयार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशव्यापी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए ताकि किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। खरीफ 2026 के लिए फसलवार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों के समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश

0: की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मानसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मानसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो लोकसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। झाबुआ में आज कलेक्टर ने जनसुनवाई से पहले राणापुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड और सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। राजगढ़ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए। देवास जिले में 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्या खेत करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले को मखाना उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मंदसौर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर ने 120 आवेदकों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में जबलपुर रेल मंडल ने ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित करने में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सीहोर में कल 17 जून को राजपूत संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनवे बारे हमारे सभी भयन को और सभी बहनन को आपकी अपनी पूनम बहन की प्रेम भरी नेह भरी दोई दई हाथ जोड़ के राम राम राम राम पहुँच पे। हम उम्मीद करत हैं कि सभी जने खूब नौने हुए और देखो का है कि भैया बहना हरो थोड़ा थोड़ा मौसम बदलन लगो है। बस कार्य ने और तेज हवा ने ठंडक कर दी है, सभी को अब तो थोड़ी सी राहत मिल गई है। और चलो कार्यक्रम की शुरुआत करत हैं। सबसे पहले सुनत हैं जो लोक भजन मथुरा प्रसाद प्रजापति और संगी साथियों को गाओ भाव।

0: ग्राम सभा में अब बेरह हो चली है बुंदेली समाचारन की।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली में समाचार। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचा और जन कल्याण को बड़ी रफ्तार देत भय कुल 24,020 करोड़ रुपया के प्रस्तावन को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लाने अतिरिक्त वित्त पोषण समेत कुल 19,472,29,00,000 रुपया को पुनरीक्षित बजट स्वीकृत करो गो है। राज्य में विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिस्टी चिकित्सा को बढ़ावा देवे और परोपकारी निवेश को प्रोत्साहित करवे के लाने श्रमेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहित नीति 2026 लागू करवे के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति को गठन करो है। समिति सभी संबंधित पहलुओं को अध्ययन करके रिपोर्ट देगी। मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करवे के लाने रीवा देवास गुना इत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रन को आउटसोर्स मॉडल पर चलावे को पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर करो है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के दौरा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से लेकर 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनू अभ्यारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम के करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचे। इसके दौरान वे प्रमुख कार्यक्रमन में शामिल हुए। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अब बात कर लेते हैं कृषि समीक्षा बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लाने देशव्यापी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करी। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करत भय अधिकारियों को निर्देश दे कि जिन जिलन में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है उत पहले से पूरी तैयारी कर ली जाए ताकि कोनो भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानन को तुरंत विकल्प सलाह और सहायता सोई उपलब्ध कराई जा सके। अब बात कर लेते हैं MSJE नशा मुक्ति अभियान की। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। इस पहल को उद्देश्य नागरिकन की भागीदारी को मजबूत करवो, स्वयं सेवकों की सहभागिता को बढ़ावो और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलावो है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लाने पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म समेत कई प्रमुख पहलन को भी अनावरण कर हैं। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी खबर की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्य से एक याचिका पर जवाब मांगो है।

0: जी मैं आरोप लगा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में करो जा रहा है। याचिका में जो निर्देश देवे की मांग करी गई है कि ई को उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। अब बात कर लेते हैं NTA नीट प्रवेश पत्रक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताई है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लाने प्रवेश पत्रक डाउनलोड करवे की सुविधा शुरू होवे के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कही है कि सभी उम्मीदवारों के लाने सुगम पहुंच सुनिश्चित करवे के लाने उनकी टीमें सर्वरन पर लोड लगातार निगरानी रख रही हैं। उतने 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम नाम के ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। और अब बात कर लेते हैं स्कूल चले हम अभियान की। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालय में आज से लेकर 30 जून तक स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित करो जा रहा है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा को आयोजन हुए। इसके साथ ही शाला में 100% नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों को शाला से जुड़े विषय पर विशेष ध्यान दौज है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग को मानबो है कि मानसून के आवे के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार हुए। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम बसकारो दर्ज करो जा रहा है। प्री मानसूनी गतिविधियों के चलत अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल इन संभागन में 30 से ज्यादा जिलों में आंधी और बसकारी की संभावना जताई गई है। और ई के संगे बुंदेली समाचार अब समाप्त भय।
1: बुंदेली समाचार।
0: बैना भैया हरों सबसे पहले अब अपन ले लेते हैं एक छोटो सा विराम।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भैया बहना हरों हमारे किसान भैया बहन अपने खेतन में कई तरह की फसलें बोते हैं। बहुफसली खेती और फसल चक्र आधुनिक टिकाऊ के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। बहुफसली खेती एक ही साल में एक ही खेत से कई फसलें लेबे की तकनीक है, जबकि फसल चक्र को मतलब है मौसम के अनुसार फसलों को बदल बदल के बोबो। और जे पद्धतियाँ किसानों की आय बढ़ावे और मिट्टी को उपजाऊ रखेवे में बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। बहुफसली खेती और फसल चक्र कई सारे लाभ भी हैं। बहुफसली खेती से उत्पादन और आय बढ़ जाते हैं, माने एक ही खेत में साल भर में कई फसलें लेबे से उत्पादन बढ़त है और लागत सोई कम हो जाते हैं, जिससे किसानन की आमदनी में भारी वृद्धि होत है। भूमि को बेहतर उपयोग होते हैं और खेत खाली नहीं रहते हैं, जिससे उपलब्ध संसाधनों पानी, धूप और भूमि को सबसे ज़्यादा उपयोग संभव हो पाते हैं। और अगर कोनो एक फसल को खराब मौसम या बीमारी से नुकसान भी हो जाते हैं तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई अपन और कर सकते हैं, जिसे किसानन को आर्थिक सुरक्षा सोई मिल जाते हैं। और कछु फसलें जो होती हैं वे एक दूसरे के संगे बोई जा सकते हैं, जिसे कीट जो भी होते हैं बेबी उनकी उनको प्रकोप सोई कम हो जाते हैं और खरपतवार भी नहीं पनपते हैं। उतने फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होते हैं। दलहनी फसलें जैसे कि चना है, मटर है, मूंग है, इको चक्र में शामिल करने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और कीटन और बीमारियों को खात्मा सोई होते हैं, माने एक ही फसल को बार बार बोबे से उसे संबंधित कीड़ा और बीमारियाँ मिट्टी में घर कर लेती हैं। और जब हम फसल को बदल के बोते हैं सो उको जीवन चक्र टूट जाते हैं। खाद और उर्वरक पे खर्च में कमी हो जाते हैं, माने अलग अलग फसलन से पोषक तत्वन की कमी की जरूरत अलग अलग होते हैं। इसे मिट्टी में कोनो एक विशेष पोषक तत्व को कमी या क्षरण नहीं होते है। रासायनिक खादन पर निर्भरता सोई हमारे भैया बहनन की कम हो जाते हैं और खरीफ फसलन की अच्छी पैदावार सोई अपन इको ध्यान रखें कर सकते हैं। सो भैया बहना हरों बातचीत अपन और भी करें, लेकिन अब सुन लेते हैं जो बारामासी अमित गंग

0: भैया बैनाहरों खरीफ फसलन की अच्छी पैदावार के लाने मानसून से पहले अपन औरों को खेत की गहरी जुताई करके जमीन को समतल बनावो जरूरी है और बुआई से पहले बीजन खो फफूंद नाशक कीटनाशक और जैविक कल्चर से उपचार भी करो जात है ताकि फसल को शुरुआती रोगों जैसे कि जड़ को सड़वो दीमक से बचाव जा सकत है। और ई किलाने अपन और का कर सकत है कैसे कर सकत है ई के संबंध में ही अपन और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सुसुन लेते हैं जो भेंट वार्ता खरीफ फसलों की तैयारी एवं बीज उपचार विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा और इनसे बातचीत करी है आरती शर्मा बैन ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, मानसून आने ही वाला है और उससे पहले खरीफ फसलों की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए और कौन से बीजों का उपयोग करना उपयोगी होता है और बीज उपचार का क्या महत्व है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी को, जो सहायक कृषि संचालक हैं। नमस्कार कुलदीप शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: आज का हमारा भेंटवार्ता का विषय है खरीफ फसलों की तैयारी एवं बीज उपचार। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि खरीफ फसलों की तैयारी पूर्व क्या करना चाहिए हमें।
2: जी बिल्कुल। नमस्कार श्रोताओं, किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने बताया कि खरीफ फसलों की तैयारी जो पूर्व क्या करें, अभी जो है हमारा मानसून सीजन आने वाला है और इस बार जो है मानसून में जो है एक कहा गया है कि थोड़ी कम बारिश की संभावना है, तो उस प्रकार से किसान भाइयों और बहनों को जो है अभी जो ऐसी फसल का चयन करना है, ऐसी किस्म का चयन

0: करना है कि जो कि मौसम और वर्षा के अनुकूल हो, तो इस प्रकार का एक ध्यान जरूर रखना चाहिए। फसल का चयन, किस्म का चयन और जो बीजों की व्यवस्था, ये जरूर किसान भाई जो हैं ध्यान रखकर पूर्व कर लें।
1: जी, बीज उपचार क्या है और इसका क्या महत्व, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं।
0: जी देखिए, बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है अच्छे उत्पादन के लिए।
1: जी।
0: किसान भाई अगर कोई फसल लगाना चाहते हैं, उसका बीज जो है उन्नत बीज सबसे पहले तो खरीदें।
1: जी।
0: उन्नत बीज और किस प्रकार की किस्म उस क्षेत्र के लिए उपयोगी है वह अनुशंसित किस्म का उपयोग करें। उसके बाद जब खेत में जब बारिश अच्छे से हो जाएगी और जब बुवाई की बारी आएगी, तो बुवाई से पहले जो है किसान भाइयों को जो बीज हैं उसका उपचार करना जरूरी है, जिसे हम बीज उपचार कहते हैं। बीज उपचार जो है, बीजों को जब बुवाई करेंगे तो फसल में लगभग 1 से 1.5 माह तक जो बीज जनित रोग होते हैं, मृदा जनित रोग होते हैं, कीट होते हैं, और जो फसल के अंदर जो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे हम कहते हैं वातावरण से, उसकी उपलब्धता बढ़ाते हैं, अंकुरण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण है हर फसल के लिए, जो कि एक अच्छा उत्पादन का संकेत है। उसमें जो बीज उपचार जो है, सर्वप्रथम हमें एक ध्यान रखना है कि बीज उपचार जो है सबसे पहले जो है फंजीसाइड जो होता है फफूंद नाशक, उससे करें। बीज उसका जो पाउडर होता है उसको बीजों के ऊपर छिड़काव कर, उससे अच्छे से दस्ताने पहनकर वो बीजों के अंदर अच्छे से मिलाएं। उसके बाद कीटनाशक आते हैं, कीटनाशक जो रिकमेंडेड कीटनाशक हैं उस फसल के बीजों के लिए, उसका उपयोग करें। और उसके बाद जो है जो हमारा बायो प्रोडक्ट होता है, कल्चर जिसे हम कहते हैं, जैसे कि सोयाबीन फसल के लिए राइजोबियम है, उसका छिड़काव करके इन तीनों का मिश्रण जो है, हमने जो बताया सबसे पहले फफूंदनाशक, कीटनाशक और फिर जो है बायो प्रोडक्ट है, उसका उपयोग करके अच्छे से इनको मिला दें, छायादार स्थान पर सुखा दें। और उसके बाद में जो है बुवाई के समय जो है इन उपचारित पद्धति से जो है इनका बुवाई कर दें। तो इस प्रकार से इस बीजोपचार करने से जो है यह देखा गया है कि जो कीट और रोग होते हैं फसल में, वो शुरुआती दौर पर वो नहीं लगते हैं, अंकुरण क्षमता बढ़ती है और वातावरण से जो है नाइट्रोजन की उपयोगिता फसल को मिल जाती है, इससे हमारी खाद की बचत भी होती है। मतलब हम देखें तो सामान्यतः हमारा जो प्रोडक्शन है, फसल का जो उत्पादन है, वह उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है।
1: जी जी, तो अनुशंसित किस्में कौन सी हैं और प्रमाणित बीज का उपयोग का भी क्या महत्व होता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए अनुशंसित किस्मों का लगाना एक बहुत अनिवार्य है।
1: जी
0: किसान भाई बहन, ये ध्यान जरूर दें, अभी बाजार में बहुत सारे ऐसे बीज आ जाते हैं दूसरे दूसरे राज्यों से, कहीं और से, लेकिन चूंकि वह मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित नहीं है, तो उस ऐसे जो बीज होते हैं बुवाई कर देते हैं और कई बार हमें देखना पड़ता है कि उनका अंकुरण नहीं हुआ या फसल का अच्छा उत्पादन नहीं हुआ। तो किसान ऐसे बिल्कुल भी इन भ्रम में ना आए, अनुशंसित किस्म जो होती हैं कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से उनकी अनुशंसा जरूर कर लें कि यह जो है मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित हैं या नहीं। नंबर दो, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज देखिए, जो प्रमाणित किए जाते हैं, मतलब उनका सर्टिफिकेशन होता है, तो ऐसे बीज जो होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और उनका उपयोग जरूर करें किसान भाई, उनके लिए ही जो है प्रमाणित बीज उनका उपयोग करना चाहिए। और चूंकि हम देखते हैं कि जिस फसल का उपयोग, जिस किस्म का उपयोग जिस क्षेत्र के लिए होता है, ऐसी फसल का चयन जरूर करें, ऐसी किस्म का जरूर चयन करें। जैसे कि हम देखते हैं धान में, हम देखें कि जवाहर JR 206 है, इस किस्म का चयन कर सकते हैं। सोयाबीन में NRC 37 है, NRC 86 है, और JS जो जवाहर सोयाबीन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ऐसी किस्मों का चयन कर सकते हैं। अरहर के लिए जो है TJT 501 हैं, राजेश्वरी हैं, तो इस प्रकार की जो किस्में हैं उनका चयन कर सकते हैं। यानी जो फसल क्षेत्र हैं उसकी किस्म, किस प्रकार की किस्म अनुशंसित है उस क्षेत्र के लिए, वह उस किस्म का प्रमाणित बीज का उपयोग करेंगे तो अच्छे से उसका फसल का उत्पादन लिया जा सकता है।
1: जी, तो सोयाबीन बुआई कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं।
0: जी बिल्कुल, देखिए अभी सोयाबीन का इस जो हमारी खरीफ सीजन है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सोयाबीन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा मानसून, चूंकि हमें पता चल चुका है मौसम विभाग के द्वारा कि मानसून जो है इस बार बारिश की संभावना जो है

0: नॉर्मल से यानी कम होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सोयाबीन जो बोने वाले किसान हैं उनको ध्यान रखना है कि देखिए सोयाबीन ऐसे क्षेत्र में लगाएं कि जहाँ पे थोड़ा बारिश वगैरह अच्छी होती हैं। उसके बाद में क्या है कि सोयाबीन की जो बुवाई है, एक बुवाई पद्धति आती है ब्रॉड बेड फरो, तो ये एक बहुत अच्छी मेथड है। इसमें क्या रहता है कि सोयाबीन की जो बुवाई होती है वो मेड़ नाली पद्धति से की जाती है, मेड़ के ऊपर उसकी बुवाई हो जाती है और नाली बन जाती है बीच में। तो ये जो नाली जो बन जाती है, ये इसका दो फायदे हैं। अगर उस खेत में ज़्यादा बारिश होगी तो वो निकास का काम करती हैं, कम बारिश होगी तो वहाँ पर क्या होती है, वो नाली उस पानी को संचित कर लेती है। तो ऐसी किस्म में सूखा जब पड़ जाएगा तो फसल की सुरक्षा होती है। तो इस बुवाई से ही जो है किसान भाई सोयाबीन की फसल लगाएं, अनुशंसित किस्म का ही उपयोग करें, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी, तो बीज खरीदते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: जी देखिए, बीज जो है हम कह सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण, अगर हम देखा जाए तो कृषि आदान में सबसे पहला जो नंबर एक जो आता है वो बीजों का आता है,
1: जी
0: क्योंकि फसल लगाने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता बीज होती है।
1: जी
0: तो बीज एक महत्वपूर्ण है। किसान जो है यह ध्यान रखें कि बीज जो है किसी ऐसे सोर्स से खरीदे जो जिसको आप या तो जानते हैं,
1: जी
0: कोई अच्छा एक मतलब या तो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विभाग हैं, या ऐसा कोई रिटेलर डीलर हैं जो विश्वसनीय है। दूसरा ये है कि प्रमाणित बीजों का, जैसा कि मैंने बताया, प्रमाणित बीजों का ही जो है उपयोग करें। उसके बाद में जो है फसल जो किस्म है जिस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है उन फसलों का प्रमाणित बीज का उपयोग करें। उसके बाद क्या होता है कि जब बीज खरीदते समय किसान ये ध्यान रखे कि उस बीज की प्रॉपर जो है बिलिंग करवाएं, मतलब उसका बिल लें, कौन सी फसल का बीज वह है, कौन सी किस्म की किस्म है, कितने क्विंटल का बीज आप ले रहे हैं वो आप ध्यान रखिए, और उसका प्रॉपर आप बिल जरूर लें। उससे क्या रहता है कि कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि जो किसान बोलते हैं कि हमारे बीजों का जो हमने बोया है वो उत्पादन ही नहीं हुआ, या वो उगे ही नहीं, अंकुरण क्षमता उसकी बिल्कुल भी नहीं हुई, कई बार उनको दोबारा बोने का मौका भी आता है। तो ऐसी केस में क्या रहता है, अगर आपके पास उस बिल जो रहेगा तो वो एक हमारी मदद करता है कि आपने क्या वास्तविक बीज बोया है या नहीं बोया है। तो इस प्रकार की सावधानी रखें, और बीज उपचार का जो एक सलाह भी बीज खरीदते समय ले लें कि आपको इस बीज में कौन सा बीज उपचार की दवाई जो है आपको डालना है।
1: जी, तो संतुलित उर्वरक प्रबंधन कैसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में भी बताएं आप।
0: जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में मुद्दा है, क्योंकि देखिए खाद के दाम भी बढ़ चुके हैं। तो किसान भाई क्या करें, जो पहले क्या किसान भाई करता था कि ज़्यादा उर्वरक डालता था, ज़्यादा उर्वरक डालने से सोचता था कि ज़्यादा फसल होगी, लेकिन नहीं, संतुलित जो रिकमेंडेड डोज हैं उसका उपयोग करें। और अभी जो है कृषि विभाग के द्वारा ईट विकास प्रणाली का उपयोग किया गया है, और ई टोकन बेस्ड जो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन हर जिले में हो रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिक तरीके से जो है रिकमेंडेड, आपने जितना फसल आपकी एरिया है, आप कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, उसका कैलकुलेशन जो है भारत सरकार की जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उनकी जो रिकमेंडेड डोज हैं वो उसके स्वतः हो जाता है। तो आपको जो है संतुलित उर्वरक अपनाना है, आपको जैविक खाद का उपयोग भी करना है, FIM है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, उसका आपको उपयोग करना है। तो इस प्रकार से आप जैविक खाद का उपयोग करेंगे, जैविक खेती की तरह आप बढ़ेंगे, और जो रासायनिक जो खाद हैं उनका ज़्यादा उपयोग न करके जो रिकमेंडेड डोज हैं, संतुलित जो मात्रा है वो डालें। नाइट्रोजन का उपयोग जो है किसान भाई यूरिया एक ही बार ना डालें, क्योंकि यूरिया की जो लीचिंग हो जाती है, यूरिया पानी में घुलते ही तुरंत बहाव हो जाता है। तो यूरिया की मात्रा जो है फसल में 3 से 4 बार डालें, बुवाई के समय डालें, फिर उसके बाद 1 माह बाद फ्लावरिंग स्टेज पे। इस प्रकार से जो है किसान जो है अच्छे से एक संतुलन बनाए रखते हुए एक संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाएं, तो अच्छे से उनको बेहतर लाभ मिल सकता है।
1: जी, कई बार फसलों में कीट और रोग भी आ जाते हैं, तो कीट रोग नियंत्रण हेतु क्या निगरानी करनी चाहिए?
0: जी बिल्कुल, देखिए अगर अच्छे से आपने बीज उपचार, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो किसान जो है बीज उपचार करके ही बोए, ताकि उससे क्या रहेगा कि आपकी जो कई

0: फसलों में ऐसे जैसे सड़क का डैम्पिंग ऑफ आता है, विल्टिंग होती है, कई प्रकार के ऐसे मृदाजनित दीमक हैं, लटें होती हैं खेतों के अंदर, कई प्रकार के रस चूसक कीट होते हैं। तो बीज उपचार करने से क्या रहता है कि वो फसल जो है शुरुआती दौर पर लगभग 1 से 1.5 माह तक उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप जो है बहुत कम या न के बराबर होता है। लेकिन चूंकि किसान जब फसल लगा देते हैं तो वो फसल लगाने के बाद उनकी निगरानी करते रहें। निगरानी में क्या करें, आप जब फसल 15 दिन की हो जाए तो पीले चिपचिपे जाल आते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का आप उपयोग कर लीजिए और निगरानी रखिए। कुछ कभी कभी देखा जाता है कि शुरुआती दौर में कुछ फसलों की पत्तियां कीट काट लेते हैं, तो ऐसा आप ध्यान रखिए कि कौन सा कीड़ा है वहाँ पर फसल को नुकसान पहुँचा रहा है। आप आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप उसकी फ़ोटो खींच कर कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं ताकि आपको सही दवाई जो है मिल पाए। उसके बाद में क्या रहता है कि कई पौधे पीले पड़ जाते हैं तो वो हो सकता है वो कहीं ना कहीं रोगों का कारण होता है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखिए। यानी निगरानी करते रहें और फसल में जो कीड़े हैं या रोग हैं उनमें आप अनुशंसित जो मा जैसा हम कहते हैं कि अनुशंसित किस्म का चयन करें वैसा ही अनुशंसित दवाई का चयन करें।
1: जी
0: क्योंकि हर दवाई जो है, हर दवाई का एक लीफलेट होता है, एक पत्रक होता है कि इस दवाई का उपयोग इस फसल में इस कीड़े के लिए होना है,
1: जी
0: इस दवाई का उपयोग इस फसल में उस रोग को नियंत्रण करने में होता है। तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें किसान, ताकि आपका जो है रोग और जो कीट नियंत्रण है वो अच्छे प्रभावी तरीके से हो सके और रासायनिक दवाइयों पर ही निर्भर न रहे।
1: जी
0: आप नीम जो है, नीम की निम्बोली का जो है उसका आप नीम का छिड़काव कर सकते हैं। कई जो गाय के गोबर हो गया, घी हो गया और मूत्र हैं, इस प्रकार के पंच जो तत्व होते हैं, कई ऐसी हमारी पुरानी पद्धतियां हैं उनसे भी जो है किसान जो है ये कीटनाशक और दवाई का तैयार कर सकते हैं, अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी जो हमारे प्राकृतिक और जैविक खाद जैसा होता है, जैसा प्राकृतिक जैविक कीटनाशक दवाई है उनका भी उपयोग करें और ज़रूरत पड़ने पर रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करके जो है सही सलाह या सही अनुशंसित मात्रा का उपयोग करके फसल उत्पादन जो है अच्छे से लिया जा सकता है।
1: चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, खरीफ मौसम की चूंकि तैयारी हो चुकी है और किसान जो है सबसे पहले सारी जुताई कर लें अच्छे से बुवाई के लिए, अच्छे से अगर खरपतवार वगैरह कहीं मान लिया जाए, अभी बारिश हो चुकी है कहीं कहीं तो अगर मान लिया जाए उग आए हैं तो उनको नियंत्रण कर लें। उसके बाद में बीज का जो है अच्छे से किस्म का चयन कर, बीज की आप उपलब्धता देख लीजिए, बीज का चयन कर लीजिए, बीज की खरीदी आप कर लीजिए। खाद चूंकि अभी जो है खाद का वितरण हो रहा है तो अभी आप बाद में जब फसल बोने के बाद जब भीड़ भाड़ लगेगी तब आप परेशान होंगे, तो आज आपको खाद मिल रहा है तो आज आप खाद लेकर रख लीजिए ताकि कल को आपका समय भी बचेगा और खाद की जो देखते हैं कि आपको खाद में समस्या आती है वो भी आपको नहीं मतलब उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यवस्थित तरीके से जो हैं किसान भाई इस प्रकार से जो हैं बढ़िया एक सलाह लेकर विचार विमर्श करके कृषि विशेषज्ञों की भी सलाह ले ले कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी किस्म लगानी चाहिए, और जो कुछ हमारे जो उन्नतशील किसान हैं उनसे भी जो है बातचीत की जा सकती है कि इस बार आप क्या लगाने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो हम कहते हैं ना कि एक प्लानिंग योजना बना ली जाए, तो
1: जी
0: एक योजना बनाने का अभी समय है, तो आप जो है 8-10 दिन के अंदर योजना बना लीजिए अच्छे से और जैसे ही आपका मानसून आएगा तो ये जो आपकी योजना आप बनाएंगे इसको आप जो है फील्ड के अंदर जो अब आप जब बुआई का कार्य करेंगे तो वो आपकी सफलतापूर्वक जो है प्रभावी होगी और अच्छा आप जो है कीट नियंत्रण भी कर पाएंगे, रोग नियंत्रण भी कर पाएंगे, बीजोपचार भी आप ले लेंगे, अच्छी फसल का किस्म का चयन भी आप कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर उत्पादन आप ले पाएंगे और बेहतर उत्पादन से आपकी कहीं ना कहीं आय इसमें बढ़ेगी। तो ये जरूर किसान जो है कर लीजिए।
1: जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: भैया बहनहरों अब अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता खरीफ फसलों की तैयारी एवं बीज उपचार विशेषज्ञ हते डॉक्टर कुलदीप शर्मा और इनसे बातचीत करी हती आरती शर्मा बहन ने। भैया बहनहरों का है कि देखो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो हमारे किसान भैया बहनन के बहुत ही काम की हैं। कृषि अवसंरचना कोष भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू करी गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इको मुख्य उद्देश्य है फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लाने बुनियादी ढांचा जैसे कि कोल्ड स्टोरेज गोदाम सप्लाई चेन को निर्माण करके किसानन की आय को बढ़ावो। इके कोष के तहत कृषि उद्यमियों स्टार्टअप्स और किसान समूहन को बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपया तक को ऋण प्रदान करो जात है और ब्याज में छूट दी जात है। मैंने 2 करोड़ के लोन पर हर साल 3% को ही ब्याज देने पड़े है और सब्सिडी की छूट सोई दी जात है। क्रेडिट गारंटी मैंने 2 करोड़ तक के ऋण के लाने सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमवन के लाने क्रेडिट गारंटी फंड ई के तहत ऋण की गारंटी भी देत है और ऋण चुकावे की अवधि 7 साल है जिसमें 2 साल तक स्थगन की अवधि भी शामिल है। सो जो तो हती जानकारी और अब आपको सुनवात है अनरत लाल बैरसिया को गाओ भौजो लोकगीत।

भैया बहनों अब आपन को कछु सलाह दे देते हैं। सो तेज हवाओं से हो भी पारे नुकसान को कम कर भी किलाने गन्ना की पत्तियों को बांधे और मिट्टी के प्रकार मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यकता पड़े पे सिंचाई करवे। फलदार वृक्षों की शाखाओं को सहारा देवे। उर्वरकन की संतुलित मात्रा को उपयोग करें और मिट्टी के नमूना परीक्षण के लाने भेजे जाए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई पूर्ण करवें और फसल के अवशेषण को खेतन में न जलाएं। पक चुकी रबी फसल की कटाई करवें और खड़ी फसलन में उचित नमी बनाए रखवें। सब्जी फसलों विशेष करके कुकुरबिट मन लौकी कद्दू वर्गीय फसलन की निराई गुड़ाई करवें सहारा देवें और अंतर्वर्ती कृषि कार्य को जारी रखवें। फसलन में कीट और रोग की नियमित निगरानी करवें और आवश्यकता होवे पे नियंत्रण के उपाय सोई अपनाया जाए। बादलन को मौसम होवे पे मूंग उड़द फसलन में फली छेदक और अनेली कीटन को प्रकोप बढ़ सकत है। सो ई के लाने अनुसंशित पौध संरक्षण अपनाए। बेहतर अंकुरण के लाने जल निकास के लाने सोयाबीन की बुआई करवें और इसके अलावा आगामी मौसम में सोयाबीन मक्का अरहर की अनुशंसित और उन्नत किस्में अपनाएं और ब्रॉड फैरो पद्धति से इको करवें। आगामी मौसम में सोयाबीन मक्का अरहर की किस्मन में कीट की संभावना भी हो सके थे तो इके लाने भी उपाय करवें। पशुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करावें। छायादार हवादार स्थानन पर रखें ताकि गर्मी से तनाव से बचाव होवे। हरो चारा सूखो चारा दिन के ठंडे समय में खवाएं। अत्यधिक गर्म समय में चारा ना देवें। सुजो तो हती कछु सलाह और अब आप और उनको सुनवा देते हैं चलत चलत जो एक और लोकगीत आशीष श्रीवास्तव और संगीत साथियों से।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय है आतंकवाद।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
3: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
2: जी,
3: विश्वास और जन कल्याण
2: जी,
3: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
2: जी।
3: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा

0: समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है,

0: और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है उसके प्रति, अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास

0: विकास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह की पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था।

0: 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं, उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, इसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहां प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सब

0: फलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है, जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
0: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
1: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
0: जी।
1: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था, और जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
0: जी।
1: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
0: जी।
1: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
0: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
1: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
0: जी,
1: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओ।

0: आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे?
1: जी
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा।
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी।
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है?
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?
1: जी।
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन,
1: जी
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी, हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की। तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है।
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है।
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए, वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार

0: और सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं जावेद अली की आवाज़ में जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और इसे संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

0: आतिफ असलम की आवाज़ में अभी आपने रुस्तम फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

işi yer dika, pokran dika. Miss World dikhi, World Cup dikha. Chandrayaan dikha, Insect dikha. Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन ज़ी भी है, आल्सो जेन ओ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
3: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
2: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन

0: अल-नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था।

0: केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं।

0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interests as well as priorities of the Global South. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.

0: Avion France also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gurkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वजराए आजम नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1,000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। भारत और जापान ने जहरीली गैस के अखराज में कमी करने और पायदार तरक्याती इकदामात से मुतालिक तआवुन को फरोग देने की गरज से पेरिस मुआहदे के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मेकैनिज्म के लिए निफाज के जाब्ते को अपनाया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लिबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। IMD ने शुमाली भारत में कल के लिए बिजली चमकने और तुंद हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। और फेंसिंग यानी शमशेर जनी की सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के शहर एविया में जारी G7 समिट में एक आला सतह के वर्किंग इजलास में हिस्सा लिया। इस इजलास का मौजू था नई शराकत दारियां और बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम की तामीर नौ का फरोग। इस इजलास में G7 मुल्कों के लीडर, शराकत दार ममालिक और आलमी बैंक और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से वजीर आजम मोदी और शरीक होने वाले दीगर लीडरों के बाकायदा खैर मकदम के फौरन बाद ये मीटिंग शुरू हुई। एक ग्रुप फोटोग्राफ के बाद वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी की और लिखा कि भारत और G7 ममालिक आलमी खुशहाली, पायदारियत और इंसानों की फलाह को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अंकित कुमार, जो वजीर आजम के G7 के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके हमराह गए हुए हैं, ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ कराने की गरज से एविया से ये रिपोर्ट भेजी है।
2: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
1: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए दो रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो अहम आलमी मामलात पर दुनिया के लीडरों के साथ बातचीत और तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक ज्यादा पायदार और खुशहाल कुर्राए अर्ज की जानिब इज्तिमाई कोशिशों में पेशरफ्त के तई पुरअज़्म रहेगा। समिट से अलग वजीर आजम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टार्मर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। آج شام دیر گئے وہ صدر میخان کی جانب سے منعقدہ

पिछले बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और क़ुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी ज़मीनी सरहदों के तहफ्फुज के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के उसूल की रहनुमाई में अपनी मुअस्सर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहिदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है ताकि आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमतनामे के बाद इस बरस 8 जून को इख्तियार किया गया। ये मैकेनिज्म तख़फीफ के प्रोजेक्टों में शराकत दारी का एक खाका फराहम करता है जिसकी रूह से भारत में जहरीली गैसों के अखराज में तख़फीफ या कतई ख़त्म किए जाने की बात की गई है, साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने वजाहत नहीं की है कि आया लिबनान कतई मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। इधर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल मुआहदे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करार दिया था और कहा था कि इसराइल की अपनी तरजीहात हैं और वो जब तक जरूरी होगा उस वक्त तक लिबनान में एक बफर जोन में रहेगा। नीट UG 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे कब सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह के मौसमी हालात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार जजायर में भी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल ज़ैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में शुमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। भारत की फेंसिंग एसोसिएशन FAI ने शमशेर जनी की 26वीं सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत की सीनियर टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये चैंपियनशिप 19 से 24 जून तक दिल्ली में मुनक़िद होगी। भारत इस बावकार कॉन्टीनेंटल मुकाबले की पहली मरतबा मेज़बानी करेगा जो कि एक तारीखी संग मील है। 30 से ज़्यादा ममालिक और 400 से ज़्यादा सरकर्दा खिलाड़ी इस मुकाबले में शिरकत करेंगे। भारत की 24 रुकनी टीम में 12 ख्वातीन और 12 मर्द शामिल हैं जिसकी क़्यादत भारत की पहली और वाहिद शमशेर जनी की ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अमरीका के शहर न्यूजर्सी में ग्रुप 1 मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल के दरमियान

गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बहादुर शाह जफर का। सामीन, अंग्रेजों से मुहायदा हो जाने के कुछ ही दिनों बाद 1857 का हंगामा बरपा हो गया, जिसकी कयादत दिल्ली में शहजादा मुगल ने की। अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हंगामा कर रहे बागियों का साथ देने और आज़ादी की तहरीक की हिमायत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 1858 को अदालत ने बहादुर शाह को उनके तमाम जराइम का कसूरवार ठहराया। 7 अक्टूबर 1858 को साबिक शहंशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया और रंगून में जिला वतनी के दिन गुजारते हुए 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे इस दारे फानी को अलविदा कहा। एक शेर में वो कहते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफर सिर्फ आखिरी मुगल बादशाह ही नहीं थे, बल्कि वो उर्दू शायरी में दाखली एहसासात, दर्द व कुर्ब और तसव्वुफ के एक इंतहाई मोतबर और बुलंद पाया शायर थे। उनकी शायराना अजमत का असल राज उनके लहजे की सच्चाई, बेसाख्तगी और दर्द की वो शिद्दत है जो आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देती है, क्योंकि जफर की शायरी महज तखयलाती नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के तल्ख हकायक और बर्रे सगीर की तहजीबी शिकस्त का नूहा है। वो अपने कलाम में दुख, हसरत, बेबसी और महरूमी को इस सादगी और असर आफरीनी के साथ पेश करते हैं कि कारी बराह रास्त उनके जज्बात से जुड़ जाता है। उनकी गजलों में दाखली एहसासात की गहराई उनको अपने हम असरों में नुमाया करती है। उनका ये शेर उनके दर्द की पहचान बन चुका है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रोग्राम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनवाते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की मिलीजुली आवाजों में। शब्द रचना अनजान की और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की।

जाबाज। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सपना की आवाज़ में। गीत इंदिवर का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में शराबी फिल्म का गीत। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत बप्पी लाहिरी का है।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवाते हैं, जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने, आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की है। फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये वादा रहा फिल्म से। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन, राग है जोग।

0: रूपाली पांडे के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राग जोग में ध्रुपद गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में तदुपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि

0: initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the memorandum of understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच की ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और ओटीटी वेव्स पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 सुबह हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।